0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। क्यूपिप में सैकड़ों छात्रों ने स्कूलों में बुलियंग के खिलाफ मार्च निकाला। सेंट जोसेफ और लोरेट दे क्यूपिप के छात्र इस जागरूकता रैली में शामिल हुए। ये पहल उस घटना के बाद हुई जिसमें एक छात्र के साथ कक्षा में अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोपी छात्र निलंबित है जबकि पीड़ित को मनोवैज्ञानिक सहायता दी जा रही है। बिजनेसमैन संजीव रामदानी की यात्रा अनुमति पर फैसला 25 अगस्त को सुनाया जाएगा। उन्होंने अगस्त से दिसंबर 2026 तक यात्रा प्रतिबंध हटाने की मांग की है। रामदानी पर एसबीएम के पूर्व सीईओ प्रेमचंद मंगर के साथ मिलकर ध्यानवर्तम लिमिटेड को 470 मिलियन रुपए की क्रेडिट लाइन दिलाने की कथित आपराधिक साजिश का आरोप है। मॉरिशस और अमरीका ने एक लॉजिस्टिक्स कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभियानों और अभ्यासों के दौरान लॉजिस्टिक्स सहायता का आदान प्रदान कर सकेंगी। सरकार ने कहा कि इससे मॉरिशस को महत्वपूर्ण लाभ होंगे। वहीं इस समझौते पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट के जज इन चैम्बर्स ने खारिज कर दिया। अमरीकी उप सहायक सचिव सारा ट्रॉटमन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात कर व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में मॉरिशस के आर्टेमिस अकॉर्ड्स में संभावित शामिल होने और 6 से 9 दिसंबर तक मॉरिशस में होने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारियों पर भी विचार विमर्श हुआ। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के 20 वर्ष पूरे होने पर आप्रवासी घाट में स्मारक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर इसकी ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और युवाओं तक इसका इतिहास पहुंचाने पर जोर दिया गया। आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड ने एमबीसी के सहयोग से 20 शतायु व्यक्तियों की गवाहियों को रिकॉर्ड करने की परियोजना जारी रखने की भी घोषणा की। और विदेश में अमरीकी सेना ने ईरान के खिलाफ लगातार 6वीं रात हवाई हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार इनका उद्देश्य ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। पश्चिम से पाए जा रहे अस्थिर बादलों के कारण स्थानीय मौसम प्रभावित हो रहा है। अगले 24 घंटों के लिए

0: ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और पश्चिम तथा सेंट्रल प्रांतों पर बारिश होगी। कभी कभी सामान्य वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 25 से 27। रात के दौरान बारिश होती रहेगी, इसके बाद धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 17 से 19, अन्य इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पश्चिम की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण के समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 7:45 और शाम 5:47 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

की बेला ताजगी भरी शुरुआत। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।

0: प्रणाम और सुप्रभात श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए समय, यह सुबह के 6:04 हो चुके हैं। इस शुक्रवार 17 जुलाई 2026 को साथ नभा रही है पूजा। ये MBC रेडियो मॉरिशस का सीधा प्रसारण है। श्रोताओं, कहा जाता है प्रार्थना ऐसे कीजिए जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे कीजिए जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि से।
1: हिंदू महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।
2: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते श्री राम कृष्ण हरि नारायण। सभी मेरे आदरणीय श्रोताओं को सादर नमन हिंदू महासभा की ओर से। मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी का आज फ्राइडे 17 जुलाई 2026 के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल गुरुवार 16 जुलाई से उड़ीसा राज्य के पवित्र धाम जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की विश्वविख्यात रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ, और गत सप्ताह हमने आपको बताया कि भगवान श्री जगन्नाथ जी, जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, उनके विग्रह अत्यंत अद्भुत, अनोखे एवं रहस्यमय है। भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी गोल आँखें, अपूर्ण प्रतीत होने वाले हाथ पैर तथा विशिष्ट स्वरूप भक्तों के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न करते हैं। उनके इस दिव्य स्वरूप के पीछे गहन आध्यात्मिक एवं पौराणिक रहस्य निहित है। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्राकृत्य, उनके अद्भुत विग्रह तथा

उनसे जुड़े पौराणिक रहस्यों पर विचार करें और उनके इस दिव्य स्वरूप की महिमा को समझने का प्रयास करें। एक समय श्रीधाम द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण रात्रि कालीन में श्री रुक्मिणी देवी, सत्यभामा आदि के साथ भगवान शयन कर रहे थे। स्वप्नावस्था में अकस्मात श्री कृष्ण राधा राधा उच्चारण करते हुए क्रंदन करने लगे। जब अन्य किसी प्रकार प्रभु का क्रंदन नहीं रुका, तब बाध्य होकर महारानी श्री रुक्मिणी देवी जी ने अपने प्राण वल्लभ को चरण संवाहन पूर्वक जागृत किया। भगवान श्री कृष्ण निद्रा भंग होने पर किंचित लज्जित हुए और उन्होंने अति चतुराई से अपना भाव गोपन कर लिया और पुनः निद्रित हो गई। परंतु इसका रहस्य जानने के लिए महारानियों के हृदय में अत्यंत व्यग्रता उत्पन्न हुई। सभी एक दूसरे से कहने लगे कि देखो, हम सब मिलकर 16,108 महारानियां हैं और कुल शील रूप एवं गुणों में कोई भी अन्य किसी रमणी से न्यून नहीं है। तथापि हमारे भगवान किसी अन्य रमणी के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं, यह तो बड़ी ही विस्मय की बात है। रात्रि में स्वप्न अवस्था में भी जिन रमणी के लिए प्रभु इतने व्याकुल होते हैं, वह रमणी भी न जाने कितने रूप गुणवती होगी। इस पर रुक्मिणी देवी कहने लगे, हमने सुना है कि वृंदावन में राधा नाम की एक गोप कुमारी है, उनके प्रति हमारे प्राणेश्वर भगवान कृष्ण अत्यंत आकर्षित है, इसलिए श्री कृष्ण हम सब के द्वारा परिसेवित होकर के भी उस श्री राधा के अलौकिक गुणों को भूल नहीं सके। सत्यभामा तब कहने लगी कि सब ठीक तो है ही, कैसे भी हो वह एक गोप कन्या के सिवा तो कुछ नहीं है, फिर भी उसके प्रति हमारे स्वामी इतने आसक्त क्यों है। इस बात का रहस्य जानने के लिए सभी रानियां रोहिणी माता के पास पहुंचे और उसने रोहिणी माता को रात्रि की बात बताई। भगवान श्री कृष्ण जब प्रातःकाल अपना स्नान आदि करके राजसभा को पधारे और अपने राजकार्य में भगवान श्री कृष्ण व्यस्त हो गया, इस अवसर को पाकर महारानियों ने रोहिणी देवी को रात्रि की बात फिर से छेड़ी और उनसे व्रज की वृतांत पूछा। रोहिणी माता कहने लगी कि हे प्यारी पुत्रिया, यद्यपि मैं व्रज लीला की अधिकांश घटनाएं जानती हूं, तथापि माता होकर पुत्र की गुप्त लीलाओं का रहस्य किस प्रकार कह सकती हूं। यदि कृष्ण बलराम यह कथा सुन ले तो फिर लज्जा की सीमा नहीं रहेगी। इस पर रानियां कहने लगी कि हे रोहिणी माता, जिस किसी प्रकार भी हो सके हमें व्रज लीला की कथा तो आपको अवश्य ही सुनानी होगी। रोहिणी माता कहने लगी, तब एक उपाय करो, सुभद्रा को द्वार पर पहरा देने के लिए बैठा दो, वह किसी को भी अंदर ना आने दे, फिर मैं निसंकोच व्रज लीला का वर्णन करूंगी। माता रोहिणी ने इतना कह करके सुभद्रा की ओर देखा और कहा कि हे देवी सुभद्रा, यदि कृष्ण बलराम आए तो उन्हें भी कदापि भीतर मत आने देना। माता की आदेश पालन किया गया। देवी सुभद्रा जो आज्ञा कहकर द्वार रक्षा करने लगी और यहां रुक्मिणी आदि सभी रानियां माता रोहिणी को घेर करके उनके साथ बैठ करके व्रज लीला का वर्णन शुरू
कर दिया और रानियां सुनने लगी। इतने में राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई चंचल हो उठे। जब किसी प्रकार भी राज्यसभा में नहीं ठहर सके तब आखिर में कृष्ण बलराम अंतःपुर में पहुंच गया और वहां जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुभद्रा द्वार पर खड़ी है। पूछने पर सुभद्रा माता ने कृष्ण बलराम को सारी वृतांत बताई, किस प्रकार माता रोहिणी सभी रानियों को व्रज लीलाओं के बारे में बता रही है। कृष्ण बलराम ने भी कान लगाए और उन्होंने भी यह कथा सुनना आरंभ की। और जिस समय रोहिणी माता श्री राधा जी की वर्ण करने लगी, उस समय श्री कृष्ण बलराम की जो धैर्य है वह धारण ना कर सके। और इतने में भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी दोनों की शरीर जो है वह पिघलने लगी और श्री राधा जी के उस दिव्य चरित्र को सुनकर के भगवान आश्चर्यचकित हो गया। इनकी नेत्र बरी हो गई और इनके पूरे शरीर जो है एकदम से पिघल गया। इतना ही नहीं, आयुधराज सुदर्शन चक्र भी पिघल कर होकर के लंबा आकार धारण कर लिए। और इसी समय देवर्षि नारद भगवान दर्शन के लिए द्वारका पहुंचे। उन्होंने पहले तो राज्यसभा में गया और कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को ना देख करके देवऋषि अंतःपुर में पहुंच गया, यानी द्वारका पहुंच गया। और जब देवऋषि वहां पहुंचे तो उन्होंने भगवान कृष्ण के इस रूप को देख करके वह स्तंभित हो गया। इस प्रकार का दर्शन उन्होंने पूर्व में कभी नहीं किया है। जिन प्राणनाथ की ऐसे अद्भुत अवस्था के कारण विचार करते हुए प्रेमवश स्तंभ भाव को प्राप्त होकर देवऋषि भी वहां चुपचाप खड़े रह गया। कुछ ही क्षण में जब माता रोहिणी ने पुनः किसी एक प्रसंग को उठाए तब उनको पूर्ववत् देख करके भगवान श्री कृष्ण जो है और भी आत्मविभोव हो गया। इस अवसर पर देवऋषि नारद जी भी भगवान श्री कृष्ण को देख करके स्तंभित हो गए और देवऋषि नारद स्तुति करने लगे। देवऋषि नारद की स्तुति सुन करके भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने देवऋषि नारद से प्रसन्न हो करके उनसे कुछ वर मांगने को कहा। तभी देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपका ये जो स्वरूप है एकदम से अत्यंत अद्भुत है और एकदम से भक्त वत्सल का स्वरूप है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि आप इसी रूप में आने वाले कलिकाल में भक्तों को दर्शन दें। देवर्षि नारद की इस बात को सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवर्षि, इस विषय में पूर्व से ही अपने दो और भक्तों के प्रति भी आपके प्रार्थना अनुसार ही वचनबद्ध हूं। एक महाराज इंद्रद्युम्न और दूसरा विमला देवी। महाराज इंद्रद्युम्न की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने नीलाचल क्षेत्र में निवास करने का उनको वरदान दिया था और विमला देवी के द्वारा अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के उनकी प्राणी मात्र को बिना विचार किए महाप्रसाद वितरण करने की प्रतिज्ञा को उक्त स्वरूप से ही पूर्ण करने की स्वीकृति दे चुका हूं। अतएव इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम चारों यानी बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र आगामी कलयुग में इसी रूप में नीलाचल क्षेत्र में निवास करेंगे और भक्त जो है बड़े श्रद्धा से हमारी दर्शन आदि करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। श्री कृष्ण बलराम जी का यह स्वरूप आज भी हम लोग इन्हीं रूप में इनकी पूजा करते हैं और इसी को हम लोग जगन्नाथ यात्रा के रूप में मनाते हैं। चलिए आज की कार्यक्रम को मैं यही विराम देता हूँ।

आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले हाईलैंड्स के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर इन गलियों में बास्तान गोद और उदाली गोद के कुछ हिस्सों में के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि 18 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर हाईलैंड्स के ही निवासियों को सूचित किया जाता है, खासतौर पर ग्वायल गोद के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 18 जुलाई 2026 को सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
0: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: श्रोताओं, ये रेडियो मॉरिशस का सीधा प्रसारण है और साथ निभा रही है पूजा। कुछ ही घड़ी में आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तो आइए आप सभी की नाम एक और भक्ति गीत। कहा जाता है मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ हर काम कीजिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। चलिए इसी के साथ आप सभी को छोड़ जाती हूँ, फिर से मिलेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम में 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिन।
1: बोलो हाथ की सफाई की जय, हाथ की सफाई की जय, मेहनत की कमाई की जय।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 6:30 हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। क्यूपिप में सैकड़ों छात्रों ने स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ मार्च निकाला। सेंट जोसेफ और लोरेट दे क्यूपिप के छात्र इस जागरूकता रैली में शामिल हुए। ये पहल उस घटना के बाद हुई जिसमें एक छात्र के साथ कक्षा में अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बिजनेसमैन संजीव रामदानी की यात्रा अनुमति पर फैसला 25 अगस्त को सुनाया जाएगा। उन्होंने अगस्त से दिसंबर 2026 तक यात्रा प्रतिबंध हटाने की मांग की है। मॉरिशस और अमरीका ने एक लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभियानों और अभ्यासों के दौरान लॉजिस्टिक्स सहायता का आदान प्रदान कर सकेंगी। सरकार ने कहा कि इससे मॉरिशस को महत्वपूर्ण लाभ होंगे। अमरीकी उप सहायक सचिव सारा ट्रॉटमैन ने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम से मुलाकात कर व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में मॉरिशस के अटेमिसाको में संभावित शामिल होने और 6 से 9 दिसंबर तक मॉरिशस में होने वाली यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारियों पर भी विचार विमर्श हुआ। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के 20 वर्ष पूरे होने पर आप्रवासी घाट में स्मारक समारोह आयोजित किया गया। अवसर पर इसके ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और युवाओं तक इसका इतिहास पहुंचाने पर जोर दिया गया। और विदेश में अमरीकी सेना ने ईरान के खिलाफ लगातार 6 रात हवाई हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार इनका उद्देश्य ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था। पेश अब समाचार विस्तार से। क्यूपिप की सड़कों पर कल सैकड़ों छात्र स्कूल में होने वाले उत्पीड़न यानी बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक साथ आए। सेंट जोसेफ और लोरेट दे क्यूपिप कॉलेज के छात्र एक साथ मार्च कर रहे थे। ये घटना 1 महीने से कुछ अधिक समय पहले हुई थी जब एक कक्षा के अंदर एक छात्र के साथ दूसरे लड़के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था। इस घटना का वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। तब से आरोपी छात्र को निलंबित किया गया है और पीड़ित छात्र को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की गई है। प्रणव बिहारी, अशिता रघु।
2: संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। युवाओं ने नारे लगाकर स्कूलों में होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और इसे रोकने की अपील की। इन छात्र छात्राओं का कहना है कि उत्पीड़न केवल शारीरिक या प्रत्यक्ष कृतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई अन्य रूप भी हैं, जिन्हें पहचानना और रोकना जरूरी है। इस मार्च में कई अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया क्योंकि उनका मानना है कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान की शुरुआत

0: स्कूल के गेट से पहले ही हो जाती है। इस अभियान में मंत्री अजय गणेश और माइकल सिक्यूएन ने भी भाग लिया। सरकार ने इस वर्ष स्कूलों में उत्पीड़न की समस्या से अधिक गंभीरता से निपटने का संकल्प लिया है। इसके लिए बजट में बिजनेस 10 मिलियन रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसका उपयोग इस समस्या के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने में किया जाएगा।
1: बिजनेसमैन संजीव रामदानी की यात्रा अनुमति के मामले में उन्हें 25 अगस्त को अपना फैसला पता चलेगा, जिस दिन मजिस्ट्रेट शाहीन इंशिरा दोरियाओ अपना निर्णय सुनाएंगी। उनकी जमानत की शर्तों में संशोधन के अनुरोध पर बहस कल पोटली जिला अदालत में समाप्त हो गई। 2 जून को 2 फरवरी 2026 को मिली असफलता के बाद संजीव रामदानी ने अदालत में 5 यात्राएं करने के लिए एक नई याचिका दायर की थी। संजीव रामदानी अगस्त से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए उन पर लगे यात्रा प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रही हैं। लुविना सूफी, असिता रखू।
0: संजीव रामदानी के वकील और सीनियर काउंसिल एवी जुवाल ने अपने मुवक्किल के संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए विदेश यात्रा की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से संविधान की धारा 15 के तहत मूवमेंट गारंटी की स्वतंत्रता का उल्लेख किया। वहीं फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील फयाद आरजाम खान ने कहा कि इस यात्रा को उचित ठहराने के लिए कोई अत्यंत आवश्यक कारण मौजूद नहीं है। संजीव रामदानी अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच दुबई, इटली, इंग्लैंड और मोरक्को सहित कई देशों की यात्रा करना चाहती हैं। उनका कहना है कि उनकी कंपनी ध्यानावर्तम लिमिटेड, जो महाजीवा रिजॉर्ट्स का प्रबंधन करती है, कि आर्थिक स्थिति और बकाया राशि की वसूली इन व्यावसायिक यात्राओं से जुड़ी है, जबकि कंपनी वर्तमान में स्वैच्छिक प्रशासन के अधीन है। व्यवसायी ने कहा कि दुबई में होने वाली अरबियन ट्रैवल मार्केट और लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भाग लेना उनके लिए आवश्यक है, ताकि वे साझेदारों और सहयोगियों से मुलाकात कर सकें। हालांकि एफसीसी का तर्क है कि इस तरह के कार्य कंपनी की व्यवसायिक टीम द्वारा किए जा सकते हैं और संजीव रामदानी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। वहीं वकील एवी जुवाल ने दलील दी कि बेल एक्ट की धारा 16 में अत्यंत आवश्यक आवश्यकता जैसी कोई शर्त स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है।
1: याद दिला दें कि संजीव रामदानी को आपराधिक साजिश के अस्थायी आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। उन पर स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मैनेजमेंट क्रेडिट फोरम के अध्यक्ष प्रेमचंद मंगर के साथ मिलकर ध्यानवर्तम लिमिटेड के पक्ष में 470 मिलियन रुपए की क्रेडिट लाइन जारी करने की सुविधा देने का आरोप है। ये कथित घटना 16 जुलाई 2014 की बताई जा रही है, जो पोटली स्थित SBM में हुई थी। गुरुवार 16 जुलाई को कोडा ऑल सेंटर में लॉन्च किया गया गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम का उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को ठेकेदारी और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। प्रतिभागी इस पहल को अपने कौशल विकसित करने और अपनी परियोजनाओं को साकार करने के लिए एक वास्तविक अवसर के रूप में देखती हैं।
2: गोदाम में जेंडर इक्वालिटी और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गैर सरकारी संगठन जूनियर अचीवमेंट मास्कागाई के बीच इस समझौते पर हुए हस्ताक्षर से आधिकारिक तौर पर गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई। मकसद है 35 साल या उससे कम उम्र की महिलाओं में रोजगार पाने की क्षमताएं बेहतर करना और उन्हें ठेकेदारी के प्रति प्रोत्साहित करना। किम्बली आमिया कहती है, मेरा अपना कारोबार है, मैं बायो पैदावारें तैयार करती हूँ, अब मैं और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश रही हूँ। एस्टेल जमा कहती हैं, मैंने होटल में 8 सालों से पेस्ट्रीज में काम किया है, अब मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहती हूँ और अपनी तरह के नौजवानों के लिए उदाहरण बनना चाहती हूँ। जूनियर अचीवमेंट मास्कागाई की गोल कोच ओसियान फोंट कहती हैं, इस प्रोग्राम के तहत महिलाओं को कई महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, खासकर उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जाएगा। अपने भाषण में उपप्रधान और जेंडर इक्वालिटी मंत्री आगियान नावामागी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जरूरी साधन उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया। गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम कमजोर वर्ग की युवा महिलाओं को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा। वे कहती हैं, जनता में आधे से ज्यादा महिलाएं हैं और इनमें ज्यादातर घर पर रहने वाली महिलाएं हैं, जिनका योगदान आर्थिक आंकड़ों में तो नहीं दिखता, लेकिन जो पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहीं जूनियर अचीवमेंट मास्कागाई के अध्यक्ष रोशन रामोली

0: के अनुसार ये प्रोग्राम महिलाओं को अपना जीवन बदलने में मदद देगा। वे कहते हैं कई महीनों का प्रशिक्षण होगा, इसके तहत मेंटर्स और विशेष पेशेवरों की मदद मिलेगी, दूसरे कारोबारों के साथ सहयोग कायम कराया जाएगा और नए कारोबार शुरू करने और बिक्री के लिए भी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। याद रहे कि इस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग 21 जुलाई से शुरू होगी।
1: मॉरिशस और अमेरिका ने एक लॉजिस्टिक्स कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये संधि एक कानूनी ढांचा स्थापित करती है जिससे मॉरिशस और अमेरिकी बल अभियानों, अभ्यासों या अन्य सहयोग गतिविधियों के दौरान लॉजिस्टिक्स सहायता का आदान प्रदान कर सकें। इस समझौते पर पोर्टली में पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजपाली और ब्रिगेडियर जनरल पॉल फिलसेक द्वारा हस्ताक्षर किए गए। गृह मामलों की सचिव दोरिन फोंग वेंग पुहन ने इस बात पर जोर दिया कि मॉरिशस को अमरीका के साथ इस सहयोग से महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। उन्होंने वकीलों संजीव तिलकधारी और सचिन बुधू द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर इंजंक्शन की मांग पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि बुधवार को दायर की गई इंजंक्शन की इस याचिका को जज इन चैम्बर्स ने खारिज कर दिया है।
2: जब हम ऐसे सामूहिक गतिविधि करते हैं या जहां अमरीका मॉरिशस को हस्तक्षेप करना पड़ता है, जैसे आपदाओं की स्थिति में, इस समझौते की बदौलत जरूरी प्रणाली को कार्यरत किया जाता है जिससे हम सेवाएं प्रदान कर सके। इन सेवाओं में ईंधन, पानी, स्पेयर पार्ट्स इत्यादि की आपूर्ति शामिल है। सामूहिक हस्तक्षेपों में यदि अमरीका का अनुरोध हो तो मॉरिशस सभी सुविधा देगी जिससे खतरे की स्थिति में मॉरिशस को भी आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके।
1: मॉरिशस और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करना कल पोर्टलुई की ट्रेजरी बिल्डिंग में सारा ट्रॉटमैन की प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ शिष्टाचार भेंट के केंद्र में था। अफ्रीकी मामलों और व्यापारिक एवं आर्थिक मामलों के अमरीकी उप सहायक सचिव ने प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, विशेष रूप से व्यापारिक आदान प्रदान, निवेश और व्यावसायिक साझेदारियों के विकास के माध्यम से। इन चर्चाओं के दौरान मॉरिशस के आर्टेमिसको में संभावित रूप से शामिल होने पर भी बात की गई, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में शांतिपूर्ण सहयोग के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। इसके अलावा ये आधिकारिक यात्रा यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारियों का हिस्सा है जिसकी मेजबानी मॉरिशस आगामी 6 से 9 दिसंबर तक करेगा। सारा ट्रॉटमैन को सुनते हैं जिनसे बात की माधवी चाकौनाथ ने।
3: मॉरिशस और अमेरिका के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर इस मुलाकात में जोर दिया गया। अमेरिका की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर अफ्रीकन अफेयर्स सारा ट्रॉटमैन और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।
4: I am here on a commercial diplomacy trip, so here to convey that the United States sees many opportunities to partner with Mauritius, especially in the commercial and economic space. I hear from so many U.S. companies how eager they are to look at Mauritius as a destination for investment and operations. So I was here to discuss several possible deals and ways that we can move forward.
3: बैठक में अंतरिक्ष के सेक्टर से जुड़े आर्टेमिस समझौतों में मॉरिशस की भागीदारी पर भी चर्चा हुई।
4: We are very excited about the Artemis Accords. Very thankful that Mauritius has agreed to sign. We look forward to that tomorrow. We recently had Botswana and several other African countries sign as well. And look forward to our cooperation in the space sector. It's definitely an emerging area. And we see Mauritius as certainly a hub for technology and digitization.
3: सारा ट्रॉटमैन का ये आधिकारिक दौरा यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारियों का भी हिस्सा है। ये शिखर सम्मेलन इस वर्ष 6 से 9 दिसंबर तक मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा।
1: 16 जुलाई 2006 से 16 जुलाई 2026 आप्रवासी घाट यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस स्मृति स्थल पर कल गुरुवार 16 जुलाई को एक स्मारक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपस्थित यूनेस्को में मॉरिशस की स्थायी प्रतिनिधि शास्मिन टुलूज ने याद दिलाया कि यूनेस्को आप्रवासी घाट के संरक्षण और इसके आसपास के क्षेत्र के जिम्मेदार विकास में मॉरिशस का सहयोग कर रहा है। उन्होंने युवा पीढ़ियों तक इस स्थल के इतिहास को पहुंचाने के महत्व पर भी जोर दिया ताकि वे उस विरासत को समझ सके जिसका ये प्रतीक है। 1849 और 1910 के बीच

0: एशिया और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों से आए 350,000 से अधिक आप्रवासियों ने आप्रवासी घाट से होकर प्रवेश किया था। आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक वेद प्रकाश बंधन इस स्थल को समर्पित एक मौखिक इतिहास परियोजना के तहत 20 शतायु व्यक्तियों के अनुभव और गवाही को एकत्रित करना चाहते थे। हालांकि ये पहल योजना के अनुसार पूरी नहीं हो सकी, लेकिन MBC के सहयोग से ये परियोजना जारी रहेगी। 20 शतायु व्यक्तियों की गवाहियों को रिकॉर्ड किया जाएगा। निदेशक का कहना है कि इस स्थल को विश्व धरोहर में शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मॉरिशस की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। उनको सुनते हैं जिनसे बात की राजमिला सीतामणि ने।
1: 2006 में जब एक्सक्रिप्शन होल मतलब कि आप्रवासी घाट के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पर लाया गया था, और इसके मतलब क्या होता है, मॉरिशस देश में जब ये हमारे पूर्वज आए थे तो यहाँ पर कम से कम 500,000 लोग आए थे, तब उनमें से बहुत ऐसे मतलब 75% लोगों के नाम, लोगों के नंबर सब रजिस्टर, जैसे कि हमने की अभी ID है, तो इस कारण यूनेस्को रिकॉग्नाइज करेगा कि मॉरिशस आप्रवासी घाट द्वारा ऐसा एक जगह बा पूरा दुनिया में कि यहीं पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मजदूर लोग के रखल गए बा। इस कारण से यूनेस्को हमने के आप्रवासी घाट के एस्क्रिप्शन मतलब कि पूरा दुनिया में दुनिया को बतावेला कि मॉरिशस देश में आप्रवासी घाट बा, और वहाँ पर इतना आदमी आदरण जरा काम कर लेपोक के, तो इसी कारण यूनेस्को दिखलाए कर रखा मतलब कि आप्रवासी घाट के लालिस ऑफिशियल में जना पैट्रिमोइन है लोग के लालिस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जैसी बोली जा सर। एक मतलब है कि खाद दुनिया में जैसे कि जब भारत में तो ताजमहल बा, लाटू एफेल बा, ऐसे ऐसे करके 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बोले जा ना, तो ऐसे ऐसे करके दुनिया भर में बहुत ऐसे स्थान बा जिसको लोग इतिहास से लोग वाले बा। अच्छा, ये जब लालिस बात है बहुत से लोग अपन राशन खोजे ना, सब कोई के जाए पता करे कि हम कहाँ से अलग हमारे पूर्वज की है, कब आ रहा, कौन लिपोक में आ रहा, कौन बातों से आ रहा, तो ये सब हियाँ रखल बा, ये सब इंफॉर्मेशन वहाँ हियाँ बा। तो आज जब 20 साल से हम रिकॉग्नाइज बा, आज 20वां साल है, तो हमने सोचा आज नीमन से मनावे की जना कोई 100 वर्ष हो गल बा। यूनेस्को बोलेला कि हमने के ओरल हिस्ट्री मतलब इतिहास जो है आदमी के बोली से आदमी सुनावी, तो बोली से जब आदमी सुनावी हो इतिहास सुनावी तो वह चाहे हमने कैप्चर करके रखे के, अब जैसे कोई बोला हम पियोनी कर रही लामे कर रही, तो औसन आदमी हमने खोज के लोग के इंटरव्यू करके रखे राजा, ताकि आगे चल कर जो लोग आएंगे नया पीढ़ी के लोग यहाँ मीजे हमने की आप्रवासी घाट के मीजे में आइए सा, तो वो लोग सुने में सके अनुसार ध्यान देवे और सुनकर सके अनुसार जाने कि हमारा इतिहास कैसे रहल।
0: और विदेश की खबरों में अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के खिलाफ लगातार 6ठी रात नए हवाई हमले किए, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष चल रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरानी सैन्य क्षमताओं को और अधिक कमजोर करना था। इसके बाद सेना ने बताया कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अपनी नाकेबंदी के हिस्से के रूप में एक जहाज पर भी कब्जा कर लिया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। पश्चिम से पाए जा रहे अस्थिर बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और देश के पश्चिम और सेंट्रल प्रांतों पर बारिश होगी, कभी कभी सामान्य बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 22 से 24, अन्य इलाकों पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान बारिश होती रहेगी, इसके बाद धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 17 से 19, अन्य इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। हवा उत्तर पश्चिम की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण के समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, वो भी आज रात से। सूर्योदय 6:45 और आज

शाम 5:47 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम कादेर कुन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:48 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगी। लीजिए शोक समाचार सुनिए। इंग्लैंड में 76 साल के 76 years old के श्री ईश्वर दत्त बुस्तुन, जो दत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहली बुस्तुन लेन लाफ्लोगा रहते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10:15 इंग्लैंड से उठाकर इंग्लैंड की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:15। सावन रोड नोवेल फ्रांस में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के श्री जामुन सिंह बासुदेल सिंह, जो धर्म नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11:30 उनके घर सावन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर हामदेन लेन नोवेल फ्रांस की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30। ऋषि दयानंद रोड मल्सिनिया सुरीनाम में 76 साल की 76 years old की श्रीमती अश्वंती जादू, पैदायशी नाम कतवारू और जो अश्वंती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10:00 उनके पति श्री दुलम जादू के घर ऋषि दयानंद रोड मल्सिनिया सुरीनाम से उठाकर सुयाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। महात्मा गांधी रोड लालमाटी में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंपावती हरी, पैदायशी नाम जीतन और जो कुसुम नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:00 उनके रिश्तेदार सतीश हरी के घर महात्मा गांधी रोड लालमाटी से उठाकर लावोंचुआ की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। एवेन्यू कोरियोलिस कैट्रोबोन में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रगुप्त पुनित, जो मुकेश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:00 उनके घर एवेन्यू कोरियोलिस का ट्रिबोन से उठाकर थ्रियानो की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। इंडिपेंडेंस स्ट्रीट लापे पीतो में 13 साल के 13 ईयर्स ओल्ड के हर्ष गुलुप, जो हरीश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10:00 उनके पिता श्री धीरज गुलुप के घर इंडिपेंडेंस स्ट्रीट लापे पीतों से उठाकर लेस्पेरांस पीतों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एवेन्यू जैक्सन कैट्रोबोन में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती द्रुपदी भगवंती, जो शारदा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12:00 उनके घर एवेन्यू जैक्सन कैट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे आफ्टरनून। नंबर 254 रोज हिल में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री वासुदेवन संगाली, जो मामी जे एन नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले पुलिस कॉर्पोरल थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3:00 उनके घर नंबर 254 रोज हिल से उठाकर सहमौते की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। काशीनाथ रोड पुजदुफलाक में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिदावती आप्रो, पैदायशी नाम चेलिया और जो शीला नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3:00 उनके घर काशीनाथ रोड पुजदुफलाक से उठाकर बुशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। बिलर रोड नोवेल दे कुवैत में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री मोहाबिर बिलर, जो लोनो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:00 उनकी पत्नी श्रीमती संगीता बिलर के घर बिलर रोड नोवेल दे कुवैत से उठाकर रिपाई की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 6 एवेन्यू डेकॉन कैट्रोबोन में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री सी राम सोनिया, जो सी राम नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:00 उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया साना के घर नंबर 6 एवेन्यू डेकॉन कैट्रोबोन से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM।

0: जवाला रोड ब्रह्मस्थान सेंट्रल फ्लैक में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजमावती लाल बहादुर पैदायशी नाम झब्बू और जो स्वस्ती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी आरती आज दिन के 1 बजे उनके बेटे प्रवीर सिंह कुनल लाल बहादुर के घर शिवाला रोड ब्रह्मस्थान सेंट्रल फ्लैग से उठाकर ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:01 PM। रोड ब्रह्मस्थान में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के श्री आपाना नास्ताली जो कृष्णा मासो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती हेमावती नास्ताली के घर रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:02 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भैया आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे।
1: अरे बाबा किसी भी जमाने की सुनाओ मगर सुनाओ जरूर।
2: सियावर रामचंद्र

0: 19 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स
1: न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के इंतजार में न्यूयॉर्क में वायु प्रदूषण एयर क्वालिटी हेल्थ अलर्ट जारी किया गया है। कनाडा के कई इलाकों में लगी आग से धुआं न्यूयॉर्क तक आ गया है और लोगों को घर से बाहर न जाने की सलाह दी जा रही है। स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फाइनल न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में लगने वाला है। एक तो गर्मी बहुत है, अब धुआं सांस लेना कठिन है। आज एयर क्वालिटी बेहतर होने की उम्मीद है और कल बारिश का अनुमान है। डर है कहीं फाइनल धुआं में न उड़ जाए। याद दिला दें, फाइनल परसों संडे रात्रि को 11 बजे लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर। इंग्लैंड के लिए अर्जेंटीना से मिली हार सदमे से कम नहीं है, हजम नहीं हो रही है। इंग्लैंड का डिफेंसिव रिट्रीट चर्चा का विषय बन गया है। खबर है इंग्लैंड के कई खिलाड़ी भी कोच टोमास टुखेल के टैक्टिक से नाराज हैं। टोमास टुखेल ने जवाब दिया, इट्स मे बी नॉट इन आवर डीएनए टू कंट्रोल द गेम एंड बॉल, यानी बॉल कंट्रोल नहीं कर पाए, हार गए। वेन रूनी ने यहां तक कहा कि हार मैनेजर के फैसले से हुई, अब क्या करें, हमेशा की तरह इंग्लैंड इतने करीब आकर सस्ते में आउट। स्पेन और अर्जेंटीना वाले फाइनल मैच से पहले कई खिलाड़ियों पर लाइमलाइट हैं, कई फोटो सामने आ रहे हैं। इनमें से एक में पता चला कि मेसी लामिन यामाल को बहुत पहले से जानता है। 2007 में मेसी 20 साल का था, लामिन यामाल 5 महीने का। मेसी लामिन यामाल को बाथटब में नहाते हुए नजर आया है। फोटोशूट बार्सिलोना के न्यू कैंप में हुआ था। लामिन यामाल के पेरेंट्स, उनके माँ बाप एक कॉम्पिटिशन जीतकर वहां आए थे अपने मुन्ने लामिन यामाल के साथ। कौन कहेगा कि 19 साल पहले जिस लामिन यामाल को मेसी ने गोद में लिया, उसे नहलाया था, वो लामाल उसके सामने होगा वर्ल्ड कप के फाइनल में। इंग्लैंड का खिलाड़ी जूड बेलिंगम से भी फाइनल में नहीं स्कोर कर पाया, पर मैच पूरा होने पर गुस्से में आकर अर्जेंटीना के सब्स्टिट्यूट बाको को कान के पीछे मारा। फीफा इस मामले पर तहकीकात कर रही है। कल ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए बेलिंगम को सस्पेंड भी किया जा सकता है। और क्रिकेट, इंग्लैंड ने कल टीम इंडिया को 4 विकेट से हराया। ये दूसरा वनडे मैच था इन दोनों के बीच। जो रूट 99 नॉट आउट, इंडिया के लिए विराट कोहली 65 और श्रेयस अय्यर 66 रन बनाकर आउट हुए 65-66। टोटल केवल 233, इंग्लैंड ने सीरीज लेवल किया है 1-1। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते बता दें, कल तीसरे स्थान के लिए मैच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, और संडे को फाइनल होगा स्पेन और अर्जेंटीना के बीच। न्यूयॉर्क में धुआं है, पर इस मैच में आग ही आग होगा, इंतजार करते हैं। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए। इस समय सुबह के 7:60 हो चुके हैं। शुक्रवार का दिन है और सातनभारी है पूजा। सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती है। कहा जाता है अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वह कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। इसलिए अच्छा कीजिए, अच्छा ही आएगा। आइए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। चिंतन से इसे श्रवण करते हैं श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी जमन जी की प्रस्तुति में।

0: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: उदारता उस वस्तु के दान में नहीं है जिसकी तुम्हारी अपेक्षा दूसरे को अधिक आवश्यकता है, प्रत्युत उस वस्तु के दान में है जिसके दूसरे की अपेक्षा तुम्हें स्वयं अधिक आवश्यकता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले क्यूपी के रहने वाले निवासियों को खास तौर पर दोकुले और गुट काउचे मिलिटेयर के कुछ हिस्सों में जेनेराल डे गोल, एम जी आलिन, नोत्र दाम दे लोरेट, रामफोल सामुएल, फुकोरो, लाबूडोनी, एलियास कुआ, लैवेंडर हिल और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, और फिर है गुजिल के रहने वाले निवासियों को, क्षमा कीजिए, काथोबोन के रहने वाले निवासियों को खास तौर पर एवेन्यू बियतोब, एवेन्यू से आल्टेम, एवेन्यू ओलिये, एवेन्यू रोता के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 18 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है मोका के रहने वाले निवासियों को खास तौर पर शॉल थ्रेटवेयर, रांचिली स्टेट, सी डब्ल्यू ए मिनीसी, सी डब्ल्यू ए कॉ ओगुस और आवी प्रो मिनीसी के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 18 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है,
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

7:15 बज चुके हैं और सुबह का नजराना कार्यक्रम शुरू हुआ है कुछ पुराने गीतों के साथ। और जैसे आप जानते हो कि सुबह सुबह इन पुराने गीतों के साथ अगर हम दिन की शुरुआत करें तो ऐसा लगता है कि हम पुराने दौर के उन वादियों में चले जाते हैं जहाँ पर किसी के बचपन, प्यार या फिर कुछ यादें याद आती हैं। और इसी के साथ दिन की शुरुआत भी सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हम कर लेते हैं। काम के लिए निकले हो तो कहेंगे बुंकुहार, और घर पर साथ निभा रहे हैं तो आप सभी का स्वागत करते हैं। साथ निभा रही है माला सुमारू जी, गायत्री जी है नुवेल फ्रांस से। और सूरज शर्मा सजादा जी हैं त्रियोले से। मोदालबिया से इंदिरा लौटन जी हैं, और पूरे गोपी सिंह परिवार के नाम और साथ में है अनीता करुणा जी मोदालबिया से, आपका भी स्वागत है। सुनीता जी हैं गौगुब से। चलिए आप सभी के नाम ये प्यारा सा गीत आइए सुनते हैं। फिल्म है वो कौन थी, लता जी की आवाज में। जुड़ चुकी हैं गीता जी पोंफिया से, और गीता बाई जी हैं नुवेल फ्रांस।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: भाई रास्ता चाहे कैसा भी हो, मंजिल तक पहुंचना है तो धैर्य की आवश्यकता अवश्य है। चलिए और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोभा जी हैं वाकवा से और बड़े प्यार से साथ निभा रही है और आज जो भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ख़ास तौर पर मामा शांति तुलसी जो हैं मौदालबिया की हैं और आज अपना जन्मदिन मना रही हैं, तो चलिए उनको और उनके पूरे परिवार की ओर से बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएँ। आइए आप सभी के नाम एक और सुंदर सा गीत मोहम्मद रफ़ी जी और किशोर कुमार जी दोनों मिलकर एक सुंदर सा गीत आप सभी के नाम। चलिए एक रास्ता दो राही फिर भी साथ दे रही है पूजा, आपका ही अपना ही कार्यक्रम सुबह का नजराना कार्यक्रम।

0: भाई रास्ता चाहे कैसा भी हो, मंजिल एक ही है, कामयाबी। बस हम ही जो हैं कभी लेफ्ट कभी राइट चले जाते हैं, पर जो भी ईमान के साथ चलता है और मेहनत करके चलता है तो उसे रास्ता मिल ही जाता है, मंजिल की ओर बढ़ ही जाता है। आप सुन रहे हैं
1: सुबह का नजराना, लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
0: वे ट्रैफिक में फंसे हो या फिर घर के कामों में उलझे हुए हो, फिर भी ये संगीत जो है एक सुकून दे जाती है। और कहते हैं वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। वो दौर जब फिल्मों में सिर्फ कहानी नहीं जिंदगी दिखाई जाती थी, जब हर गीत दिल से निकलकर सीधे रूह तक पहुंचते हैं। और माना गया है कि ये वो दौर था जहां हर गीत में कुछ ना कुछ छुपा हुआ था। ब्लैक एंड व्हाइट हीरा, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, प्यासा फिल्म से।

सुबह सुबह इन मुश्किलों में यही गीत चलता है। मुस्कुराइए और गुनगुनाइए हमारे साथ, ये है आपका सुबह का नजराना कार्यक्रम।

0: झलकियां
1: झलकियां दिन है शुक्रवार 17 जुलाई 2026। आइए सुनते हैं कि आज का जो रेडियो कार्यक्रम है कुछ इस प्रकार है। और अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम लेकर आएगी किरण जानकी जी। फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे समाचार फिर से पढ़े जाएंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम और 10 बजे फिर से समाचार पढ़े जाएंगे। समाचारों के उस पार 10:03 पर भक्ति धारा कार्यक्रम रोशनी द्वारा 11 बजे समाचार होंगे। समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी सायदा 11:03 पर। और 12 बजे आप तेलुगु भाषा में कृतिका द्वारा कार्यक्रम सुनेंगे। दिन के 1 बजे कार्यक्रम आरसी द्वारा और दिन के 1:45 पर रंगारंग कार्यक्रम गुजराती भाषा में रत्ना जी द्वारा। फिर 2 बजे आप हक्का कार्यक्रम सुनेंगे होंग होंग के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी सुमिता। 2:30 बजे दोपहर के 3 बजे समाचार होंगे। सपहर के 3:10 पर आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा और 3:45 से लेकर 4:40 तक उर्दू कार्यक्रम अनवर

0: की तरफ से कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। शाम के 5 बजे गीत और गज़ल कार्यक्रम रत्ना द्वारा और शाम के 6 बजे समाचार पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन पाएंगे। 6:20 पर चंद फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। सारे 6 बजे आप जिन्न द्वारा कार्यक्रम सुन पाएंगे चाइनीज कार्यक्रम और रात के 7 बजे तमिल भाषा में आप कार्यक्रम सुन पाएंगे। 7:30 बजे तेलुगु भाषा में विश्वाजी द्वारा आप कार्यक्रम सुन पाएंगे और 7:50 पर आप गीत गंगा कार्यक्रम मराठी भाषा में बापू द्वारा भजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी अलका जी। रात के 8:10 पर 8:40 पर महफिल शब परवेजा की तरफ से और 9 बजे रात के 9 बजे भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुरेखा जी द्वारा और 11 बजे आप सुनहरे पल कार्यक्रम में सुन पाएंगे पुराने दौर के गीत प्रस्तुत करेगी गिनेशा। रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक चंद प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम
1: रेडियो मॉरिशस
2: झलकियाँ
0: रेडियो मॉरिशस पर कुछ पुराने दौर के गीत और कुछ पॉपुलर गीत भी आप सभी के नाम। चलिए बढ़ते हैं अब कुछ 90s के गीत जहाँ पर गीत प्यार पर ही बनते थे और प्यार की बात जब भी हम करते हैं तो अवश्य दिल तक पहुंच ही जाती है। आशिकी फिल्म से कुमार सानू जी की आवाज में नजर के सामने जिगर के पास हमेशा रेडियो मॉरिशस आपके साथ ही रहते हैं।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: कहते हैं ना कि जो लब नहीं कह पाते ये गीत कहे जाते हैं, दिल की बात और कुछ बयां हम नहीं कर पाते, पर गीतों के माध्यम से ही अपनों तक वो मैसेज भेज ही देते हैं। पुरानी घड़ी समय जरूर बताती है, पुरानी किताब ज्ञान अवश्य देती है, और पुराने गीत दिल को जीना अवश्य सिखा देते हैं, है ना? मिला है न्यू ग्रोव से और अपने पोते को ही जो लंदन में रहते हैं और उनके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबरों में पास हुआ है, और उनके पापा कृष्ण, मामा है रुशना और दादी न्यू ग्रोव से हैं, उनको बहुत सारे शुभकामनाएं। और साथ निभा रही हैं नीता किदनी जी, और शोभा जी हैं वाकुआ से, मुन जी हैं ख्वायाओ से, और गायत्री जी हैं नुवेल फ्रांस से। आप सभी का स्वागत है। साथ निभा रही हैं वीना रामफल जी और श्यामा रघुनंदन जी हैं, साथ में है विजय बंदन जी क्लाविद से, चित्रा जी हैं मौदालबिया से, कमला जी हैं, और प्यारी आरोही के लिए भी ये प्यारा सा गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण जी की आवाज़ में। मेहनत का फल अवश्य मीठा होता है, और जब हम पास होते हैं तो सबसे बड़ी खुशी माता पिता को ही मिलते हैं।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

श्रोताओं, कुछ दशक सिर्फ गुजरते नहीं, इतिहास बन जाते हैं, और 90s का दशक उन्हीं में से एक है। वो दौर जब कैसेट रिवाइंड होते थे, लेकिन एहसास कभी

फीके नहीं पड़ते थे। जब एक गीत सुनते थे, सुनने के लिए लोग रेडियो के सामने घंटों इंतजार करते थे। जब प्यार, दोस्ती, परिवार और सपनों की कहानियां बड़े पर्दे पर दिलों में उतर जाती थी। मुझे तो याद है, हर गुरुवार को पहले फिल्में आती थी और परिवार के साथ किस प्रकार से हम बैठकर और उन फिल्मों का आनंद लेते थे। कभी माँ पकौड़ियाँ बनाती थी तो कभी स्नैक के साथ, कजिन्स के साथ, परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ बैठकर हम उन फिल्मों का आनंद लेते थे। 90s के दशक का हिंदी सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वह एक एहसास था, एक सफर था और लाखों यादों का खजाना था। हर धुन मुस्कान बन जाती थी, हर बोल किसी की कहानी कह जाते थे। श्रोताओं, जिंदगी में नई मंजिलें जरूर बनाइए, लेकिन उन लम्हों को कभी मत भूलिए जिन्होंने आपको मुस्कुराना सिखाया है। न्यू ग्रोव से फातिमा जी हैं और साथ निभा रही हैं, आपका स्वागत है फातिमा जी, और साथ निभा रही हैं आशा जानू जी और उनकी प्यारी मम्मा कुमारी जी और उनकी नेफ्यूज़ भी हैं। चलिए, विनोद राठौर जी की फ़ैन भी हैं और उनके गीत भी पसंद करती हैं, आइए उनके नाम। ऐसे ऐसे गीत अगर सुबह सुबह हम सुने तो क्यों हम छुपाएं? एहसास छुपाया नहीं जाता, उसे जताया जाता है।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो चलिए इसी के साथ हम सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। जितने लोगों ने भी साथ निभाया उन सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। और उस दौर में एक चुलबुली सी एक्ट्रेस आई थी और जब भी हम उनके फिल्में देखते हैं तो हर कोई जो लड़कियां हैं वो झूम जाती हैं और सभी को वो खुश कर ही देती हैं अपनी चुलबुली अंदाज से। ये सपने फिल्म से आप सभी के नाम और अभी जो हैं जो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं उन सभी को पूरे एम्बेसी टीम की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खास तौर पर नजीमा चेदी। और साथ नभा रही हैं शांति जी फुगैस साइद से और साथ में है शैला जी गौनहव्या सुदेश से। तो चलिए आप सभी के नाम ये प्यारा सा गीत है। साथ रहिए, 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार मिलेंगे गर्म गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। तब तक पूजा की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजर के आड़ पजलबा। नमस्ते, आवाजा भोजपुरी में समाचार सुने जा। क्यूपिप में कई छात्र स्कूल में बुलिंग के खिलाफ मार्च निकलन। सेंट जोसेफ और क्यूपिप लोरेटो के छात्र ई जागरूकता रैली में शामिल होल रहलन। ई पहल उ घटना के बाद होल जिमें एगो छात्र संगे कक्षा में अभद्र व्यवहार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होल रहल। आरोपी छात्र निलंबित बाटे, जबकि पीड़ित के मनोवैज्ञानिक सहायता देवल जाता। बिजनेसमैन संजीव रामदानी के यात्रा अनुमति पर फैसला 25 अगस्त के सुनावा जाए। उ अगस्त से दिसंबर 2026 ले यात्रा प्रतिबंध हटाए के मांग कर ले बाटे। रामदानी पर एसबीएम के पूर्व सीईओ प्रेमचंद मंगर संगे मिल के ध्यानवर्धन लिमिटेड के 470 मिलियन रुपया के क्रेडिट लाइन दिलाए के कथित आपराधिक साजिश के आरोप बाटे। मॉरिशस और अमरीका एगो लॉजिस्टिक्स कॉपोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर ले बाटे, जिससे दोनों देश की सेना संयुक्त अभियान और अभ्यास के दौरान लॉजिस्टिक्स सहायता के आदान प्रदान कर सकें जा। सरकार बोलेलन कि इससे मॉरिशस के महत्वपूर्ण लाभ होए। वहीं इस समझौता पर रोक लगाए के मांग होला याचिका के सुप्रीम कोर्ट के जज इन चैम्बर्स खारिज कर दे रहे बाटे। अमरीकी उप सहायक सचिव सारा ट्रॉटमन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात कर व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग के मजबूत करे पर चर्चा करलन। बैठक में मॉरिशस के आर्टेमिसाकोस में संभावित शामिल हुई के और 6 से 9 दिसंबर ले मॉरिशस में हुई होला यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारी पर भी विचार विमर्श करल गल। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो के 20 बरिस पूरा हो पर अप्रवासी घाट में स्मारक समारोह आयोजित करल गल। ये अवसर पर एगो ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और युवा लोग ले इतिहास पहुंचाए पर जोर देवल गल। अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड एमबीसी के सहयोग से 20 शतायु व्यक्ति की गवाही के रिकॉर्ड करेगी परियोजना जारी रखे की भी घोषणा करलन। और दूसरा देश की खबर में, अमरीकी सेना ईरान के खिलाफ लगातार 6ठा रात हवाई हमला करलन। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार एक उद्देश्य ईरानी सैन्य क्षमता के कमजोर करे के रहल। तो देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते। आवाजा मरनी और मैयत की खबर सुने जा। टेम्पल रोड बेलव्यू मोहल में दुकोरी 16 बरिस के सेकंड सीजन के श्री राजेश महावीर सिंह जे मकलून नाम से जस्ते जानत जातरलन जाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन की 3 बजे ओकर घरे टेम्पल रोड बेलव्यू मोहल से उठा के लावों चुह के शमशान भूमि ले जावल जाए। नंबर 46 पुस स्ट्रीट थोंगबो पोटलुई में 4 कोरी 12 बरिस के 92 ओं के श्रीमती कामिनी देवी शबाजी गुजर कल हवन। उनकर माटी आज दिन के 12:00 ओकर घरे नंबर 46 पुस स्ट्रीट थोंगबो पोटलुई से उठा के रिश्लुए के शमशान भूमि ले जावल जाए।

Rode Ménilmé, Charcori 7 Bariske 87 Anke, Bibi Kulsum Somtali, जे कुलसुम नाम से जस्ते जाने ते जाथरलन जा इंतकाल कर गल हवन उनकर जनाजा आज दिन के 12 बज गया था उकर भाई दाऊद सोमताली के घरे पारिसो रोड में नील से उठा के सबले आगे नमाज जनाजा खातिर सैंपल के हनाफी मस्जिद ले जावल जाए फिर दफनाए खातिर बिगाका के कब्रस्तान कनाइलिन सोंगोलेट सेंसिलिया में 3 कोरी 13 बरिस के 73 अंके श्रीमती चंद्रावत बुदिनुत पैदाइशी नाम दुखन अर्जी चांदो नाम से जस्ती जानते जातरलन जाओ गुजर गल हवन उकर माटी आज दिन के 2 बज के आधा उकर बेटी सीमा ओगुस्त कनाय के घरे उकर बेटी सीमा ओगुस्त के घरे कनाइलिन सोंगोलेट सेंसिले से उठा के प्लान मान्यो के शमशान भूमि दे चावल जाए रारोट पेंदे होश में 3 कोरी 18 बरिस के 78 अंके श्रीमती ज्ञानती उबी जे मानती नाम से जस्ती जाने ते जातरलन जाओ गुजर गल हवन उकर माटी आज दिन के 12 बजे उकर पोता धर्वेश कुसल के घरे रारोट पेंदे होश से उठा के लावंचुआ के शमशान भूमि दे चावल जाए इंग्लैंड में 3 कोरी 16 बरिस के 76 अंके श्री ईश्वर दत्त बुस्तुन जे दत्त नाम से जस्ती जानते जातरन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज फजर के 10:15 बजे उकर घरे इंग्लैंड से उठा के इंग्लैंड के शमशान भूमि दे चावल जाए सवन रोड नोवेल फ्रांस में 2 कोरी 13 बरिस के 53 अंके श्री जामुन सिंह बासुदेव सिंह जे धर्म नाम से जस्ती जानते जातरन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 11 बज के आधा उकर घरे सावन रोड नोवेल फ्रांस से उठा के रामदीन लेन नोवेल फ्रांस के शमशान भूमि दे चावल जाए ऋषि दयानंद रोड मल्सिनिया सुरीनाम में 3 कोरी 16 बरिस के 76 अंके श्रीमती अस्वंती जादू पैदायशी नाम कतवारू आज अस्वंती नाम से जस्ते जानते जातरा रंजाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज फजर के 10 बजे उकर पति दुलम जादू के घरे ऋषि दयानंद रोड मल्सिनिया सुरीनाम से उठा के सुयाक के शमशान भूमि दे चावल जाए महात्मा गांधी रोड लालमाटी में 4 कोरी 2 बरिस के 82 अंके श्रीमती चंपावती हरि पैदायशी नाम जीतन अजय कुसुम नाम से जस्ते जानते जातरा रंजाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 2 बजे उकर रिश्तेदार सतीश हरि के घरे महात्मा गांधी रोड लालमाटी से उठा के लावंचुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए एवेन्यू कोरियोलिस कटोबोन में 3 कोरी 13 बरिस के 73 अंके श्री चंद्रगुप्त पुनित जे मुकेश नाम से जस्ते जानते जातरा रंजाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 1 बजे उकर घरे एवेन्यू कोरियोलिस कटोबोन से उठा के त्रियानो के शमशान भूमि ले जावल जाए इंडिपेंडेंस स्ट्रीट लापे पीतों में 13 साल के हर्ष गुलप जे हरीश नाम से जस्ती जानते जातरन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज फजर के 10 बजे उकर पिता श्री धीरज गुलप के घरे इंडिपेंडेंस स्ट्रीट लापे पीतों से उठा के लेस्पेरेंस पीतों के शमशान भूमि ले जावल जाए एवेन्यू जैक्सन कैट्रोबोन में 3 कोरी 9 बरिस के 69 अंके श्रीमती द्रौपदी भगवंती जे शारदा नाम से जस्ती जानते जातरलन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 12 बजे उकर घरे एवेन्यू जैक्सन कैट्रोबोन से उठा के गांधी पालमा के शमशान भूमि दे चावल जाए नंबर 254 रूट उगने रोज हिल में 3 कोरी 8 बरिस के 68 अंके श्री वासुदेवन संगाली जे मामे जे एन नाम से जस्ते जानते जातरन जा जे आगे पुलिस कोपरल रहलन ओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 3 बजे उकर खरे नंबर 254 गुट उगने रोजे से उठा के सैम होते के शमशान भूमि ले जावा जाए काशीनाथ रोड पुस्त फ्लाक में 3 कोरी 11 बरिस के 71 अंके श्रीमती बिदावती अप्रू पैदायशी नाम चेरिया आज शीला नाम से जस्ते जानते जातरन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 3 बजे उकर खरे काशीनाथ रोड बस दो फ्लैग से उठा के बुशों की शमशान भूमि ले जावल जाए बिलर रोड नोवेल दे कुवैत में 3 कोरी 17 बरिस के 77 अंके श्री महावीर बिलर जेलोनो नाम से जस्ते जानते जातरन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 1 बजे उकर पत्नी श्रीमती संगीता बिलर के घरे बिलर रोड नोवेल दे कुवैत से उठा के रिपाई की शमशान भूमि ले चावल जाए नंबर 6 एवेन्यू दे कॉन कैट्रोबोन में 4 कोरी 2 बरिस के 82 अंके श्री सीराम सोनिया जे सीराम नाम से जस्ती जानते जातरन जाओ गुजर कल हवन
ओकर माटे आज दिन के 2 बजे ओकर पत्नी श्रीमती सोनिया सना के घरे नंबर 6 आवे।

0: दी कंकाचो बोन से उठा के फिनिक्स की शमशान भूमि री चावर जाए। शिवाला रोड ब्रह्मस्थान फ्लाक में 3 करी 11 बरिस के 71 साल के श्रीमती राजमावती लाल बहादुर पैदाइशी नाम जब्बू आज स्वस्ती नाम से जस्ती जानते जात्रा रंजाओ गुजर कल हवन होकर माटी आज दिन के 1 बजे होकर बेटा प्रवीर सिंह कुणाल लाल बहादुर के घरे शिवाला रोड ब्रह्मस्थान फ्लाक से उठा के ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ले जावा जाए। रॉयल रोड ब्रह्मस्थान में 4 करी 7 बरिस के 87 साल के श्री आपाना नास्ताली जे कृष्णा मासो नाम से जस्ती जानते जात्रा रंजाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकर पत्नी श्रीमती हेमावती नास्ताली के घरे रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठा के मिजिन कौंड मास के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोक में डूबल सब परिवारों के प्रति हमने संवेदना प्रकट कर थैं जा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

सभी को एक बार फिर से नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती है पूजा। आइए खेलते हैं। इस खेल में भाग लेने के लिए आपको डायल करना है 4028085 पर 94.85 पर, नहीं तो आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 5251700 पर 5251700 पर। ध्यान से सुने पहला सवाल, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आपको मुझे ये बताना है किसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, किसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। 4028085 पर आप सभी का इंतजार है।

0: चलिए लाइन पर बहुत सारे लोग जो हैं अभी साथ निभा रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो जी, नमस्ते,
1: हेलो हेलो हेलो हेलो, हम रामेश सिपोल फौजीसा।
0: आपका स्वागत है रामेश जी। और
1: हाँ,
0: आप कहाँ से बोल रहे हैं? फोंजिसा,
1: फौजीसा से रामेश
0: फोंजिसाक्स।
1: सिपोल।
0: हाँ,
1: हाँ
0: आपका आपका स्वागत है और आप भाग ले रहे हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में।
1: हाँ पूजा बहन, बहुत निमन सवाल पूछला।
0: हाँ,
1: हाँ, हमें को कोशिश करनी है कि
0: तो चला, आपका जो है समय शुरू होता है अब। बताइए आपके पास क्या जवाब है? फिर से
1: जटायु।
0: जटायु? नहीं, ये
1: हाँ
0: गलत जवाब है, फिर भी आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद पूजा बहन, बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद और शुभ दिन आपको।
1: शुभ दिन आपको भी।
0: फिर से मैं जो है प्रश्न दोहराती हूँ, ध्यान से सुने। किसे पक्षियों का राजा कहा जाता है?

0: हेलो,
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम।
1: मैं बाबा से शोभा बोल रही हूँ।
0: शोभा जी, आपका स्वागत है। और आपके पास क्या जवाब है?
1: मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद कैस्ट्रेल।
0: फिर से
1: कैस्ट्रेल?
0: नहीं, ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं, आपको कहेंगे शुभ दिन शोभा जी।
1: शुभ दिन आपको भी, बाय
0: बाय।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते.
0: नमस्ते जी. आपका शुभ नाम. प्रमिला
1: मैं प्रमिला ठाकुरबोन से बोल रही हूँ.
0: जी, आपका स्वागत है. मोस्ट वेलकम. आप गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में भाग ले रही हैं, और आपके पास क्या जवाब है प्रमिला जी?
1: मोर,
0: मोर?
1: हाँ, मयूर,
0: नहीं, ये भी
1: या
0: गलत
1: वो होगा
0: जवाब.
1: स्वान. स्वान,
0: नहीं, उसे ना राजा कहा जाता है, पक्षियों का राजा कहा जाता है. चलिए, कोई
1: धन्यवाद.
0: बात नहीं, और आपको कहेंगे शुभ दिन. वो बड़ा ही ऊपर उड़ता है, और जब भी उड़ता है तो मान लीजिए वो एक कॉन्फिडेंस के साथ उड़ता है, और उस पर बहुत सारे कोट्स भी, मोटिवेशनल कोट्स भी रहते हैं. चलिए बताइए, किसे पक्षियों का राजा कहा जाता है? चलिए मैं एक और श्रोता को लेती हूँ, और अगर जवाब ना मिले तो मैं ही दे दूंगी. हेलो,
1: हेलो, नमस्ते पूजा जी.
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ.
0: ठीक हूँ. चलिए बताइए, आपके पास क्या जवाब है?
1: तो उतना शायद मैंने कहीं पढ़ी है, एक पक्षी को कहते हैं गिद्ध.

0: राजा।
1: गिद्ध राजा। हाँ नहीं, एक और नाम है, सोच के बताइए तो। नहीं नहीं आ
0: उसका
1: रही।
0: नाम है गिद्ध, पक्षियों का राजा गिद्ध। पता नहीं।
1: पता नहीं। चलिए एक और जो है श्रोता को मैं अवसर देती हूँ,
0: ओके
1: फिर मैं
0: ओके
1: ही
0: बाय
1: बता देती
0: सचिन।
1: हूँ कि वो कौन है जिसे जो है पक्षियों का राजा कहा जाता है। चलिए उषा जी ने थोड़ा सा तो करीब ही है। हेलो,
2: हेलो पूजा जी
1: नमस्ते राधा जी,
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मैं कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं उत्कृष्ट
1: नहीं, ये भी गलत
2: वो चील
1: जवाब।
2: चील
1: नहीं,
2: ओ, कोई बात नहीं,
1: कोई बात नहीं, आपको कहेंगे शुभ दिन।
2: आपको भी।
1: धन्यवाद। राजू वोहरा जी हैं दुबई से, और उन्होंने सही जवाब दिया है, और मैं उनको बधाई कहूंगी। व्हाट्सएप के जरिए ही उन्होंने सही जवाब दिया है, और वो है बाज यानी ईगल। और साथ में एक और श्रोता जो है वो गीता जी, उन्होंने भी सही जवाब दिया है, और साथ में है दीपा जी कांटुगल से, और उन्होंने भी ईगल का जो है नाम लिया है। चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा सवाल।
3: गर्मा गर्म नाश्ता।
1: कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। जिंदगी में दो सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक झूठ नहीं बोलता, दूसरा साथ नहीं छोड़ती। जिंदगी में दो सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक झूठ नहीं बोलता, दूसरा साथ नहीं छोड़ती, वो कौन है? जिंदगी में दो सच्चे दोस्त मिलेंगे आपको, एक झूठ नहीं बोलता और दूसरा जो है साथ नहीं छोड़ती, कौन है वो? 4028085 पर।
4: Census index of romance and sex is kiss between free economy third world country on Valentine's Day with Pooran Maasi and Andre Agassi.
5: क्या?

0: अमृता जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: चलिए, ठीक होना ही चाहिए। और आप ले रही है भाग कहाँ पर, नाम तो बताइए कार्यक्रम का। नहीं, कार्यक्रम का नाम बताइए, कार्यक्रम का।
1: सवाल जवाब ना?
0: नहीं, गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम। कोई बात नहीं, बताइए, आपके पास क्या जवाब है?
1: तो मैं सोच रही हूँ दर्पण और या परछाई।
0: क्या बात है भाई, ले गई आप। आपको कहेंगे बधाई हो। सही जवाब।

0: ये बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी,
1: आपको भी शुभ दिन,
0: शुभ दिन आपको भी,
1: बाय।
0: बाय। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर।
2: गर्मा गर्म नाश्ता।

सबसे पहले किसने लुपुस पर्वत की चढ़ाई की थी? बताइए उनका नाम। सबसे पहले किसने लुपुस पर्वत की चढ़ाई की थी? आपको मुझे नाम बताना है। 4028085484085 पर सबसे पहले किसने लुपुस पर्वत की चढ़ाई की थी? गरमा गरम नाश्ता कार्यक्रम जारी है रेडियो मॉरिशस पर। 8:45 हो चुके हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए क्योंकि आप बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर। 5 मिनट बाकी हैं, आपको मुझे बताना है सबसे पहले किसने लुपुस पर्वत की चढ़ाई की थी। नाम बताइए।

0: जी गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, लाइन पर कौन है चलिए सुनते हैं। हेलो
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, नाम बताइए।
1: मैं वाका से शोभा हूँ फिर से।
0: आपका फिर से स्वागत है शोभा जी, आप बताइए सबसे पहले किसने लुपुस पर्वत की चढ़ाई की थी, नाम तो बताइए।
1: उसका नाम है चार्ल्स डार्विन।
0: उनका नाम क्या है?
1: चार्ल्स डार्विन।
0: चार्ल्स डार्विन, और आपने सही जवाब दिया है, आपको बधाई हो शोभा जी, भाग लेने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी,
0: बाय और शुभ दिन। चलिए अब हम भरेंगे एक आखिरी सवाल। मैं एक डायलॉग बोलने वाली हूँ और आपको मुझे बताना है कौन से फिल्म से लिया गया है। हमसे बचकर जाओगे कैसे, अपने दिल से हमें निकालोगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। चलिए बताइए कौन सी फिल्म से लिया गया है। हमसे बचकर जाओगे कैसे, अपने दिल से हमें निकालोगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। कौन से फिल्म से लिया गया है? 4028085 पर बताइए। बड़ाई गोलमाल है, दिमाग, दिमागी कसरत आप सभी के लिए। हमसे बचकर जाओगे कैसे, अपने दिल से हमें निकालोगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे।

0: लाइन पर एक श्रोता हैं, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब। हेलो
1: हेलो पूजा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, गरम गरम नाश्ता ले रही हूँ।

0: हो?
1: मैं भी ठीक हूँ, नाम बताइए।
0: मैं अनसुया हूँ।
1: अनसुया जी, आपका स्वागत है। और आपके पास क्या जवाब?
0: शायद ये वादा रहा।
1: ये वादा रहा? नहीं, गलत जवाब। फिर भी आपने कोशिश की, उसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
1: आपको कहेंगे शुभ दिन। चलिए, आप
2: गर्मा गर्म नाश्ता
1: हमें बताइए कि ये डायलॉग जो है किस फिल्म से लिया गया है। आपको मैं फिर से डायलॉग दोहराती हूँ। हमसे बचकर जाओगे कैसे, अपने दिल से हमें निकालोगे कैसे, हम तो वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे।

0: चलिए लगता है बड़ा ही तगड़ा है, मैं ही जवाब दे देती हूँ। और फिल्म है फना। भाई जिस अंदाज से मैंने कहा है वो एक्टर उसी अंदाज में कहता है, हम से बच कर जाओगे कैसे, अपने दिल से हमें निकालोगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। फना फिल्म से आमिर खान द्वारा। चलिए इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं, और जिन लोगों ने भी साथ दिए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और अब हम बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर, किरण जानकी जी की प्रस्तुति में, और आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत। पूजा को अनुमति दीजिए, मेरी ओर से सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
1: गर्मा गर्म नाश्ता,
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने एगो ऐसन धरोहर पर बात करब जा जोन की मॉरिशस में महाराष्ट्र से निकल के आल बा एगो अमूर्त विरासत, जेकर नाम है कोली नृत्य, कोली डांस, जोन मराठा समुदाय के एगो अमूर्त विरासत मानल जाला। कोली नृत्य के स्रोत महाराष्ट्र के कोंकण जिला है, मतलब कि महाराष्ट्र के कोंकण जिला में विशेष रूप से इन नृत्य करल जाला। कोली नृत्य महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य फोल्क डांस में से एगो है। जैसे कि नाम से ही बुझाता, इन नृत्य कोली समुदाय के मछुआरा द्वारा करल जाला। इमें नाचे होला लोग या तो खाली औरत या फिर खाली पुरुष, या फिर औरत और पुरुष दोनों जना रहेलन सा, और ये लोग रंग बिरंगा कपड़ा पहने लन सा, और ये नृत्य खातिर बहुत ही खुश मिजाज व्यक्तित्व और विशिष्ट पहचान के साथ वो लोग सामने आवेलन जा। इमें औरत और पुरुष लोग दोनों एगो कतार में एगो लाइन बना के या फिर जोड़ा बना के खड़ा होके तब नाचेलन सा। एकर में खास मुद्रा फेशियल एक्सप्रेशन बनावल जाला, और हाथ में पतवार पकड़ के नाव चलावे के एक्टिंग करल जाला। और इमें समुन्दर में उठे होला जोन ज्वार है, जोन लहर के गति है, वाघ जेके बोलीला सा, ओकर झलक दिखावल जाला। और फिर मच्छी पकड़े खातिर जाल फेंके के भी मुद्रा कोली नृत्य के विशेषता है। इन नृत्य करे खातिर औरत लोग भारत के कोंकण जिला में हरियर रंग के साड़ी या काष्टी घुटना तक पहने लनसा, और पुरुष लोग पारंपरिक लुंगी पहने लनसा, जोन आगे के तिकोना आकार में नजर आवे। और ई कोली नृत्य बाकी महाराष्ट्रन परंपरागत नृत्य से जस्ती

लयबद्ध है और ई बॉलीवुड में बहुत दिखावल गलबा लावनी नृत्य की तरह। और बॉबी फिल्म में जो प्रचलित गीत बा झूठ बोले कौवा काटे ये नृत्य कोली डांस ही है। और मॉरिशस में भी मराठा समुदाय बहुत ही शांत के साथ बहुत ही उत्साह के साथ फ्लिक ऑफ फ्लाक में ये कोली डांस के प्रतियोगिता के आयोजन करेलन जा। और एकर में बड़ा छोटा जवान औरत मर्द छोकरी छोकरा सब कोई भाग ले वेलन जा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर

क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा

0: समाचारों को लेकर विधिमा आ चुकी है। विधिमा आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सुमी, सभी को नमस्कार। क्यूपिप में कल सेंट जोसेफ अलोरेटो कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने स्कूल में हुए उत्पीड़न यानी बुलिंग के खिलाफ मार्च निकाला। ये विरोध प्रदर्शन एक महीने पहले कक्षा में हुई उस घटना के बाद हो रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया गया है और पीड़ित को मनोवैज्ञानिक सहायता दी जा रही है। व्यापारी संजीव रामदानी पर SBM में 470 मिलियन रुपए की क्रेडिट लाइन जारी कराने में कथित आपराधिक साजिश का मामला चल रहा है। इस संबंध में उन्होंने विदेश यात्रा के लिए जमानत की शर्तों में ढील देने की याचिका दायर की है। पोटली जिला अदालत में बहस पूरी हो चुकी है और मजिस्ट्रेट शाहीन इंशिरा दोहियाऊ 25 अगस्त को अपना निर्णय सुनाएंगी। आप्रवासी घाट ने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक वेद प्रकाश बंधन ने बताया कि ये दर्जा मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की प्रतिष्ठा बढ़ी है। साथ ही संस्थान MBC के सहयोग से 20 शतायु व्यक्तियों के अनुभवों को मौखिक इतिहास परियोजना के तहत रिकॉर्ड करेगा। मॉरिशस और अमेरिका ने सैन्य अभियानों और अभ्यास के दौरान लॉजिस्टिक्स सपोर्ट साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इंजंक्शन याचिका को जज ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद गृह सचिव दोहिन फोंग वेनपुरन ने इसे मॉरिशस के लिए बेहद फायदेमंद बताया है। और विदेश में कनाडा भर में 800 से अधिक जंगल की आग लगी हुई है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता की चेतावनी अब दक्षिण में कई अमरीकी राज्यों तक फैल गई है। US एयर क्वालिटी इंडेक्स कार्यक्रम द्वारा मिशिगन और मिनेसोटा के उत्तरी राज्यों के बड़े हिस्सों में वायु गुणवत्ता को खतरनाक माना गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: आज की चर्चा।
1: शुक्रवार 17 जुलाई, हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। आपको बता दें, ये जो प्रोग्राम है इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर। साथ ही इसे आप इस समय देख पा रहे हैं MBC

0: प्ले ऐप पर। आपको ये भी बता दें कि इसी प्रोग्राम का रिब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। ऐसे हमारे सभी श्रोताओं को पता है कि हर शुक्रवार को खासकर कानूनी मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि एक ऐसा विषय लेकर आए जो अभी के समय में बहुत ही आवश्यक है। आजकल अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, तो हर एक क्षेत्र में ये दो चीज़ें बहुत ही मायने रखती है। कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी की बात करें तो ये तो हमारे निजी जीवन में भी एक अहम रोल प्ले करती है। और आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच मिसेस सिरुपा वाउगे जुड़ चुकी है, जो एक सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर है, साथ ही कम्युनिकेशन कोच है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ट्रेनर है और मेटा कोच भी है। तो चलिए सिरुपा जी, आपका स्वागत हम करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और कम्युनिकेशन की बात करें सिरुपा जी, अभी के समय में कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पर्सनल लाइफ से लेकर हमारे प्रोफेशनल लाइफ तक। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये कम्युनिकेशन होता क्या है।
1: थैंक यू सुमी जी क्वेश्चन के लिए। कम्युनिकेशन, कमिंग टू द वेरी बेसिक ग्राउंड, कम्युनिकेशन एक माध्यम है जहाँ पे दो पर्सन्स रहते हैं, एक इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं और दूसरे जो होते हैं तो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ये जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, ये दरियाओं में से गुजरते हैं। वर्बल क्या होती है, जैसे कि आपकी इमोशंस, आप जो इमोशंस दिखा सकते हो, जो बोल सकते हो। नॉन वर्बल वो होते हैं जो आप बोल नहीं सकते हो, आपके इशारे, आपकी बॉडी पोस्चर्स, आपके हैंड जेस्चर्स। सो ये जो 3 माध्यम है, इस माध्यम के दौरान कम्युनिकेशन जो इन्फॉर्मेशन है सेंडर से रिसीवर के पास जाती है।
0: बिल्कुल, कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, एक 2-वे होता है कम्युनिकेशन। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है किसी रिश्ते में या जीवन के किसी भी पड़ाव पर, तो ऐसा होता है कि शायद कम्युनिकेशन 1-वे हो गया है। और जब तक हम इन बातों को समझ पाते हैं तब तक हमारी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके होते हैं। तो किस तरह से हम इस कम्युनिकेशन को हमेशा इफ़ेक्टिव रखें, इस पर भी अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। कम्युनिकेशन की बात अभी सुरूपा जी ने अच्छे से बताई कि इसका मतलब है कि किस तरह से हम अपने विचारों को, हम अपने भावनाओं को और इमोशंस को व्यक्त कर सकते हैं, और साथ ही स्पष्टीकरण के साथ यानी कि क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करना अभी के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे?
1: आपने जो चीज़ बताई है कि कहीं ना कहीं पे अभी वन साइडेड ट्रैफिक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मिस अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं पे आप अगर क्लियर नहीं हो आपके खुद के थॉट प्रोसेस में, वहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। जैसे कि आज के टाइम पे हमारे पास यूज़ करने के लिए बहुत सारे के ऐप्स है, जैसे व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप XYZ। कभी कभार होते हैं लोग आप सामने आके बात करना पसंद नहीं करते हैं, पर्दे के पीछे रह के बात करना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि आपके सामने आके अगर आपको कुछ बोलेंगे, माइट बी आप ऐसा फील हो सकता है, आप इस चीज़ को ऑफेंडेड ले सकते हो, ऐसा आपके उनके बोलने के तरीका, आप कैसे बोलते हो उसको, आप विथ गुड हार्टेड आप ना भी ले सकते हो। तो लोगों का क्या है आजकल के टाइम पे कि वो प्रेफर करते हैं व्हाट्सअप के थ्रू, कोई भी ऐप के थ्रू बोलना। बट कहीं ना कहीं पे मैं ये चीज़ फिर से इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ, ये बेहतर है कि आप सामने आके बोलिए। आप जब कोई भी चीज़ सामने आके बोलेंगे, वो जो सुनने वाला, जो सुनने वाली जो पर्सन है, माइट भी उसके दिमाग में अगर कहीं और आपके बारे में आपको लेके अगर कोई गलत फहमी है वो दूर हो सकता है। कभी कभार हम लिखने के दौरान हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ लिख, सिंगल स्टेटमेंट में हम लोग सब कुछ बोलना चाहते हैं। बट कभी कभार ऐसा होता है कि सिंगल स्टेटमेंट में हमारा जो इंटरनल, हमारा जो खुद का इमोशंस है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो आप कभी कभार सामने आके आप बोल सकते हो। तो ये एक चीज है जो जहां पे कम्युनिकेशन विद क्लियर थॉट्स सच में मदद करता है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। आजकल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते तो है, लेकिन कभी कभार हम देखते हैं, खासकर हमारे घर के बच्चों की बात करें या यंगस्टर्स की बात करें, आजकल माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में जो है काफ़ी कम्युनिकेशन गैप आ गया है, दूरियां आ गई है। अगर पेरेंट्स सवाल करते हैं तो बच्चे जो है हिचकिचाते हैं, जवाब नहीं देते हैं, या तो फिर सुनकर भी अनसुना करते हैं, या तो फिर काफ़ी घरों में या सोसाइटी में देखने को मिलता है कि उल्टा जवाब दिया जाता है, डिसरिस्पेक्टफुली बात किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अगर 1-वे ट्रैफिक होगा तो कभी भी आप अपनी बात को या अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत

0: ज़रूरी होता है कि इस कम्युनिकेशन के गैप को दूर करना, ताकि ये हमारे रिश्तों में मिठास तो लाए ही, साथ ही हमारे जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में भी हेल्पफुल हो। चलिए अब हम आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। जैसे हमने हमारे सभी श्रोता और दर्शकों को बताया कि आज हम कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं। पर्सनालिटी की बात करें तो वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को झलकाता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है?
1: पर्सनालिटी डेवलपमेंट इट्स ऑल अबाउट एक इंडिविजुअल के, जैसे कि आप, जैसे कि मैं, मेरी बिहेवियर, मेरे बॉडी पोस्चर्स, मेरे हैंड जेस्चर्स, मेरी थिंकिंग प्रोसेस, मेरी थॉट प्रोसेस, मैं कैसे खुद के इमोशंस को कंट्रोल और खुद के इमोशंस को पब्लिक में एक्सप्रेस करती हूँ, ये सब कुछ एक पैकेज में आता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये एब्सोल्युटली खुद के बारे में है, आपके खुद के लिए है कि आप खुद को सबके सामने कैसे प्रेजेंट करते हो। इट्स ऑल अबाउट यू।
0: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है। कभी कभार हम सोचते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आजकल ये भी कोर्स एक काफ़ी कॉमन हो गया है कि बहुत सारे लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स लेते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए, किस तरह से बॉडी के जेस्चर्स से अपने आप को जो है इफेक्टिवली कम्युनिकेटर बनाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ अच्छा बात करना ही आना काफ़ी नहीं है, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ हमारे जो है प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है, जैसे कि हमने कहा, ये शायद आपके निजी जीवन में भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जिस दिन हम कुछ अच्छा पहनते हैं या हमने अच्छे से तैयार हुआ है तो हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है ना?
1: हाँ, ज़रूर, आपने सही बताया है। कहीं ना कहीं पे हम लोग ये सोचते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके प्रोफेशनल तक ही है। नो, डेफिनेटली नॉट। ये आपके पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास सब तरह के आइडिया है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू लॉन्च अ बिजनेस, आपको कोई आपके खुद के बिजनेस लॉन्च करनी है, आपके पास आइडियाज़ है, आपके पास सब कुछ है, इवन फाइनेंशियली आप वेल सॉल्वेंट हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपको आपके बिजनेस को पिच करना होता है किसी के सामने, वहाँ पे जाके आप कर नहीं पाते हो। आपके पास, आपको पता है कैसे करना है, अगर इंडिविजुअली आपको पूछा जाए तो आपको ए टू जेड सब कुछ पता है। आपको पता है कैसे उसको नेविगेट करना है, कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे उसको स्टॉपेज देना है, कहाँ से आपको रेवेन्यू जेनरेट हो सकती है, सब कुछ आपको पता है। बट आपको अगर सेम चीज़ कहीं 10 लोगों के सामने जब आपको पूछा जाता है कि आप आपके बिजनेस को पिच कर सकते हो क्या, वहां पे आप कहीं ना कहीं पे 10 कदम पीछे चले जाते हो, ये सोचते हुए कि नहीं, ये नहीं मेरे से होगा। बट यू नो, अल्टीमेटली अगर देखा जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास वो कैलिबर है, आपके पास वो क्या कहते हैं क्वालिटी है। इट इज सब जस्ट सेल्फ डाउटिंग। आप खुद को कहीं ना कहीं पे सेल्फ डाउट करते हो कि आपसे वो नहीं हो पाएगा। सो हम लोग जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बात करते हैं, यही आता है कि ये कहीं ना कहीं पे आप से शुरू होती है, कहीं ना कहीं पे आप पे ही खत्म होती है। यू हैव ऑल द कैलिबर्स, आपके पास हर एक वो गुण, हर एक वो क्वालिटी है, जस्ट आपको नहीं पता कि उसको कैसे यूज एंड कहाँ पे यूज करनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ इतना नहीं है कि हम कितना अच्छा दिखते हैं, किस तरह से हम अपनी बात को सामने वाले के सामने रख रहे हैं, या फिर कितने कॉन्फिडेंटली एक काम को कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। चलिए, जितने श्रोता और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं जहां पर आज हम कम्युनिकेशन पर बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व पर बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं, तो 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अभी के लिए एक गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

0: चलिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, कम्युनिकेशन की बात करें तो ये हर एक जगह पर अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और चाहे आप किसी भी क्षेत्र से क्यों ना जुड़े हो, तो आज का जो हमारा विषय है यही है, कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सुरूपा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन और व्यक्तित्व के निर्माण की बात करें तो दोनों में क्या कनेक्शन है?
1: देखिए, कम्युनिकेशन अगर देखा जाए ये भी एक प्रोसेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये भी एक प्रोसेस है, बट जब हम कम्युनिकेशन के बात करते, एक दरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप बहुत सारे, आप भी हैं, मैं भी है, और 10 लोग हो सकते हैं। जब हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करते, वो एक्चुअली इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, इन एंड आउट वो इंडिविजुअल के बारे में होता है, चाहे उसकी लीडरशिप क्वालिटी बताइए, चाहे उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताइए, चाहे उनके जो हम लोग पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन में बोलते हैं, जिसको आपकी बॉडी पोस्चर्स, हैंड जेस्चर्स, तो वो आज इंडिविजुअल डेवलपमेंट एक्चुअली इंडिविजुअल के बारे में होता है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है।

0: तो एब्सोल्युटली वो इंडिविजुअल के लिए होता है, बट अगर हम लोग इन दोनों के बीच का जो क्या बोलते हैं, जो अगर रिलेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं पे काम करेगा नहीं अगर आप खुद इवॉल्व नहीं हो, अगर आप खुद उस प्रोसेस के अंदर नहीं हो, आप आपके फॉर एग्जांपल लीडरशिप क्वालिटी को आप क्या बोलते हैं उसको इवॉल्व करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं पे आपके कम्युनिकेशन नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग.
1: Exactly.
0: आपके थॉट प्रोसेस नीड टू बी वेरी क्लियर. आपको क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे उसको आर्टिकुलेट करना है, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन. जैसे कि हम लोग अगर एक बंद कमरे में हैं, वहाँ पे आप जोर से चीख के बात नहीं कर सकते हो. वहाँ पे आपके एक तरीका होना चाहिए कैसे आपको बात करनी चाहिए. आप भी अगर आप क्राउड में हो, वहाँ पे अगर आप साइलेंट वे में बात करोगे तो आपको कोई नहीं सुनने वाला है. तो ये जो चीज़ें, इसको हम लोग कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन. आपको पता होना चाहिए कि आपके वॉइस का पिच कहाँ पे कैसे होनी चाहिए. सो ये कहीं ना कहीं पे अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन अगर देखा जाए, इट इज इंटरकनेक्टेड.
1: कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी की बात करें तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सुरूपा जी ने काफ़ी अच्छे उदाहरण से हमें समझाया. क्योंकि अगर आप अपनी बात को सामने वाले के जो है अच्छे से कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके पर्सनालिटी में दिखता है. बिकॉज आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आप झिझक रहे हैं, तो वो हाव भाव के जरिए जो है आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल कम है, ये अपने आप में दिखाई देता है. तो यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए आपकी एक पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. और अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो डायरेक्टली आपके पर्सनैलिटी पर झलकता है.
0: एब्सोल्युटली.
1: यानी कि दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही जुड़े हुए हैं. और कम्युनिकेशन की आज हम बात ही कर रहे हैं, तो किस तरह से हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से हम इस तरह से जुड़े हुए हैं कि दुनिया भर में न जाने एक दिन में कितने सारे जो है न्यूज़ को हम कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं. कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है. घर पर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं. लेकिन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना क्यों ज़रूरी है, और किस तरह से हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं?
0: कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते, पहली चीज़ है आपके थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए. आपको अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करनी है, चाहे वो घर के हो चाहे बाहर के हो, कभी भी वन साइडेड सुनना नहीं चाहिए. बिकॉज़ वन साइडेड में ये किसी और की जजमेंट होती है. अगर आपको आपके खुद के थॉट प्रोसेस क्लियर करनी है, इन दैट रिगार्ड आपको पूरे एंटायर कोई भी टॉपिक का एंटायर इन एंड आउट पता होनी चाहिए. देन उसको आप आपके तरीके से प्रोसेस करने वाले हो. तो आपको अगर किसी और को ये चीज़ कन्वे करना है तो इट विल बी इन योर ओन वे, आप आपके तरीके से बताने वाले हो. सो अभी कभी कभार क्या होता है, जैसे मैं ट्रेनिंग वगैरह लेती हूँ, लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, उनके पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं सर्टेन टॉपिक के ऊपर. जब आपको उनको बोलोगे कि आप दो मिनट के लिए बात करिए, कहीं ना कहीं पे वो दो मिनट उनके लिए दो घंटे की बराबर होती है कि मैं कैसे क्या दो मिनट बात कर सकती हूँ. बट अगर देखा जाए, जो लोग इस प्रोफेशन में हैं मेरे साथ सहमति जताएंगे कि दो मिनट एक्चुअली कुछ भी नहीं है. बहुत कम टाइम है दो मिनट बात करने के लिए. दो मिनट किसी किसी को कभी कभार लगता है कि एक मिनट भी दो तीन शब्द बोल के, दो तीन लाइन बोल के चुप हो जाते हैं. देन हम लोग वेट करते हैं कि हाँ आपके पास तो है, आपके पास आइडियाज है, आपको इस टॉपिक के बारे में पता है, आप और भी बोल सकते हो. बट बोलना नहीं चाहते. उनको कहते नहीं, यहाँ तक ही ठीक है, हमें ये हमें इतना ही बोलना है. एक्चुअली कहीं ना कहीं पे आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रोकता है. तो कहीं ना कहीं पे अगर आप चाहते भी हो कि मुझे इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल सबके सामने उभर के निखर के आना है, कहीं ना कहीं पे आपके कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं पे आपके खुद के थॉट प्रोसेस आपको पीछे ढकेल के लेके जाता है. आप चाहते हुए भी सामने आ नहीं पाते हो. आपके पास है आइडियाज़, आपके पास है, बट आप एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो मैंने पहले भी बताया, दो मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है बोलने के लिए. आप सोचते हैं दो मिनट, अभी दो मिनट में क्या बोले. आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, आप शायद एक दो लाइन टॉपिक के बारे में बोलेंगे, दैट्स ऑल फिनिश. तो कहीं ना कहीं पे ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम चाह के भी हमारे खुद के, जो जिसको कहते हैं ना, खुद को कहीं ना कहीं पे रोक के, खुद को कहीं ना कहीं पे समेट के चलते हैं कि नहीं बोलना नहीं है. अगर बोलेंगे तो आगे वाला अगर इसको मिस सोचेगा, आगे वाला अगर मिस इंटरप्रिट कर दिया. देखिए मिस इंटरप्रिट अगर होना है वो ज़रूर होगा, इसको आप कभी रोक नहीं सकते. बट आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो इमोशंस है, अगर आप उस चीज़ को बाहर नहीं लाओगे तो आगे वाले को कैसे समझेगा.
1: बिल्कुल। और कभी कभार ऐसा होता है जैसे आपने कहा कि किसी किसी व्यक्ति के लिए 2 मिनट बात करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, और जैसे क्लोज एंड कम्युनिकेशन कहते हैं ना कि एक सवाल मतलब कि आपके बातों का एक शब्द में उत्तर देते हैं, यानी कि फिर वो कम्युनिकेशन आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे

0: पर्सनल लाइफ को भी बहुत ये करती है, इम्पैक्ट करती है। क्योंकि अगर हमने घर में बच्चों से पूछ लिया कि तुम्हारा दिन कैसे गया, तो बस एक शब्द में अगर ख़त्म कर दिया तो माता पिता को लगता है कि शायद वो बताना नहीं चाह रहा है या कुछ छुपा रहा है, और यहीं पर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। जबकि अगर आपसे पूछा गया एक बच्चे से कि आज का दिन कैसे गया, तो शायद बच्चा सुबह से शाम तक उसने स्कूल में क्या किया दोपहर तक, तो बताएगा कि आज ये हुआ वो हुआ, तो माता पिता को भी लगता है कि बच्चा जो है सारी बातें बता रहा है हमें।
1: इस चीज़ में मैं एक चीज़ बताऊंगी, मुझे सुनने वाले जो पेरेंट्स हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आफ्टर स्कूल कॉलेज होता है, एक्चुअली नहीं। पर्सनल डेवलपमेंट बच्चा अगर एक साल का एक महीने का भी है ना, तब से चालू होती है। पेरेंट्स, मोस्टली पेरेंट्स आर वर्किंग पेरेंट्स, उनको खुद की ज़िंदगी खुद के काम इसमें जूझे हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं पे बच्चों को, इवन बड़े जो यूनिवर्सिटी गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं पे चीज़ें बैकफायर करके जाती है। कैसे? बिकॉज अगर आप आपके खुद के बच्चों के साथ वो कम्युनिकेशन रखते नहीं हो, जितना आपको जानना है आप उतना ही पूछते हो और बच्चा भी उतना ही आपको जवाब देता है, वो जो कैरेक्टर है ना कैरी फॉरवर्ड होता है। जब वो लोग बाहर जाते हैं, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो बाहर खुल के बात नहीं कर पाते हैं, झिझकते हैं। 10 लोगों के इवन फ्रेंड सर्कल में भी वो होते हैं, घुल मिल नहीं पाते, सोचते हैं कि नहीं छोड़ दो, जितना पूछा है उतना ही जवाब देनी चाहिए। कहीं ना कहीं पे ना हमारी जो क्या बोलते हैं, जो फैमिली एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बात करने का प्लेस रहनी चाहिए। एज एन पेरेंट्स, एज एन ग्रैंड पेरेंट्स, हमें ये चीज़, हमें नाती, हमें जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं, खुद के जो बच्चे होते, पूछना चाहिए कैसे गए दिन, कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, टीचर्स कैसे थे, यूनिवर्सिटी के सेशंस कैसे गए। सेम वाइस वर्सा बच्चों को भी पेरेंट्स से पूछना चाहिए। कहीं ना कहीं पे आज के टाइम पे, एज आपने शुरुआत में मेंशन किया था, मोबाइल हैव टेकन दैट प्लेस। हमें अगर कभी कभार अभी मतलब अगर देखा जाए इन जनरल, बच्चे मम्मी पापा को मैसेज करते हैं कि मुझे डिनर में क्या है आप बताओ, अगर डिनर में ये है, वो भी मैसेज के दौरान, ऐसे नहीं कि मम्मी पापा को जाके पूछना, वो नहीं, मैं एक रूम से दूसरे रूम पे मैसेज होती है। तो ये जो चीज़ें ना पहले हम लोग लेते नहीं, इट्स अ गुड थिंग, हंसी मजाक में लेते, बट एक्चुअली हंसी मजाक में लेनी नहीं चाहिए ये चीज़ें। समय ना समय ये लोग हमें, आपके बच्चे आपको कहीं ना कहीं पे साइड कर रहे हैं, जितना चाहिए उतना ही, अच्छा ठीक है मम्मी से इतना पूछना है इतना ही, पापा से इतना पूछना है इतना ही, कहीं ना कहीं पे वो भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं पे बच्चे, मम्मी पापा भी सोचते रहने दो, आई एम ऑलरेडी टायर्ड, अब इससे ज़्यादा क्या, जितना पूछ जानना था मैंने, हम लोग जान चुके हैं। सो कहीं ना कहीं पे ये पूरे जो एंटायर प्रोसेस है ये घर से चालू है। हम लोग स्कूल जाते, यूनिवर्सिटी जाते, विभिन्न तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी है अराउंड द आइलैंड, बट एज एन ट्रेनर मैं ये मानती हूँ कोई भी बेसिक जो लर्निंग है वो घर से चालू होती है। आप कहीं पे भी चले जाओ, एट इनिशियल फेज में आप यू विल बी स्ट्रगलिंग, बिकॉज वो कंफर्ट जोन से बाहर आना तभी पॉसिबल है जब आपके एक फ्रेंडली एनवायरमेंट विद इन द हाउस, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, सभी के साथ। अगर वो फ्रेंडली एनवायरमेंट नहीं है ना, आप कहीं पे भी बड़ी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप यू विल बी बैक टू स्क्वायर वंस अगेन।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि छोटे में हम बच्चों को सोचते हैं कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए या उन्हें बोलने नहीं देना चाहिए, या फिर अगर किसी एनवायरनमेंट में बच्चा अगर जबान चला रहा है या उल्टा बात कर रहा है तो हम इसे मजाक में लेते हैं, अरे छोटा है सीख जाएगा बाद में, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। नहीं, अगर बच्चा अभी कुछ है जो उसमें कमी है, तो शायद उस कमी को हमें अभी ही रिकग्नाइज करके उस कमी पर काम करना चाहिए, या तो अगर उस बच्चे में किसी तरह का जो है बिहेवियरल इशू है तो उस इशू को अभी ही हमें टारगेट करके उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। क्योंकि समय के साथ जब वो आदत बन जाती है तो उस आदत से निकलना फिर उस बच्चे के लिए मुश्किल होता है।
1: जैसे कि रिसेंटली आप देखिएगा कहीं कहीं पे बच्चे डिप्रेशन में, इस उम्र में, एट द एज ऑफ 8-9 वो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी इश्यूज होती है। देन आज के टाइम पे अगर देखा जाए, नॉट इन मॉरिशस, अराउंड द वर्ल्ड बुलिंग का एक चीज़ आई है, बच्चे बुल्ड होते दूसरे के दौरान, कोई और एक बच्चा, ये एक्चुअली जो बुलिंग चीज़ है ना, ये वाइसी वर्सा है। कैसे वाइसी वर्सा है? जो कर रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंट है, बिकॉज उसको किसी ने कभी रोका ही नहीं, और जो ये चीज़ सहन कर रहा है कहीं ना कहीं पे उसने कभी वॉइस आउट किया ही नहीं। तो कैसे कभी कभार स्कूल में से किसी ने कुछ बोल दिया, उसने रिवर्स उल्टे में कुछ उसको बोला ही नहीं, अच्छा छोड़ो जाने दो, वो जाने दो के प्रोसेस में एक सर्टेन पॉइंट टाइम के बाद क्या होता है कि वो उस एंटायर प्रोसेस में इनगल्फ हो जाता है, वो

0: कभी उस प्रोसेस से बाहर ही नहीं आ पाता है. देन जब हम लोग पेरेंट्स एज एन पेरेंट्स जब आप पूछते हो कि तुम इस कब से तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, देन ही और शी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं मम्मा बहुत दिन से ये प्रॉब्लम था बट मैं कभी आपको बोल ही नहीं पाई, मैं कभी आपको बोल ही नहीं पाया. तो ये जो प्रोसेस है ना कहीं पर आपकी कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं पर आप बोल नहीं पाए और जो कर रहा है किसी ने उसको कभी रोका नहीं.
1: तो ये बहुत ज़रूरी होता है. बिल्कुल, कभी कभार ऐसा होता है ना, कहते हैं कि जो भी गलत आपके साथ हो रहा है उसको चुप रहकर सहकर आप सामने वाले को और बढ़ावा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी भी क्षमताओं पर जो है आप डाउट कर रहे हैं कि मैं आवाज़ नहीं उठा सकता हूँ. और ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में हमें कभी कभार देखने को मिलती है या हम पर भी बीतती है. तो हमें सही समय पर सही निर्णय लेना ना, सही टाइम पर सही एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है.
0: इवन जो बुलिंग के जो चीज़ें होती है ये भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है. किस लिए मैं बता रही हूँ, ये जो बच्चे जो कोई भी बुलिंग करते हैं, एक चीज़ है कहीं ना कहीं पे वो लोग उनके जो एनवायरनमेंट है घर के अंदर उनको इफेक्ट करके जाता है. कहीं ना कहीं पे वो जो घर पे बोलना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जब पेरेंट्स एज एन पेरेंट्स जब वो लोग पेरेंट्स के पास जाके वो चीज़ बता नहीं पाते और वेन दे आर नॉट वेल अप्रिशिएटेड, वो जो गुस्सा वो जो एन्जाइटी वो बाहर आके दूसरों के ऊपर निकलता है. तो ये जो एक्चुअली दोनों साइडेड अगर देखा जाए ना, बच्चे दोनों बच्चे जो कर रहा है और जो सहन कर रहा है, दोनों साइड में अगर देखा जाए दे आर अफेक्टेड बाई द सिस्टम इट्सेल्फ. और ये सिस्टम आपके खुद का घर है
1: जी. चलिए 4028085 है नंबर हमारा. अगर आज के इस विषय पर हमारे श्रोता अगर कुछ जोड़ना चाहे तो बेशक वो हमें फ़ोन कर सकते हैं. हमारे पहले कॉलर से मिलते हैं. हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है.
2: हेलो नमस्ते आप दोनों बहन जी को.
1: नमस्ते भाई जी, कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ बहन जी.
1: जी
2: तो कम्युनिकेशन के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ.
1: जी
2: कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बात जो है नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक आना जाना चाहिए.
1: जी
2: जैसे कि चाहे कारखाने में मजदूर से मालिक तक, चाहे देश के लिए राजा और प्रजा तक, तो और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है तो इनके बारे में मैं मेरा विचार से अगर बचपन से मेहनत करेंगे, विद्या सत्संग जरूरी है, जब जीने की कला आप सीखेंगे तो आप कहीं पर जाकर अच्छी तरह से जब बात करेंगे तो अपनी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक से ऊंचा अपने हाथ को इधर से उधर करेंगे और आपका उच्चारण भी ठीक रहेंगे
1: जी.
2: तो ये सब बहुत से लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग विद्वान भी है, लेकिन कुछ लोग कम पढ़े हैं लेकिन वो बहुत अच्छे से अपनी भाषण अपनी प्रवचन करते हैं. धन्यवाद बहन जी, आपने मुझे मौका दिया.
1: धन्यवाद भाई धनेश्वर जी. और चलिए यहाँ पर अगर आप अन्य श्रोता या दर्शक भी हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो बेशक आप हमें कॉल कर सकते हैं. और आज जो है हम कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर चर्चा कर रहे हैं. समय हुआ है कि एक और गीत के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाएं.

0: हमारे सभी श्रोता और दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। इस समय आप हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और आज हम कम्युनिकेशन और व्यक्तित्व पर चर्चा कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। और अगर हमारे श्रोता और दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो बेशक आप हमें कॉल कर सकते हैं। सुरूपा जी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं और सभी फैक्टर्स क्यों अपने आप में इम्पॉर्टेंट है?
1: पर्सनल डेवलपमेंट, जैसे मैंने पहले बताया, इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल। अभी इंडिविजुअलिटी के ऊपर जब आती है आपकी स्टेज अपीयरेंस, आपकी बॉडी

0: पोस्चर्स, हैंड जेस्चर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ इसमें अकाउंटेबल है. फॉर एन एग्जाम्पल, आपके किसी भी टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है, बट आप अगर कॉन्फिडेंट एनफ नहीं हो, देन आप सेम चीज़ ऑन अ पोडियम आप बोल नहीं पाओगे. आप अगर आपको अगर लाइट कैमरा से कहीं ना कहीं पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके पास उस विषय के बारे में नॉलेज होने के बावजूद भी आप पोडियम में खड़े नहीं रह पाओगे. अगर आप आपकी बॉडी पोस्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी पोस्चर्स क्यों मैटर करते हैं? फॉर एग्जांपल, आप टॉल हाइटेड कोई खड़े हैं, अगर वो श्रिंक शोल्डर के साथ स्टेज में खड़े हैं, वो डेफिनेटली अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज आपका स्टेज अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट. अगर आपके हैंड जेस्चर के बारे में बात करते हैं, हैंड जेस्चर आपको कैसे, कहाँ पे आपकी हैंड्स यूज़ करनी चाहिए, कैसे, कभी कभार होता है जब हम लोग बात करें टू बी वेरी पर्टिकुलरली एंड टू बी वेरी प्रिसाइजली, हम बोलने के टाइम पे किसी के और पॉइंटेड फिंगर बात करना नहीं चाहिए. तो ये सब कुछ कुल मिला के एक पैकेज के दौरान आता है. इट्स अ पैकेज, होलसम पैकेज फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. अभी मान लीजिए आप स्टेज में खड़े हैं, आप कोई विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपका स्टेज का यूज़ कैसे होने चाहिए? आप अगर सेंटर में खड़े हैं कि वहाँ से शुरू से अंत तक आप वहाँ पर नहीं खड़े रहना चाहिए. आपको अगर स्पेस, बड़ा सा स्पेस दिया गया है, तो आपको प्रॉपर यूज़ ऑफ द स्पेस होना चाहिए. बट यूज़ ऑफ द स्पेस कैसे होनी चाहिए? बिकॉज आप अगर, फॉर एग्जांपल, आपको पोर्टेबल माइक दिया गया है बोलने के लिए, आप चल रहे हो, आप बोल रहे हो, कहीं ना कहीं पे आपकी जो बातें, कहीं ना कहीं पे आपकी जो शब्द क्लियर नहीं रहेगी. तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं पर्पसफुल मूवमेंट. आपको कब मूव करना चाहिए, कौन से सेगमेंट में मूव करना चाहिए. मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट, कोई एक कोट, आपको कोई एक बड़ा सा स्टेटमेंट देना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन विल प्ले द रोल. जैसे कि आप एकदम साइलेंट में बात करोगे, शायद आपका स्टेटमेंट बहुत इफेक्टिव है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत बोल्ड है. अगर आपकी वॉइस बहुत कम है, अगर आप उसके ऊपर कोई वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं करते हो, कहीं ना कहीं पे आपका वो बोल्ड स्टेटमेंट फीका पड़ जाता है. कहीं ना कहीं पे आपको कोई स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट देना है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको मूवमेंट करना नहीं चाहिए, बिकॉज आपकी जो ऑडियंस रहती है सब आपके, आपको देख रहे हैं. आप उनसे और जानना है कि आप कैसे आपका एंडिंग करने वाले हो. सो ये जो पूरा जो मैंने आपको जो कुछ भी बताया है, ये सब कुछ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है. आप एक को छोड़ के दूसरे को लेके काम नहीं कर पाओगे. आपको हर एक चीज़ को एक समेटना है. करने के बाद आप देखोगे अल्टीमेटली, आप जब ये एंटायर प्रोसेस में घुसते हो, देन अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट.
1: बिल्कुल. और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात अगर हम कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि हर एक मूव आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है ही. आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, साथ ही आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है. क्योंकि एक बात अगर आप किसी घर ही में चले ले लेते, हमें अपने किसी बड़े बुजुर्ग से बात करना है, तो ऑब्वियसली उनसे बात करते वक्त हमारा टोन अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. उन्हें ऐसा ना लगे कि हम अपनी बातों के ज़रिए उनकी इंसल्ट कर रहे हैं या उनसे बुरा व्यवहार कर रहे हैं. अब वहीं पर अगर हम छोटों से बात कर रहे हैं, तो हमारे बातों में वो इमोशन होना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि हम उसे डांट रहे हैं. तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इमोशंस, ये सारे इंटरलिंक्ड है. और एक दूसरे के साथ ये तभी इफ़ेक्टिव होते हैं आप सही समय पर सही मैसेज अपनी बातों के ज़रिए दे रहे हैं.
0: बराबर है. बिकॉज कहीं ना कहीं पे अगर अगर देखा जाए, जैसे आपने बताया घर पे, आप हम जिस टोन में एक स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे के साथ बात करेंगे, सेम टोन में हम लोग एक छोटे प्री प्राइमरी बच्चे के साथ बात नहीं कर सकते. लाइक इन शॉर्ट, अगर आप बोलेंगे भी उनको नहीं समझेगा, उनको लगेगा कि मम्मी पापा गुस्सा ही कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं पर आप देखिए आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कितना मैटर करता है. कहीं ना कहीं पर अगर कभी कभार होता है कि हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, बट वॉइस के दौरान बहुत ज्यादा होता है कि आगे वाले को इफेक्ट कर जाता है, कि शायद आपकी वॉइस है ही वैसी, आपको कुछ, आप उसके ऊपर कुछ कर नहीं पाओगे. बट आप कोई भी चीज़ अगर आपको बताना है, आप थोड़ा सा अगर वॉइस हेवी करते हो, तो आगे वाले को ऐसा लगता है कि आप रूडली बात कर रहे हो, बट एरोगेंट हो. कहीं ना कहीं पे आप नहीं हो, बट कहीं ना कहीं पे वो दर्शाता है कि हाँ भाई, उन्होंने तो एरोगेंटली मेरे से बात किया है. तो कहीं ना कहीं पे आपका जो ये वॉइस है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन जो हम लोग बोलते हैं, मैटर्स अ लॉट. बिकॉज आप अगर ऑफिस में काम करते हो, इट्स अ टीम वर्क, तो वहां पे अगर आप एकदम से गुस्से में बात करोगे, अगर हैवी वॉइस में बात करोगे, जो सिंपल साधारण काम है कहीं ना कहीं पे वो होता नहीं है, लोगों को लगेगा कि हाँ भाई वो बॉस है करके कि हमेशा गुस्से में बात करना है, ये भी आपको देखना चाहिए. अगर आप एकदम धीमे से बात करोगे तो आगे वाला ऐसा भी हो सकता है

0: लाइक आपको लगेगा कि इनसे क्या सुनना, इनको तो खुद खुद में कोई दम नहीं है. तो आपका जो वॉइस है एक्चुअल में मैटर्स अ लॉट.
1: एग्जैक्टली. और कभी कभार ये हमारे बात करने के तरीके से हमारे काफी रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं.
0: बराबर है, बराबर है.
1: बहुत बातें मतलब कि कभी कभार बोलने के पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हम कैसे बोल रहे हैं. और जैसे आपने कहा कि सभी चीज़ों की शुरुआत घर से होती है, तो घर ही पर अगर हम देखें तो हम जब अपनों से बात करें तो वो भी एक तरह का लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनैलिटी को और हमारे इमोशंस को दर्शाता है. तो अगर अभी से अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियसली होकर बात करना शुरू करें तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे अंदर आ ही जाएगा. क्योंकि अगर घर ही पर अगर हम बात करते वक्त शायद अभी तक हम ऐसे बात करते थे कि सामने वाले के बारे में हम नहीं सोच रहे, जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हैं. लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अगर अपने हर एक इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाए तो शायद ये हमारे रिश्तों को भी सुधारेगा. और जब घर से बाहर हम प्रोफेशनल फील्ड में अगर लोगों से बात करेंगे तो वहाँ पर भी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा. चलिए एक और श्रोता है, उनसे मिलते हैं. हेलो, नमस्कार.
2: नमस्कार सुनी जी.
1: नमस्ते धनी जी, आपका स्वागत है.
2: जी, मेहमान को भी नमस्कार.
1: जी नमस्कार.
2: देखिए मैं बोलूंगा
1: जी
2: कि परिवार में आमने सामने मिलकर नजरें मिलाकर बातें करना ये बहुत अच्छा है.
1: जी
2: देखिए, जैसे बहन जी ने बोला कि आजकल मोबाइल द्वारा काम निकाल लेते हैं
1: जी,
2: बिना देखे. एक ही बच्चे अपने कमरे में है, माँ से मोबाइल द्वारा बात करेंगे घर ही में. ये ठीक नहीं है. और हमेशा सच्ची बात बोलना चाहिए, जो सच है नजरें मिलाकर एक दूसरे को देखकर प्यार से बोलना. ये घर में, घर परिवार में बना रहता है
1: जी.
2: एक दूसरे से मिलकर. और नहीं तो और झूठी बात न बोलें. झूठी बात बोलने से परिवार में अनबन हो जाता है. यहाँ के जैसे हो सकता है कि तलाक तक पहुँच जाते हैं एक झूठी बात लेकर आकर घर में बोलना या किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ये अच्छा नहीं है. कभी कभी हो जाता है ऐसे, तो इससे संभलना चाहिए. धन्यवाद आपको.
1: धन्यवाद धनी जी, बिल्कुल सही. कभी कभार कोई ऐसी बात हम कर देते हैं जिससे हमारे रिश्ते जो है टूटने भी लगते हैं. और अभी के समय में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात जोड़ी कि जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना होने के कारण कई डाइवोर्स हो रहे हैं, घर में आपसी जो है मनमुटाव हो रहे हैं, दूरियाँ. क्योंकि ऐसे ही आजकल का जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी जीवन शैली है, काफ़ी बिजी हो गई है, काफ़ी चैलेंजिंग हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी है. मतलब कि पहले भी थी लेकिन अभी जो है चैलेंजेस अलग है. और इसके साथ जो है हमें जो है कोप करना बहुत मुश्किल हो रहा है. तो फिर इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना और एक दूसरे को समझना. हमारे जीवन में आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है और स्ट्रेस जो है यह हमारे कम्युनिकेशन को पूरी तरह से अफेक्ट करता है.
0: एक चीज़ सही है, इवन हमारे जो जिन्होंने कॉल किया उन्होंने एक चीज़ सही बताया कि जो बोलना है आंखों में आंखें डाल के बोलो. अगर हम लोग पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं, उस फील्ड में आपका जो प्लेस है, आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं, आप जो प्लेस है, आप जैसे बात करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि आपका जो प्लेस है, इन अ सेंस आप अगर ऑडियंस के साथ मिलके बात कर रहे हो, आप अगर ऑडियंस को फेस करके बात कर रहे हो तो आपका आई कॉन्टैक्ट मैटर्स अ लॉट. जैसे कि आप वॉल के और देख के ऑडियंस के साथ बात नहीं कर पाओगे. आपके सामने अगर ऑडियंस है तो आपको ऑडियंस के और देख के, आपको ऑडियंस के आंखों में आंखें डाल के बोलनी चाहिए. आप ऐसे खड़े हो, आप वॉल के और देख के बात नहीं कर पाओगे, आपको ऑडियंस के और देख के. बट कहीं ना कहीं पे लोग झिझकते हैं, कहीं ना कहीं पे ऑडियंस देखने के बाद लोग भूल जाते हैं कि बोलना क्या है. ये कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एन इन सिंगल इंडिविजुअल. कोई बड़े से बड़े अच्छे वक्ता वो भी भूल सकते हैं, भूल सकते हैं. अगर हो सकता है आपके हाथ में स्क्रिप्ट है, बट ऑल ऑफ अ सडन आप जब लाइट देखते हो, लोग देखते हो सामने, आप भूल जाते हो बोलना क्या है.
1: कॉन्शियस
0: हो जाते हैं. यह एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने भी मेंशन किया है, जो आज के टाइम पे, हाँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे भी था, प्रॉब्लम्स नहीं थी, ऐसी नहीं है. बट अभी ज़्यादा इसलिए है बिकॉज हमें बहुत सारे ऑप्शंस अभी रेडीली अवेलेबल है. हमारे दादा परदादा के टाइम पे व्हाट्सअप नहीं था, फेसबुक नहीं थी, ऑर्कुट नहीं था. उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी उनकी सराउंडिंग्स में से मिलती थी. अभी हमें मॉरिशस बैठ के यूनाइटेड स्टेट में क्या हो रहा है विद इन फ्यू सेकेंड्स हमें पता चलता है. कहीं ना कहीं पे वहाँ पे क्या

0: चल रहा है वो किसी और के थ्रू पता चल रहा है, माइट बी अ जर्नलिस्ट, माइट बी टीवी रिप्रेजेंटेटिव, ये जो दरिया है उनके उनके थ्रू पता चलता है. तो ये जो इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास, कहीं ना कहीं पे 50% करेक्ट, 50% इनकरेक्ट. तो ये जो चीज़ें होती है ना, कहीं ना कहीं पे कहते हैं ना कि हमने तो ऐसा बोला ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, कोई आके कहे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, बट इसको मिसलीड, मिस इंटरप्रिट किया गया, दैट्स वेयर द कम्युनिकेशन गैप इवेंचुअली टर्न्स अप. तो ये जो चीज़ें हैं ये सिंपली आपके लिए नहीं है, इट्स हैपनिंग एक्चुअली अराउंड यू. इसीलिए कहीं ना कहीं पे बोलते कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक लाइफस्टाइल है, ये आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए. ये एक दिन का खेल नहीं है, दो दिन का नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है. ये जब आप प्रैक्टिस में डालोगे, आप एक सर्टेन पॉइंट के बाद देखोगे इट्स अ लाइफस्टाइल, एंड एक टाइम के बाद आप इससे और एक कदम ऊपर जाना चाहोगे कि हाँ मैं कैसे खुद को थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल लोगों के सामने बना सकती हूँ.
1: बिल्कुल सही, जैसे आपने बातों बातों में शुरुआत में बताया कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है या प्रोफेशनल फील्ड में जाने वाला होता है या किसी कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनने वाला है, तब हम सोचते हैं कि बच्चे को प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाए या इसके बारे में बताया जाए. लेकिन कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि यह हमारे जीवन शैली का हिस्सा है. तो हमें यह कम्युनिकेशन की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, यह घर ही से रोजमर्रा के जीवन में हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि अच्छे से हम तभी तैयार हो जब हम घर से बाहर जा रहे हैं. शायद अपने आप को अच्छे से मेंटेन हम घर पर भी रख सकते ताकि वो हमारी आदत बन जाए और अनकॉन्शियसली हम उसे फॉलो करते जाए. चलिए, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का समय भी खत्म होने को चला. जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी श्रोता और दर्शक जो इस समय आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं?
0: एज अ इन द फील्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन, मैं एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ लाइफस्टाइल, ये आपकी लाइफस्टाइल बननी चाहिए. आपको अगर खुद के ऊपर रियली काम करना है तो अभी से चालू करिए. डोंट वेट फॉर द करेक्ट टाइम, देर इज़ नो करेक्ट टाइम. वो शुभ मुहूर्त कभी भी नहीं, शुभ मुहूर्त अभी से है. तो खुद के ऊपर, हर एक आदमी में फ्लॉ है, हर एक इंडिविजुअल में फ्लॉ है. अगर आपको आपकी फ्लॉज पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको आपकी फ्लॉज पता नहीं है देन take sick help, go for a coaching, go for a do some training sessions, जहाँ पे आपको खुद की जो खामियाँ हैं, जो नेगेटिव है साइड्स है उसके ऊपर आप काम कर सकते हो. बिकॉज एज एन प्रोफेशनल एज एन इन पर्सनल लाइफ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट सच में बहुत मदद करता है.
1: तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिरूपा जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर इतनी सारी जानकारियाँ दी. आपको हम शुभ दिन कहेंगे और धन्यवाद कहेंगे. और जाते जाते हम हमारे सभी श्रोता और दर्शकों को भी धन्यवाद देंगे जो रेडियो और टीवी और हमारे MBC प्ले ऐप के जरिए हमारे साथ जुड़े रहे. और हमारी पूरी टेक्निकल टीम और प्रोडक्शन टीम को भी धन्यवाद, हमारी प्रोड्यूसर रत्नामाला. टेक्निक पर हमें कादिया और यूसुफ का साथ मिला, और साथ ही हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका को भी हम धन्यवाद देंगे. आज के लिए बस इतना ही. कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमें तब नहीं करना है जब इसकी जो है आवश्यकता है. ये जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली से जुड़ा होना चाहिए. तो बस जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे. नमस्कार अभी के लिए हमारी ओर से.

0: नमस्कार। क्यूपिक में कल सेंट जोसेफ अलोरेटो कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने स्कूल में हुई बुलिंग के खिलाफ मार्च निकाला। ये विरोध प्रदर्शन एक महीने पहले कक्षा में हुई उस घटना के बाद हो रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया गया है और पीड़ित को मनोवैज्ञानिक सहायता दी जा रही है। व्यापारी संजीव रामदानी पर SBM में 470 मिलियन रुपए की क्रेडिट लाइन जारी कराने में कथित आपराधिक साजिश का मामला चल रहा है। इस संबंध में उन्होंने विदेश यात्रा के लिए जमानत की शर्तों में ढील देने की याचिका दायर की थी। पोटली जिला अदालत में बहस पूरी हो चुकी है और मजिस्ट्रेट दोहयाहू 25 अगस्त को अपना निर्णय सुनाएंगी। आप्रवासी घाट ने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक वेद प्रकाश बंधन ने बताया कि ये दर्जा मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की प्रतिष्ठा बढ़ी है। साथ ही संस्थान MBC के सहयोग से 20 शतायु व्यक्तियों के अनुभवों को मौखिक इतिहास परियोजना के तहत रिकॉर्ड करेगा। और विदेश में मध्य टेक्सास में आई बाढ़ में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये वही क्षेत्र है जहां पिछली गर्मियों में अचानक आई बाढ़ के कारण 130 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। सैन एंटोनियो में राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बताया कि कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद ग्वादलूप रिवर से बड़ी और घातक बाढ़ आने की आशंका है, जिससे पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मच सकती है। पिछले साल की अचानक आई बाढ़ की शुरुआत भी इसी नदी से हुई थी। गुरुवार की सुबह आपातकालीन अधिकारियों ने क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। SSO रोड ईलो कॉन्स्टेबल में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजिनी रामलोल, जो सांता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे उनके बेटे शिव नारायण रामलोल के घर SSO रोड ईलो कॉन्स्टेबल से उठाकर कॉन्स्टेबल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। नंबर 6 एवेन्यू दे कॉन्काट्रोबोन में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री सी राम सोनिया, जो सी राम नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया साना के घर नंबर 6 एवेन्यू दे कॉन्काट्रोबोन से उठाकर अलीब्रियन कास्टेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। टेम्पल रोड बेलवी मोरेल में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेश महावीर सिंह, जो माकलून नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे उनके घर टेम्पल रोड बेलवी मोरेल से उठाकर लावांचुआ की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। चलिए, हमारा सादर प्रणाम आप सभी सुनने वालों को। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम है भक्ति धारा, भक्ति की धारा बहने जा रही है इस कार्यक्रम में। तो चलिए हम आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में, साथ ही साथ आप शास्त्र नवनीतम, ये कार्यक्रम डॉक्टर आचार्य

0: तो चलिए श्रोताओं, 10:10 हो चुके हैं स्टूडियो की घर में और अब समय हुआ है शास्त्र नवनीतम का। ये कार्यक्रम आप डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।
1: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।

ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमन। आज का विषय है धर्म की दृष्टि से तप, तीर्थ, व्रत और दान का महत्व। संसार परमात्मा की एक अद्भुत कृति है। परमात्मा की कृपा से संसार में सभी प्राणियों का जन्म होता है। उन प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो विवेक से कर्म करने का प्रयास करता रहता है। वह धर्म से जुड़कर अपने कर्म को पवित्र बनाता है और कभी कभी अधर्म से जुड़कर पाप कर्म भी करता है। धर्म ही प्रत्येक मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रण में रखता है। धर्मेन हीना पशु भी समानाः। धर्म से हीन पुरुष पशु के सदृश हो जाता है। धर्म प्रत्येक मनुष्य को तप, तीर्थ, व्रत, दान, परोपकार और यज्ञ की ओर प्रेरित करता है। धर्म ही सत्य ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और परमात्मा की उपासना करने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए हम चर्चा करें तप, तीर्थ, व्रत और दान के ऊपर। प्रथम तप। सच्चा तप क्या है? वास्तविक शुद्ध भाव रखना, सत्य को मानना, सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना और मन को बुराई की ओर जाने से रोकना ही सच्चा तप है। शरीर, इंद्रियों और मन से शुभ कार्य करना तथा वेदों व सत्य शास्त्रों के अनुसार आचरण करना तप कहलाता है। क्या तप नहीं है? अर्थात किसको तप नहीं कहेंगे? केवल धुनी लगाकर बैठना, आग सेंकना तप नहीं है। अपने शरीर को बिना कारण कष्ट देना, गर्म चिमटों से दागना, महीनों तक खड़े रहकर पैरों में सूजन ला देना या ठंड में सिर पर ठंडा पानी डालना तप नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये क्रियाएं धर्म नहीं बल्कि पाप, हिंसा और छलावा है। योग दर्शन में कहा गया है कि द्वंद्व सहनम तपः, अर्थात किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष चीज़ को प्राप्त करने के लिए सुख दुख का सहना तप कहलाता है। दूसरा है तीर्थ। सच्चा तीर्थ क्या है? सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों की संगति, परोपकार, योगाभ्यास, निष्कपट व्यवहार, सत्य भाषण और माता पिता, आचार्य व अतिथि की सेवा करना ही सच्चे तीर्थ है। जितेंद्रियता अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण, सुशीलता और ज्ञान विज्ञान जैसे शुभ गुण और कर्म जो मनुष्य को दुखों से तारते हैं, पार लगाते हैं, उन्हें तीर्थ कहा गया है। जना यस्तरन्ति तानि तीर्थानि, अर्थात मनुष्य जिन शुभ कर्मों और गुणों के द्वारा दुखों से पार उतरते हैं उनका नाम तीर्थ है। भौतिक जल स्थल पर विचार। शास्त्रों के अनुसार पानी के बने भौतिक तीर्थ स्थल मनुष्य को तारते नहीं, अज्ञानता में डुबोते हैं। यदि नदी पार करने से या नदी के पार करने के संदर्भ में देखा जाए तो नौका अर्थात नाव जल में तैरने की विद्या को भौतिक रूप से तीर्थ कहा जा सकता है क्योंकि वे नदी पार करने में सहायक होते हैं। एक नाव नदी को पार करने में सहायक होते हैं, नाव तीर्थ हैं।

प्रकार से तैरना आपको आता है, तैरने की जो विद्या है वो आपके लिए तीर्थ है। अतएव हम तीर्थ के अर्थ को सही प्रकार समझें। तीसरा है व्रत। व्रत क्या है? यजुर्वेद का एक मंत्र आया है जिसका अर्थ है कि हे सत्य धर्म के उपदेशक, व्रतों के पालक प्रभु, मैं असत्य अर्थात झूठ और बुराई को छोड़कर सत्य को ग्रहण करने का संकल्प लेता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दें कि मैं अपने इस व्रत को पूरी तरह सिद्ध कर सकूं, उस पर पूरा उतर सकूं। आगे हैं दान। दान किसे दें? कहा जाता है कि सुपात्रों को ही दान देने का विधान है। महर्षि दयानंद ने सुपात्र अर्थात योग्य व्यक्ति को ही दान देने का विधान किया है और कुपात्र अयोग्य व्यक्तियों को दान देने के प्रभाव और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दान के नियमों को समझाया है। सुपात्र और कुपात्र को दान। सुपात्र को दान देना एक शुभ कर्म माना गया है। सुपात्र कौन है? गरीब, रोगी, अंगहीन, अपाहिज, अनाथ, कोई भी ज़रूरतमंद, विद्या और कला कौशल की वृद्धि, गौशाला और अनाथालय आदि दान के योग्य पात्र हैं। कुपात्र को दान। यदि कोई व्यक्ति दान का धन पाकर उसे शराब, मांस, तंबाकू या व्यभिचार जैसे दुष्कर्मों में लगाता है तो इससे उसके मन, बुद्धि और आत्मा की हानि होती है। ऐसा दान लेने और देने वाले दोनों के लिए दुख का कारण बनता है। इसकी तुलना पत्थर की नाव में बैठने वाले और नाव चलाने वाले से की गई है जो दोनों ही डूब जाते हैं। अथर्ववेद का कथन है, न पापत्वाय राशीय, अर्थात मैं पाप कर्म के लिए कभी दान न दूं। धनिनेन धनम मा प्रियच्छ, दरिद्रान भरह कौन्तेय। महाभारत का यह वाक्य है। कहा गया है कि हे युधिष्ठिर, धनवानों को धन मत दो बल्कि दरिद्रों को, गरीबों की सहायता करो। भर पेट वाले को रोटी देना उतना ही व्यर्थ है जितना स्वस्थ व्यक्ति को औषधि दवाई देना। समुद्र में वर्षा होना भी इसी प्रकार व्यर्थ है। दान का ईश्वरीय नियम और प्रकार। सृष्टि का नियम है कि जो कोई किसी को जितना सुख पहुंचाता है, ईश्वर के न्याय से उतना ही सुख उसे भी मिलता है। कठोपनिषद के अनुसार जिस दान से लेने वाले को सुख न मिले, उसे देने वाले को भी आनंद नहीं मिलता। गीता में दान के प्रकार। भगवद गीता में तीन प्रकार के दान बताए गए हैं, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। सात्विक दान उचित समय और उचित स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति को आदरपूर्वक दिया गया दान, जिससे किसी बदले की भावना या प्रतिकूल की भावना या प्रतिकूल की आशा न हो, सात्विक दान कहलाता है। राजसी दान किसी फल की इच्छा से, भविष्य में लाभ की आशा से या दुखी मन से दिया गया दान। और तामसिक दान गलत स्थान पर, गलत समय पर किसी कुपात्र अयोग्य व्यक्ति को बिना आदर सत्कार के या तिरस्कार पूर्वक दिया गया दान। तैतीरीय उपनिषद की शिक्षाएं। तैतीरीय उपनिषद में आचार्य व गुरु द्वारा अपने स्नातक अर्थात शिक्षा पूरी कर चुके शिष्य को दिए गए हैं दीक्षांत भाषण के रूप में। दान हमेशा श्रद्धा से देना चाहिए। यदि श्रद्धा न भी हो तब भी दान देते रहना चाहिए। दान अपनी समृद्धि सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। मनु महाराज के अनुसार ज्ञान दान की श्रेष्ठता। सर्वेषाम अपि दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। मनुस्मृति के अनुसार संसार के सभी दानों में, जैसे जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, स्वर्ण और घी आदि

परंतु वेद विद्या का दान, ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। इसलिए मनुष्य को तन, मन और धन से विद्या की वृद्धि में यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। महर्षि दयानंद के अनुसार श्रेष्ठ आजीविका, यदि कोई ब्राह्मण विद्यार्थियों को पढ़ाकर या यज्ञ कराकर दक्षिणा लेता है, वह अपनी आजीविका चलाता है,

0: सामग्री लेना नीच कर्म माना गया है। महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में दान की महिमा का उल्लेख है। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, मरणासन्न व्यक्ति का मित्र कौन है और यश का स्थान क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दान। मृत्यु से पहले व्यक्ति जब दान करता है तो वह दान उसके लिए मित्र के समान हो जाता है, वही दान उसके यश का कारण बनता है। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया, किस तरह के दान का फल नष्ट हो जाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो कुपात्र को दिया जावे उस दान का पुण्य फल नष्ट हो जाता है। कुपात्र को दान देने से दान की महिमा गिर जाती है, उस दान का सही उपयोग नहीं हो पाता, उस दान का महत्व घट जाता है। परंतु सुपात्र को दान देने से दान का सही उपयोग होता है तथा अधिक से अधिक दान देने की पवित्र भावना जागृत रहती है। मरणासन्न व्यक्ति का मित्र, मृत्यु के निकट पहुँचे व्यक्ति का असली मित्र उसका किया हुआ दान है, जो परलोक में भी उसके साथ जाता है। कुपात्र अर्थात अधर्मी, चोर, शराबी, जुआरी, अयोग्य या गलत व्यक्ति को दिया गया दान व्यर्थ चला जाता है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। सुपात्र अर्थात परोपकारी, धार्मिक, योग्य और सही व्यक्ति को दिया गया दान ही सार्थक होता है और समाज में दान की भावना को बढ़ावा देता है। सुपात्र को दान देने से समाज का कल्याण होता है। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। अब हमें अनुमति दीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम, प्रस्तुत करता डॉक्टर आचार्य सुनील।

चलिए श्रोताओं, 10:23 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। कार्यक्रम है भक्ति धारा। तो चलिए इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। आज है शुक्रवार। शुक्रवार का ये दिन जो है समर्पित है माँ दुर्गा को, और माँ दुर्गा हमें जो है शक्ति प्रदान करती है। जब कभी मन निराश हो तो अपनी आँखें बंद करके माँ का स्मरण हमें ज़रूर करना चाहिए। विश्वास की एक छोटी सी लौ भी अंधेरों को दूर करने की ताकत रखती है। माँ का आशीर्वाद हमें ये एहसास भी दिलाते हैं कि हर रात के बाद एक नए सुबह अवश्य हमारा इंतज़ार करती है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ जो है कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, माँ की नौ शक्तियाँ हमें जीवन के अलग अलग गुणों की याद दिलाती है। सबसे पहले धैर्य, फिर साहस, आत्मविश्वास, करुणा, संयम और सेवा। यही गुण हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाती हैं। तो आइए, आज का ये कार्यक्रम जो है हम समर्पित कर रहे हैं माँ दुर्गा को, और बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ सुन रहे हैं। आज का दिन माँ दुर्गा को हम पूजते हैं, उनका व्रत धारण करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। और आपको पता है इन दिनों जो है गुप्त नवरात्रि चल रही है, और ऐसे में बहुत सारे भक्तगण जो है उन्हें बहुत ही श्रद्धा के साथ पूज रहे हैं। तो चलिए, आपकी पूजा अर्चना सफल हो, हमारी यही कामना है।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा की, उस शक्ति की जो हर हृदय में साहस जगाती है, और वो है माँ दुर्गा की। उनकी महिमा का गुणगान हम कर रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। वैसे श्रोताओं, माँ दुर्गा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें मजबूत बनाने का अवसर देती है। जब मन में विश्वास हो, कर्म में सच्चाई हो और हृदय में प्रेम हो, तब कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती।

श्रोताओं 10:40 हुए हैं। चंद भक्ति गीत माँ दुर्गा पर आधारित आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है दिन के 11 बजे तक चलने वाला है।

धारा इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे दिन के 11 बजे तक। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि आज जो है हम माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इन दिनों जो है गुप्त नवरात्रि चल रही है और बहुत सारे लोग जो है बहुत ही विश्वास के साथ दृढ़ संकल्प भी लेते हैं, माँ की व्रत जो है धारण करते हैं। और चलिए हम एक संकल्प लेते हैं कि अपने विचारों को हम सकारात्मक बनाए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए और हर इंसान के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखे। यही है माँ दुर्गा की सच्ची आराधना।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा हम कार्यक्रम के अंत तक पहुँचे हैं। जाने से पहले जो है हम आपसे यही कहेंगे कि हमारी जो है मनोकामनाएं जो है आपके साथ है, हमारी मंगल कामनाएं जो है आपके साथ है। माँ दुर्गा आपके जीवन को सुख शांति समृद्धि साहस और नई ऊर्जा से भर दे और आज का दिन जो है आपके लिए बेहद ही शुभ हो, हमारी यही कामना है। तो वापस हम मिल रहे हैं 2:30 बजे आपके पसंद कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए हमारी ओर से सादर प्रणाम। तो चलिए एक अंतिम नजराना आपके नाम छोड़े जा रहे हैं। 11 बजे आप समाचार सुनेंगे, समाचारों के उस पार आपके लिए उर्दू कार्यक्रम सायदा की प्रस्तुति में। तो हमारी तरफ से सादर प्रणाम। श्रोताओं, जाने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजडोंबो के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है माओ सैलमों कुप्रिम, माओ सैलमों कोकोड, माओ सैलमों ला कुशेल रेजिडेंस फ्लोरिडा, लैंड सेटलमेंट सेंट जोसेफ रोड, रुट कोचिया के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप

सेंट्रल एफिस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। चलिए, ये रेडियो मॉरिशस है। भक्तिधारा कार्यक्रम के अंत में ये प्यारा सा भक्ति गान आप सभी सुनने वालों के लिए।

0: चलिए सुनते संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे विधिमान नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। मॉरिशस और अमेरिका ने सैन्य अभियानों और अभ्यास के दौरान लॉजिस्टिक सपोर्ट साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इंजंक्शन याचिका

0: को जज ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद गृह सचिव दोहिन फोंग वेनपोन ने इसे मोशस के लिए बेहद फायदेमंद बताया है। व्यापारी संजीव रामदानी पर SBM में 470 मिलियन रुपए की क्रेडिट लाइन जारी कराने में कथित आपराधिक साजिश का मामला चल रहा है। इस संबंध में उन्होंने विदेश यात्रा के लिए जमानत की शर्तों में ढील देने की याचिका दायर की है। पोटी जिला अदालत में बहस पूरी हो चुकी है और 25 अगस्त को मजिस्ट्रेट अपना निर्णय सुनाएंगी। आप्रवासी घाट ने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई। अवसर पर आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक ने बताया कि ये दर्जा मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की प्रतिष्ठा बढ़ी है। साथ ही संस्थान MBC के सहयोग से 20 शतायु व्यक्तियों के अनुभवों को मौखिक इतिहास परियोजना के तहत रिकॉर्ड करेगा। और विदेश में यूके के कुछ हिस्सों में अब लू की स्थिति को चलते हुए लगभग 2 सप्ताह होने वाले हैं। दक्षिणी इंग्लैंड के स्थानों पर लगातार 13 दिनों तक हीट वेव के मानदंड से ऊपर तापमान दर्ज किया गया है। गुरुवार को मैरीफील्ड में तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ यूके ने लगातार 12 दिनों तक 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का तापमान देखा है, जो 2006 के बाद से इस तरह का सबसे लंबा दौर है। इन्हें खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रारोद प्लेंडेरोश में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री सूरज शिवशंकर, जो सत्यम नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उनके भाई अनिल शिवशंकर के घर रारोद प्लेंडेरोश से उठाकर पीतों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: शम्मे फरोज़ा।

आऊज़ु बिल्लाही मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे तू राजी वैसे राजी कर दे, मेरा कोई अमल तो इम्तियाजी कर दे। सर झुक जाता है मन झुकता ही नहीं, दिल भी किसी वक्त नमाजी कर दे। मौजूद सामीन, उम्मीद है आप फजल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ।

0: मुबारक दिन है आप तमाम सुनने वालों को, हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए। मौज़ सामेन, हर जुम्मे की तरह आइए आगाज़ करते हैं सूरह अल कहफ की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

सदक़ल्लाहु अज़ीम। अभी आप समाअत फरमा रहे थे सूरह अल कहफ की तिलावत। जुमे के दिन सूरह अल कहफ की तिलावत करने वाले को एक जुमे से दूसरे जुमे तक नूर अता होता है। दज्जाल के फितने से हिफाजत का ज़रिया बनती है सूरह अल कहफ। ईमान को मजबूत करती है और अल्लाह ताला पर भरोसा पैदा करती है सूरह अल कहफ। सब्र, इस्तकामत और हक पर साबित कदम रहने की तालीम देती है। दुनिया की चमक दमक और फितनों से बचने की नसीहत करती है। इंसान को आखिरत की तैयारी और नेक आमाल की तरफ रागिब करती है सूरह अलकहफ। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम से मोहब्बत, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

मौजिस अमीन इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:35 हो चुके हैं। जुम्मे का मुबारक दिन है, जुलाई की 17 तारीख है और इस्लामी साल के दूसरे महीने माहे सफ़र की आज 2 तारीख है। आप अपने पैगाम हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगाम हमें भेज सकते हैं। आइए समाअत फरमाइए एक ऐलान। मंगल 21 जुलाई, जी हाँ मंगल 21 जुलाई सुबह 10 बजे अब्दुल रज़ाक हॉल फिनिक्स में उस्तानी बेगम साजिदा रजब की सरपरस्ती में माहे सफ़र के मौके पर एक रूहानी महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है।

मोहतरम सामीन, इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि मौत ज़िंदगी का खात्मा नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी यानी आखिरत का आगाज़ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। मौत ना किसी अमीर को देखती है, ना गरीब को, ना जवान को, ना बूढ़े को। जी हाँ, मौत का वक्त जब मुकर्रर होता है तो वो बस आ जाती है और इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कब्र की ज़िंदगी आसान हो गई तो आगे के मराहिल भी आसान होंगे, और अगर वहाँ दुश्वारी हुई तो आगे के मराहिल भी सख्त हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में नेक आमाल, सच्ची तौबा, नमाज की पाबंदी, वालदेन की खिदमत, सच्चाई, अमानतदारी और लोगों के हुकूक अदा करने की फ़िक्र करनी चाहिए।

मौजूद सामेईन, हमें हमेशा की तरह बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आप हमें सुनते हैं, अपना प्यार और अपनी दुआएं भेजते हैं, हम आप सब के बेहद शुक्रगुजार हैं। कभी कभी आप फरमाइशें करते हैं वक्त की कमी की वजह से, जिसे हम कभी पूरा नहीं कर पाते, जिसके लिए हम आपसे माजरत ख्वाह हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। मरहूम इकबाल टूना, मरहूम कासिम टूना, मरहूमा सामसू टूना, जो कि फिनिक्स के रहने वाले थे, और भतीजी बीबी जैनब हुसैन, जो कि वाकवा की रहने वाली थीं, और मामू रफ़ीक खुदादीन, जो कि अवयता के रहने वाले थे, उनके लिए बेटियों सबीना टूना, रुखसाना हुसैन और सुल्ताना टूना ने दुआए मगफ़िरत और इसाले सवाब की गुजारिश की है। इसके अलावा तारिक हुसैन ने भी हमसे एक कलाम की फरमाइश की है, और हमेशा की तरह, जी हाँ, हमेशा की तरह न्यूकोव की फ़ातिमा हमारा साथ दे रही हैं, और जुम्मे की मुबारकबाद और माह सफ़र की मुबारकबाद पेश कर रही हैं। फॉरसाइड क्यूपिप से फानाज जुम्मन अपने अब्बू अनवर हुसैन, दादा मजीद इमगित, दादी हलीमा इमगित और नौशाद सुबान इमाम खान फैमिली के मरहूमीन के लिए दुआएं भेज रही हैं। जी हाँ, इसाले सवाब की गुजारिश भी कर रही हैं। और पुप्पा ईसा भाई मीरजान और तमाम मरहूमीन के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इसके अलावा वो तमाम मरीज़ों के लिए भी दुआएं शिफा की गुजारिश कर रही हैं। और वाकवा से नसरीन, जी हाँ, वो हमारा प्रोग्राम सुनना बहुत पसंद करती हैं, और वो सफ़र के महीने की मुबारकबाद और जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं, और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हम सब की तमाम दुआएं, इबादत, नमाज़ें कबूल फरमाए, आमीन। और हमें, जी हाँ, एक और पैगाम मौसूल हुआ है शोहर अब्दुल रहीम, जी हाँ, शोहर अब्दुल रहीम के लिए यास्मीन काथोबोन से बेटियां सुरैया, हाजरा, निज़ार और आकेमी दुआए मगफ़रत की गुजारिश कर रहे हैं, और दुआए शिफा की गुजारिश की गई है स्वाले और, जी हाँ, भाई स्वाले के लिए और नरगिस के लिए दुआए शिफा की गुजारिश की गई है। तेगूस से शमीम मानो ईसल जी भी हमारा प्रोग्राम सुनना बहुत पसंद करती हैं, और वो तमाम मरीज़ों के लिए

दुआए शिफा की गुजारिश कर रही हैं और तमाम मरहूमीन के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में, तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और दुआ गो हैं उन तमाम बच्चों के लिए जो इम्तिहानात दे रहे हैं या दे चुके हैं, कि अल्लाह पाक तमाम बच्चों को कामयाबियाँ अता फरमाए। इसके अलावा सैंपल से रेहाना और रियाज उर्दू की पूरी टीम को जुम्मे और माह सफ़र की मुबारकबाद पेश कर रही हैं। जी हाँ, अब आप एक कलाम समात फरमाएंगे शमीम बानो ईसल जी की फरमाइश पे।

मौज़ सामीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि ये दुनिया की ख्वाहिशात को कम कर देती है और इंसान को आखिरत की तैयारी की तरफ मुतवज्जा करती है।

अल्लाह ताला हमें मौत से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर ज़िंदगी गुजारने और ईमान पर ही दुनिया से रुखसत होने की सआदत नसीब फरमाए, और हमारी कब्रों को और तमाम मरहूमीन की कब्रों को जन्नत के बाग़ों में से एक बाग बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

दशमुख कंपन बड़बाकृत बड़ बड़बाकृत बड़ बाणल कृत बहुभस्मार्चन।

योजन शतशतयोजन शरधियोजन शरपरिलङ्घन हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुखकम्पण बडवाकृत बड बडवाकृत बडबाणलकृत बहुभस्मार्चन जय

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

चलिए श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में 2:30 बज रही है। आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर हम फिर से उपस्थित हुए हैं। तो चलिए, हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम है आपकी पसंद कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रही है। फ़ोन नंबर वही है 4020085। हमारा व्हाट्सअप पर नंबर है वो है 5251700005। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी सुनने वालों के नाम ये प्यारा सा गीत हम चला रही है।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे, और ये अगला गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं की मांग पे, व्हाट्सअप मैसेज पे समय है। सुदेवी जी आप जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप वाकवा की रहने वाली हैं। ये गीत जो है जाने वाला है दीदी सुनीता के लिए, साथ में है कुशल परिवार, आत्मारम भैया है और साथ में है शोभा, देविना, बिंदु, संगीता, साथ में है जीवराज, मालंगा के जयश्री है, राम रतन परिवार है, राम गुलाम परिवार है, कुआगू परिवार है, कागुबा परिवार है, भिकारी परिवार है। तो चलिए कोई भी गीत की मांग आप कर रहे हैं तो चलिए मेरी तरफ से ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत जाने वाला है आप सभी सुनने वालों के लिए।

चलिए श्रोताओं, 2:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आपके फ़ोन कॉल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए, आपके दिलचस्पी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मॉरिशस पे, तो चलिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेखा जी है डिपिने की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए, आपकी दिलचस्पी के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। केश जी है कथोबोन की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। तो केश जी की दो बेटियाँ हैं, जी हाँ, केश जी की दो बेटियाँ हैं, नेहा है, नितिशा है, उनके दामाद है एल्विन। तो इन लोगों की फरमाइश पे भी ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। और राधा जी है पिछिवेश सैंपिया की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हैं। उन जो, चलिए इन लोगों के नाम जो है बहुत

ही खूबसूरत सा गीत हम चलाने वाले हैं। फिल्म का नाम है दामिनी। तो ये प्यारा सा गीत जो है इन सभी श्रोताओं के नाम कुमार सानू की आवाज़ में हम सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओं, इस खूबसूरत गीत के बाद आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अगला गीत फिल्म का नाम है छोटी बहन और ये इस फिल्म से लिया गया गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ विद्या जी है उन्नपाव की रहने वाली, ये गीत जाएगा उनकी बहन सती के लिए, सुरेखा है, अमृता, बबीता, वेदना, विमला, प्रीति और मयूर। तो इन सभी लोगों की फरमाइश पे, इन सभी लोगों की फरमाइश पे ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है हम चलाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, फिल्म पुरानी है, फिल्म का नाम है छोटी बहन और इसी फिल्म से लिया गया गीत जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे और ये कार्यक्रम जो है हम जारी रखने वाले हैं शाम के 4 बजे तक। तो बहुत ही प्यारा सा गीत है, इसे आप ज़रूर गाइए, गुनगुनाए हमारे साथ।

0: ऐसी मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: और गिर गया हाथ से। गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम।
2: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे और हमारे साथ जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं समस्त बंधु परिवार के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा लोकप्रिय गीत है इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं। और हम आपको इशारा कर दें कि हमारा फ़ोन नंबर है 4028085, हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251705। तो चलिए, बहुत ही लोकप्रिय गीत है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, और ये गीत जो है हम नाम जोड़ेंगे काफ़ी लोगों के नाम जो है हमारे साथ है। हमारे साथ है गीता जी, हैं पोंफिया की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए, ये अगला गीत गीता जी के लिए, उनके पति हैं रोहित जी, आदित्य अरब जानवी, साथ में है तनिष, और ये गीत जो है उनकी बहन के लिए जो कि न्यूकोव की रहने वाली है। तो ये गीत उनके नाम भी हम करने वाले हैं। तो ये अगला गीत माँ गायत्री जी है न्यूवेल्फ्रांस की रहने वाली, उनके बेटे हैं अजय, तो ये गीत उनके नाम भी हम कर रहे हैं। तो चलिए, फिल्म का नाम है बड़े दिल वाला, और ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन सकेंगे उदित नारायण की आवाज़ में।

0: चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में दोपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। मिलेंगे वापस समाचारों के बाद।
1: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: Shakir Tom, it's exactly 3 p.m. I sunte samachar Sumaira Akbar Ali ke saath. Namaskar aur adab.
1: नमस्कार रादाब। मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। बागातर में मुख्य ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं। इस परियोजना की लागत 300 मिलियन डॉलर यानी 14 बिलियन रुपए की है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका की डेप्यूटी सब सेक्रेटरी सारा ट्राउटमैन ने आज सुबह स्थल का दौरा किया ताकि कार्यों के विकास का जायजा लिया जा सके। उन्होंने मॉरिशस और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की दोबारा पुष्टि की है। एनवायरमेंट एंड लैंड यूज अपील ट्राइब्यूनल के सामने गैर सरकारी संगठन इकोसुड द्वारा लुबुशों डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्मार्ट सिटी परियोजना के परमिट के खिलाफ मुकदमा जारी है। 15 जुलाई को स्थलों का दौरा भी किया गया ताकि इस परियोजना की असल चुनौतियां जाना जा सके। इस 17 जुलाई को लुबुशों ग्राम परिषद के अध्यक्ष कैदरस बालाइडू की सुनवाई रही। मगाजीवा रिजॉर्ट्स के सीईओ संजीव रामदानी अपने होटल के कारोबार और गतिविधियों के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं। वो दुबई, इटली, इंग्लैंड और मोरक्को जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एतराज जता रहा है। कल पूर्वी अदालत में संजीव रामदानी ने जमानत पर अपनी रिहाई की शर्तों में बदलाव की मांग की। इस मामले में अगले 25 अगस्त को मैजिस्ट्रेट दोहयाऊ अपना फैसला सुनाएंगी। विदेश में युगांडा के पूर्व में एक शैक्षिक यात्रा के दौरान एक बस दुर्घटना हुई। कम से कम 20 छात्रों की मौत हुई।

0: दूसरे दर्जन बच्चे जख्मी हुए हैं। और लगातार 36 रात के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं। आबनाए हॉर्मूज पर नियंत्रण पाने के लिए जंग की दोबारा शुरुआत हुई है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों ने ईरान की सैन्य ताकतों को कमजोर किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। क्लियर फोन नंबर एक वाकुआ में 87 साल की 87 इयर्स ओल्ड श्रीमती गौरी भगवान पैदाइशी नाम जीता, जो श्रीमती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थे कल एक बजे इनके बेटे राजेन भगवान के घर क्लेफो नंबर एक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। सीवेन चिनिया रोड गुडलैंड में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड कुमारी फुलमत मुकुंद जो विद्वंती के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे इनके घर सीवेन चिनिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआहूज की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।
3: तो चलिए श्रोताओं, से पहर के 3:04 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आपकी पसंद कार्यक्रम को हम थोड़ी देर में जारी रखने वाले हैं। तो आइए अभी के लिए सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। प्लेनवेट के रहने वाले निवासियों को, जिनमें हैं रू कनाल बाचुस, कारिकाल, टर्टल, अल दोरे के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है कनाल डायो के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रू अल्फोंस रोलांडो, डॉक्टर हेनरी पेरो बाक्ट्री के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे के बीच बिजली में की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है बिज टोम्बो के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मार्सेलमा कोप्रिम, मार्सेलमा कोकोड, मार्सेलमा ला कोशेल रेजिडेंस फ्लोरिडा, लैंड सेटलमेंट सेंट जोसेफ रोड और रूट कोचिया के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है इन सभी इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर ले आई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमाप्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और ये अगला गीत लीला जी की पसंद पे, लीला जी जो है बॉशरे के रहने वाली है, उन्होंने हमें फ़ोन किया है। तो ये अगला गीत उनकी भतीजी प्रीति बंजन जी के नाम, जो कि कनाडा जा रही है, वापस छुट्टियां मनाया आई थी। तो चलिए ये गीत जाएगा प्रीति बंजन के नाम। साथ में है मौसा है, ऋषि है, विक्की करुणा है, साथ में है पति संजय रंजन है। तो इन सभी लोगों की फरमाइश पे ये प्यारा सा गीत, खास करके लीला जी की फरमाइश पे ये अगला गीत जो है जाएगा, फिल्म नाम से लिया गया। और मनहर उदास की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत हम सुन पाएंगे।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला गीत जो है फिल्म जूरी से लिया गया, और ये प्यारा सा खूबसूरत गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ इस समय व्हाट्सएप मैसेज पे। माया है मोटाब्लॉन्च की रहने वाली, और ये गीत जो है जाएगा उनकी दो नातिन के नाम, सेजल है और वेदिका है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में हमारे साथ इस समय व्हाट्सएप मैसेज पे है रूमा जी, आरती, इंदिरा, राकेश जी है, धीरज साथ में है, नमलेश, बेटी है कीर्तिना, साथ में है बेलगौज के रहने वाली शिमला। तो इन सभी लोगों के नाम पे ये अगला गीत हम चला रहे हैं, फिल्म बेटा से लिया गया।

0: चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम सपहर के 3:24 हुए हैं और अगला गीत है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का। ये प्यारा सा गीत है जो है जाएगा भाई हरीश जी के लिए, बोबासा के रहने वाले हैं आप। ये गीत है समस्त श्रोताओं के लिए।
1: Why don't you come and join in Lover's Paradise?

अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे श्रोताओं। हमारे साथ प्रेमिला जी है, खतखबोन की रहने वाली। ये अगला गीत उनके नाम हम करने वाले हैं और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गीत है जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ जो है इस समय, जी हाँ, इस समय हमारे साथ अनिता जी है फिकाफला की रहने वाली, तो उनका ये मनपसंद गीत भी इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं।

तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत एक साल गिरा गीत इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं गुडलैंड्स की सुरेखा जी ने हमें याद किया है उनका जो है भांजे खुशराज अपना जन्मदिन मना रहे हैं शुभकामनाएं मामा की तरफ से दो मौसी है मामू है मामी है मामा है मीरा साथ में है उनके पिताजी सुभाष उनकी पत्नी है देविना सभी कजिन्स परिवार की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं

चलिए, दोपहर के 3:40 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओं, हम आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रख रहे हैं। तो चलिए अगले गाने की ओर। हमारे साथ जो है विश्वानी दुमन जी हैं और आप वाकवा की रहने वाली हैं। ये अगला गीत जो है जाने वाला है आपकी दो बहनों के लिए। इंदिरा शारदा है, आपकी सहेलियाँ हैं नीला प्रतिभा, साथ में है शोभा, गीता गजादर। तो इन सभी लोगों के नाम पे जो है ये अगला गीत हम चलाएंगे। और नाम जोड़ने वाले हैं हमारे साथ शकुन जी हैं लॉन्ग माउंटेन से, और ये अगला गीत जाएगा। उनकी ननन है गायत्री जी, उनका बेटा है अजय, सुनीता जी के लिए। तो इन सभी लोगों के लिए जो कि न्यू अल्फोंस के रहने वाले हैं, आप लोग जो है आप सभी लोगों के नाम जो है बहुत ही खूबसूरत सा नजाना जो है हम शामिल कर रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। ये अंतिम नजराना सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभा जी है पॉम्पली मुसिल से, मुन जी है कोयो की रहने वाली साथ में है, मलासुमारू जी है काथोबोन की रहने वाली, उनके पति है सूर्यदेव जी, त्रिवेणी जी है गुडेंस की रहने वाली, उनके पति है अनिल जी, सभी मोहन परिवार के लिए। और साथ में है हमारे साथ जो है काफ़ी लोग जो है पेची वेजे सैपिया की रहने वाले अनिता जी हैं, उनकी तीन बेटियों काजल शीतल दीक्षा, उनके दामाद भी है वितिश, उनके पति है बालदेव जी। तो इन सभी लोगों के नाम जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों के नाम जो है बहुत ही खूबसूरत सा नजराना। मौताबा की कमला जी के लिए भी ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं अंतिम नजराना आपकी पसंद कार्यक्रम में। तो चलिए कुछ घड़ी में हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर, गुदस्ता ओर। ये कार्यक्रम आप निसार की प्रस्तुति में सुन

है इन सभी लोगों के नाम जो है बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना। मौताबा की कमला जी के लिए भी ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं अंतिम नज़ाना आपकी पसंद कार्यक्रम में। तो चलिए कुछ घड़ी में हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। गुदस्ता है और ये कार्यक्रम आप निसार की प्रस्तुति में सुन।

0: इंटरेस्टेड भी थे उसमें, तो वो डरती थी। हर बाप माँ डरते हैं उस हवाले से कि बच्चे को ऐसा काम ना करें जिससे बाद में जाके हमें कोई मसला पैदा हो जाए। मैंने छोड़ दी, जो मेरी बीवी ने कहा बस आप छोड़ दीजिए, बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, बस अब वो ये गाने गाती अच्छा नहीं लगता। अल्लामा इकबाल पहले शायर हैं जिन्होंने मगरबी उलूम को भी पढ़ा। अंग्रेज़ी के बहुत बड़े राइटर वो भी थे, उनके बेशतर नसरी किताबें अंग्रेज़ी में हैं और बड़े आला मौजूआत पर हैं, इल्मी मौजूआत पर हैं। और अल्लामा इकबाल हकीकी माना में एक इतने बड़े शायर और साहिब इल्म आदमी थे कि ऐसा हमारी उर्दू शायरी में नाम नहीं मिलेगा। हाँ, होते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, गालिब ने कहा था, तो जाहिर है कि जो और लोग थे उनको भी मिला, उनका भी हक़ था। अब बाज़ोकात आदमी नज़र में नहीं आता है या कुछ और मसलहतें होती हैं। आईना दर आईना मेरी सवाने हयात के नाम है, मंजूम सवाने हयात। देखिए, उर्दू में सवाने हयात नहीं लिखेगी, ऑटोबायोग्राफी जिसे कहते हैं, छोटी मोटी कहानियाँ, लव स्टोरीज टाइप की चीज़ें, वो तो मंजूम लिखी गई हैं पोइट्री में, लेकिन पूरी ज़िंदगी लिखी मुश्किल है, जिसमें सारे मसले हैं, ज़िंदगी के भी मुश्किलात, ये दुख सुख सब है। तो ये पहली बार मैंने लिखा, और मेरी एक आरज़ू हमेशा रही कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि जो मेरे नाम से मंसूब रहे।
1: उर्दू शायरी में हिमायत अली शायर का एक कारनामा, तीन मिसरों पर मुश्तमिल एक नई सिन्फ सुखन सलासी की ईजाद है। उनके यहाँ इश्क बुनियादी जज्बे की हैसियत रखता है, मगर इस बात की वजाहत भी ज़रूरी है कि उनकी गज़ल में जज्बाए इश्क गज़ल के रिवायती जज्बाए इश्क से कदरे मुख्तलिफ हैं। उनके इश्किया अशार में भी इंसानी नफ्सियात और मुआशरती अदब मुसावात की तपिश मौजूद हैं। नाकिदीन के मुताबिक उनके अशार में शेरी तर्ज एहसास और जदीद तर्ज एहसास का बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज मिलता है। उनके मजमूए कलाम में आग का फूल, मिट्टी का कर्ज, तिश्नगी का सफ़र शामिल हैं। तनकीदी मजामीन के भी तीन मजमूए शामिल हो चुके हैं। हिमायत अली शायर रेडियो ड्रामों में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। इसके अलावा फिल्म की दुनिया से भी उनका बड़ा मजबूत ताल्लुक रहा। उन्हें फिल्म आंचल और दामन के गानों के लिए बेहतरीन नगमा निगार के लिए दो मर्तबा निगार अवार्ड मिले। वो उर्दू अदब की तारीख में वाहिद ऐसे शायर हैं जिनकी खुद नविश्त भी मंजूम हैं और 3500 अशार पर मुश्तमिल हैं जो आईना दर आईना के नाम से शाया हुई। हिमायत अली शायर ने सन 2007 में अपनी तमाम शायरी को यकजा करके कुलियात शायर के नाम से शाया किया।
2: पहले एक सुलासी पेश कर दूं कि आजकल सबसे बड़ा मसला हमारी दुनिया में हम सबका मुश्तरक मसला है, इस दुख भरे जहान में कोई कहाँ रहे, इस दुख भरे जहान में कोई कहाँ रहे, गिरजा हो, खानकाह हो, मंदिर हो या हरम, इस दुख भरे जहान में कोई कहाँ रहे, गिरजा हो, खानकाह हो, मंदिर हो या हरम, जिसको जहाँ सुकून मिले वो वहाँ रहे।
3: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
2: इस दुख भरे जहान में कोई कहाँ रहे, गिरजा हो, खानकाह हो, मंदिर हो या हरम, जिसको जहाँ सुकून मिले वो वहाँ रहे। एक शेर सामने आ गया कि शायद बिना रखी है हमारी हवाओं पर,
3: वाह,
2: शायद बिना रखी है हमारी हवाओं पर, अब तक गुजर रही है बका की दुआओं पर, शायद बिना रखी है हमारी दुआ हवाओं पर, अब तक गुजर रही है बका की दुआओं पर, गुलकारियों से लाख छुपाओ लहू के दाग, गुलकारियों से लाख छुपाओ लहू के दाग, चेहरे बने हुए हैं तुम्हारी कबाओं पर।

0: चेहरे बने हुए हैं तुम्हारी कबाओं पर। इस नज़्म का उन्वान है हवा। अब हवा किस किस जाविये से हमारी ज़िंदगी में आती है और क्या कुछ हमें दिखा जाती है, ज़रा इस पर तवज्जो फरमाएं। हवा का एतबार क्या, हवा पे इख्तियार क्या, हवा का इंतज़ार क्या। हवा का एतबार क्या, हवा पे इख्तियार क्या, हवा का इंतज़ार क्या। इसी हवा के लम्स से खिले थे फूल चार सू, इसी हवा के लम्स से खिले थे फूल चार सू, इसी हवा की जद में बुझ गया चराग़ आरज़ू, इसी हवा की जद में बुझ गया चराग़ आरज़ू। हवा से किस तरह कहूँ कि मेरी ज़िंदगी है तू, हवा से किस तरह कहूँ कि मेरी ज़िंदगी है तू। हवा का रूप एक है मगर चलन जुदा भी है, हवा का रूप एक है मगर चलन जुदा भी है। निगाह में नहीं मगर निगाह आशना भी है, निगाह में नहीं मगर निगाह आशना भी है। कभी है निज़्द जाँ बहुत कभी गुरेज पा भी है, कभी है निज़्द जाँ बहुत कभी गुरेज पा भी है। मैं खुश गुमां कि सांस की तरह वो मेरे साथ है, मैं खुश गुमां कि सांस की तरह वो मेरे साथ है। मुझे यकीन कि उसके हाथ में भी मेरा हाथ है, मुझे यकीन कि उसके हाथ में भी मेरा हाथ है। मगर मुझे खबर न थी हवा खुदा सिफात है, खुदा भी दिल नवाज है हवा भी दिल नवाज है। तवज्जो फरमाएं, खुदा भी दिल नवाज है हवा भी दिल नवाज है, खुदा भी बेनियाज है हवा भी बेनियाज है, खुदा भी बेनियाज है हवा भी बेनियाज है। खुदा भी एक राज है हवा भी एक राज है, खुदा भी एक राज है हवा भी एक राज है। हवा का इंतज़ार क्या, हवा पे इख्तियार क्या।
1: हिमायत अली शायर को अपनी अदबी खिदमात की गौज़ सन 2002 में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। उनके कलाम के तर्जुमे दिगर जबानों में हो रहे हैं और इंतखाब का सिलसिला हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक में जारी है। बिलाखिर 16 जुलाई सन 2019 को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ। सिर्फ जिंदा रहने को जिंदगी नहीं कहते, सिर्फ जिंदा रहने को जिंदगी नहीं कहते। कुछ गमे मोहब्बत हो कुछ गमे जहां यारो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हिमायत अली शायर के इस शेर के साथ हमारा आज का गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम अपने अख्तिताम की जानिब रवा दवा है। उम्मीद है इस मुख्तसर से खैराज अकीदत को आपने पसंद फरमाया होगा। इन खैराज अकीदत का एक मकसद ये है कि हमारी नई नस्ल इन अदीबों से आशना हो। वैसे भी नई नस्ल की हौसला अफजाई हिमायत अली शायर का शेवा था। सामईन, अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।

कुबूलियत वाला दिन सईद अल अय्याम जुम्मे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। सामीन, आज दो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का पहला जुम्मा है। आप तमाम लोगों को ये मुबारक दिन कबूल हो।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नून कलम की और जो कुछ लिखने वाले लिखते हैं उसकी कसम कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो और बेशक तुम्हारे लिए बे इंतहा अजर है और यकीनन तुम अखलाक के आला मर्तबे पर हो। सो अनकरीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है।

तहकीक तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया और उनको भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। तो तुम झुटलाने वालों का कहा न मानना। ये लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नर्म हो जाएं।

और किसी ऐसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कस्में खाने वाला है, जलील है, शरारत से इशारे करने वाला, लगाई बुझाई करने वाला, माल देने में बड़ा बखील, हद से बढ़ा हुआ बदकार, सख्त खू और इसके अलावा बदजात है, इस सबब से कि माल और बेटे रखता है। जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने हैं, हम अनकरीब इसकी ऊंची नाक पर दाग लगाएंगे।

हमने इन लोगों की उसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की थी, जब उन्होंने कसमें खा खा कर कहा कि सुबह होते होते हम उसका मेवा तोड़ लेंगे और इंशाल्लाह ना कहा। सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई, तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती।

फिर जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो। सो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज वहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए, और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे गोया पैदावार पर कादिर हैं। फिर जब उन्होंने बाग को देखा तो वीरान, कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं, नहीं बल्कि हम बेनसीब हो गए।

एक जो उनमें समझदार था बोला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? दूसरे कहने लगे कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हम ही कसूरवार थे। फिर लगे एक दूसरे की तरफ रुख करके मलामत करने, कहने लगे, हाय शामत, हम ही हद से बढ़ गए थे। उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार इसके बदले में हमें इससे बेहतर बाग इनायत करे। हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। देखो, अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब सबसे बढ़कर होगा। काश ये लोग जानते होते।

परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहां नेमत के बाग हैं। क्या हम फरमाबरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? कैसी तजवीजें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें यह बात पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी? या तुमने हमसे कसमें ले रखी हैं जो कयामत के दिन तक चली जाएंगी कि जो कुछ तुम तय कर लोगे वो तुम्हारा होगा? इनसे पूछो कि इनमें से कौन इसका जिम्मा लेता है? क्या इस कौल में इनके कुछ शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ले आएं।

जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, फिर वो सजदा न कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि वो सही और सालिम थे।

सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो, हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी ना होगी, और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूं, मेरा दांव बड़ा मजबूत है।

0: और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फिसला देंगे और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। और लोगों, ये कुरान तमाम जहानों के लिए नसीहत है।
1: सदकल्लाहु लज़ीम। सामीन, सूरह अल-क़लम की चंद आयतें मुबारक में उर्दू तर्जुमा भी आप समाअत कर रहे थे। रब ज़ुल्जलाल हम सबको इन आयतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस साहब से मुखातिब हैं, 4:16:20 हो रहे हैं। सामीन, आज जमा मस्जिद पोटली में हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साक़ादी रज़वी दामत बरकतुल्लाह आलिया ने जिस उन्वान का इंतखाब किया, जिस टॉपिक पर बयान फरमाया, वो रहा अज़ाब क़ब्र से हिफाजत। समाप्त कीजिए।

कि कब्र का अजाब ये एक हकीकत है। मुख्तलिफ गुनाह होते हैं और फिर तरह तरह के कब्र के अजाब होते हैं। तो जहां ये मेंशन किया गया वहां अल्लाह पाक ने और अल्लाह के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये भी बताया और सिखाया कि कब्र के अजाब से नजात कैसे है। अजाब कब्र से आपने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी। मुहद्दिसीन ने अहादीस की किताबों में बाकायदा अजाब कब्र के अबवाब बांधे और फिर किताबुल अदईया में अजाब कब्र से हिफाजत और नजात की दुआओं के बाब बांधे। उन दुआओं में से एक दुआ ये है जो बहुत आसान है, सो इस दुआ को मेमोराइज करें और इस दुआ को पढ़ा करें। اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر والله I seek your protection from the punishment of the grave. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-nar. Wallah, I seek your protection from hellfire. Allah, main aap se azab qabr se pana maangta hoon aur aap se aag se pana maangta hoon, आग के अजाब से पना। इससे दो बातें मालूम हुई, एक तो ये है कि अजाब कब्र हक है, हकीकत है, रियालिटी है और कब्र का अजाब होता है। नंबर दो ये कि हमें और आप सबको चाहिए कि कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगे। आग के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगे।

राइट्स है, एक डिवाइन राइट्स और एक ह्यूमन राइट्स, हुकूक इंसान, दोनों के अदा न करने पर खबर का अजाब होता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह रसूल का हक भी अदा हो और उसके मखलूक में से, इंसानों में से जिन जिन का हक हम पर है, उनका हक और उनका राइट भी हम उनको दें, उनके राइट को भी फुलफिल करें और उनमें सफ़े अव्वल पर इंसानों में जिनका हक है, आम इंसानों में, तो वो माँ बाप, बहन भाई हैं, वो लोग हैं जिनसे हमारा ब्लड रिलेशनशिप। कभी ऐसा होता है कि इंसान नमाज भी पढ़ता है, नमाजी होता है, रोजे भी रखता है, रोजों का भी पाबंद होता है, लेकिन किसी को तकलीफ देने की वजह से, माँ बाप को या किसी और को सताने की वजह से कब्र का अजाब होता है। उसके अपने ख्याल में तो वो नमाजी है, रोजों का पाबंद है, लेकिन इस्लाम में फकत नमाज नहीं है, इस्लाम में सिर्फ रोजे नहीं है, इस्लाम एक मुकम्मल निजाम है, एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है। सैयदुना अब्दुल्लाह अल-मदीनी नव्वरल्लाहु मक़दहु के एक दोस्त थे, उनकी एक जमीन थी, उनके वो दोस्त अपने जमीन की तरफ जा रहे थे कि नमाज़े मगरिब का वक्त हो गया। बताते हैं फ़अदरकतनी सलातुल मगरिब, मगरिब का वक्त आ गया, तो वो कब्रिस्तान था उसकी एक जानिब गए और उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ी। सैयदुना अब्दुल्लाह मदीनी की उस दोस्त ने मगरिब की नमाज पढ़ी। नमाज मगरिब पढ़ने के बाद फिर वहां थोड़ा सा ठहर गए, इतने में उन्होंने एक कब्र से रोने की आवाज सुनी, कब्र से रोने की आवाज सुनी कि वो कब्र वाला रो रहा था और पुकार पुकार के ये कह रहा था, आ कुंत उसल्ली व कुंत असूम, आ मैं तो नमाज भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था। उसने करीब के जो लोग थे उनको बुलाया, उन लोगों ने भी उस कब्र से मैयत के रोने की आवाज सुनी। फिर ये अपनी जमीन की तरफ चले गए। रात खत्म हुई, कल का दिन आया, तो ये फिर अपनी जमीन की तरफ आए और जहां कल नमाज पढ़ी थी वहां फिर नमाज पढ़ने लगे। सैयदुना अब्दुल्लाह अल-मदीनी की ये दोस्त फरमाते हैं, फलम्मा सल्लैतुल मगरिब,
जब मैंने मगरिब की नमाज पढ़ ली, मगरिब की नमाज

फिर वहां थोड़ी देर बैठा रहा। जो आवाज मैंने कल सुनी थी कब्रिस्तान की उस कब्र से, वो आवाज आज फिर सुनी कि कब्र वाला पुकार रहा था, आ कुन तो उसल्ली व कुन तो असूस, हाय अफसोस, मैं तो नमाज भी पढ़ता था, मैं तो रोजे भी रखता था। उसने जब उसके रोने की आवाज सुनी और वापस घर आए तो फरमाते हैं, मरितु बिल हुम्मा शहरैन, मुझे फिर दो माह तक बुखार रहा, दो माह तक बुखार रहा। सो इससे मालूम हुआ कि कभी नमाज पढ़ने वाले पर, रोजा रखने वाले पर भी आजाब होता है उसके किसी गुनाह की वजह से, उसके किसी और गुनाह की वजह से। इसलिए नमाजों के साथ साथ गुनाहों से बचे, रोजों के साथ साथ गुनाहों से बचे, नेकियों के साथ साथ गुनाहों से बचे। अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों से बचे। माह सफर में बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुगालते हैं, सुई फहम है कि इसमें ये बला होती है, ये बला उतरती है, ये मुसीबत उतरती है, ये बीमारी होती है। और हकीकत ये है कि कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मिसकॉन्सेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, झूठी रिवायात जो किताबों में लिखी गई, मौजू अहादीस लिखी गई। मुझे आपको मैसेज ये देना कि जो चीज नहीं है उससे तो आप डर रहे हैं, लेकिन जो चीज एग्जिस्ट है, जो एक रियालिटी और हकीकत है, कब्र का अज़ाब, दोज़ख का अज़ाब, उसकी आपको परवाह नहीं। उसकी कोई तैयारी आ रही है, उसके लिए कोई वज़ाइफ़ आ रही है, उसके लिए कोई एहतमाम नहीं। लेकिन जो चीज है ही नहीं, उससे लोग इतने परेशान, इतने घबराए कि सफर में जरा सा भी कुछ हो जाए तो कहते हैं सफर का महीना है इसलिए ये मुसीबत आई, ये बीमारी हुई, ये हुआ। तो ये बीमारियां तो साल के 11 जो और महीने हैं उसमें भी होती हैं, जो तकदीर में लिखा होता है वो सब हो सकता है। तो खुदा के लिए वो चीज जो है ही नहीं, जिसकी कोई रियालिटी नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं, उससे डरने के बजाय उससे डरे जिसकी हकीकत जो है। अभी आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है, आपके पास टाइम है, नेकियों के जरिए, आमाले सालेहा के जरिए, अच्छाई के जरिए, गुनाहों से बाज आकर, गुनाहों से दूर रहकर आप कब्र के आजाब से पना मांगे और अपने आप को, अपनी नस्लों से अजाब कब्र से बचाएं, निकल आए अपने इस ख्वाब गफलत से, निकल आए तारीकी के इस माहौल से, निकल आए इस अंधेरी जहालत की रात से, हकीकत की तरफ आए, हकीकत की तरफ। और इस महीने में, वैसे हर महीने अल्लाह

से ये दुआ मांगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर हाज़ा शहर, वल्लाह आई सीक यू द गुड ऑफ दिस मंथ, ए अल्लाह मैं आपसे इस माह की भलाई व अऊज़ु बिका मिन सूई हाज़ा शहर, वल्लाह आई सीक योर प्रोटेक्शन फ्रॉम द ईवल ऑफ दिस मंथ, ए अल्लाह मैं आपसे इस माह के शर से पनाह। अगर आप हर नमाज बाद नहीं पढ़ सकते तो सुबह शाम तीन दफा पढ़ें, इंशाअल्लाह सुबह पढ़ेंगे दुआ कबूल हो गई तो शाम तक कुछ नहीं होगा, वो पूरा दिन भलाई गई, शाम को पढ़ा तो सुबह तक इंशाअल्लाह भलाई गई। बचाने वाला अल्लाह है, बोलिए कौन? अल्लाह। भलाई अता करने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के हबीब की बारगाह में आप जिनके वसीले से मुश्किलें टलती हैं, बलाएं टलती हैं, आफात और बलियात फिनिश होती हैं, ये फकत घबराने से कुछ नहीं होता, डरने से कुछ नहीं होता, मिसकॉन्सेप्शन से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, मुगालता सुइफहम से कुछ नहीं होता। इससे तो फिर आप और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। इसलिए नमाजों के साथ साथ गुनाहों से बचना, बल्कि नमाज जब शरीयत और सुन्नत के सांचे में ढल के पड़ी जाए तो नमाज इंसान को गुनाहों से बचाती है, बेहयाई से बचाती है। कुरान करीम फुरकान हमीद में ये तफसील से मौजूद, उसके मुतफासीर में मुफस्सिरीन ने बहुत डिटेल से इसको भी समझा। तो चलें और ना सही, इस महीने में तो कम से कम बलाओं के डर से, मुसीबतों के डर से नमाज पढ़ें। हो सकता है कि नमाज की इस पाबंदी से अल्लाह पाक इस माह की पाबंदी से आपको हमेशा नमाज का पाबंद बना दे। डरना अल्लाह से, सब कुछ अल्लाह जल्ल मजलहू के दस्ते कुदरत। आला हजरत ने फरमाया लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। इश्क मुस्तफवी का वो दाग जो इंसान के सीने में बनता, मोहब्बत मुस्तफवी का वो दाग जो इंसान के सीने में बनता है, यही दाग फिर खबर के लिए चराग। इसलिए आशिक की खबर तारीख होती है, आशिक की खबर में अंधेरे होते, आशिक की खबर में उजाले उजाले होते, नूर ही नहीं होता। जिस तरह इश्क मुस्तफा जिंदगी को रोशन करता है, इस मां की दुनिया को रोशन करता है, इसी तरह इश्क मुस्तफा कबर को भी रोशन करता है, ये हशर को भी रोशन करता है, यही जन्नत की रोशनी है, यही मोमिन के जाहिर की रोशनी है, यही मोमिन की बातिन की रोशनी है। तो बजाय प्रोपेगंडों के, बजाय वावेला, बजाय इसके कि इस महीने में ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाता है, ये हो जाता है, चुनी हो जाता है, चुना हो जाता है, कुछ नहीं होता। वो महीना जो रबीउल अव्वल से टच है, तो रबीउल अव्वल का नूर उसमें आ रहा होता है, जो मुहर्रम से टच हो, दरमियान में आ,

तो कैसे हो सकता है कि इस महीने में ये भी हो, वो भी हो, फिलहाल भी हो, चुनी भी हो, चुना भी हो। उसे तो दोनों जानिब से फैज मिला, इसलिए भी आम महीनों की तरह महीना है मुबारक, बासादत महीना। असल आपका अमल है, अगर आप जुम्मे को भी गुना करें तो जुम्मे का दिन है ना, और आप गुना कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप संडे को भी गुनाह से बचे, है संडे का दिन, वो दिन आपके लिए अच्छा है। जिस दिन आपसे गुनाह ना हो वो दिन आपके लिए अच्छा है, जिस रात गुनाह ना हो वो रात अच्छी है, जिस दिन गुनाह हो जाए, जिस रात में गुनाह हो जाए, न वो दिन आपके लिए अच्छा है न रात अच्छा। दिन और रात फी नफ्स ही अच्छे हैं। इंसान को अपनी अच्छाई तलाश करनी है दिनों में तो नेकियों में लग जाए, रातों में अच्छाई तलाश करनी है तो नेकियों में लग जाए। दिनों की बुराई से बचना है तो गुनाहों से बचे, रातों की बुराई से बचना है तो रातों के गुनाहों से बचे, गुनाह के साजाब से बचे, ताकि अल्लाह पाक आपको अजाब कबर से बचाए, अजाब दोजख से बचाए। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के तुफैल हमें अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े और वसीले से उन नेकियों की तौफीक दे जो नेकियां अजाब कब्र से, अजाब जहन्नम से बचाने वाली हैं, उन गुनाहों से बचने की तौफीक दे जो अजाब कब्र, अजाब दोजख का सबब है और उसका बायस है। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, वमा अलैना इल्ला

जो कल्ब को गर्मा दे, जो रूह को तड़पा दे के ज़रिए अल्लामा इक़बाल इस जज्बे की शिद्दत को बयान करते हैं जो इंसान को हक़ व सदाक़त के रास्ते पर साबित कदम रखता है। ऐसा जज्बा इंसान को नमाज, इबादत, ज़िक्र इलाही, ज़िक्र रसूल, ख़िदमत खल्क और दीन की सरबुलंदी की तरफ मायल करता है। अल्लामा इक़बाल चाहते हैं कि मुसलमान का दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु तआला वसल्लम से लबरेज़ हो, इस कदर मुनव्वर हो और उसके उसकी ज़िंदगी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम का आईना बन जाए और उसके अमाल में अखलास, तकवा, शुजात और क़ुरबानी का जज्बा पैदा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये जज्बा अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सामीन, इसी के साथ ही आज की ये नशिश्त, आज की ये नशरियात इख्तिताम को पहुँच रही हैं। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनवर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: गीत और गजल रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर।

इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है। गीत और गजल कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं हूँ रत्ना, आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। आशा करते हैं कि आज की ये हसीन शाम आपको पसंद आएगी। चंद गीतों और गजलों के साथ हमने सजाई है आज की ये शाम। तो चलिए इसी के साथ कुछ अल्फाज जोड़ते हैं जो सीधे दिल से निकलते हैं। तुम जो पूछो अहमियत मुझसे, तुम जो पूछो अहमियत मुझसे, एक तुमसे बात ना करने से मेरी पूरी दुनिया बस उदास हो जाती है।

बिल्कुल आज बादल खुल के बरस रहा है, मानो किसी की याद दिला रहा है। दिल के जज्बात बस यूं ही पिघलते जा रहे हैं। दोस्तों, प्यार वो नहीं जिसमें जीत या हार हो, असली प्यार तो वो है जिसमें मिलने की उम्मीद भी ना हो, फिर भी उनका इंतजार हो। और इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुनीता जी, जो घोंघोब से गीतों को, गज़लों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। उनकी सभी बहनें, विमला है साथ है, अमृता और वीना जी, और सरिता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं काटोबोन से।

कभी कभी बात मोहब्बत की नहीं आदत की होती है, क्योंकि आदत मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा हो जाती है। चलिए इसी के साथ एक बहुत ही लाजवाब सा ये गाना, ये गीत है फिल्म बारिश से लिया गया, और लता जी और चितलकर की बहुत ही प्यारी सी मधोश सी आवाज के साथ गीत और गजल के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं।

कुछ तन्हाइयाँ, कुछ खामोशियाँ जिंदगी भर के लिए होती हैं। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ना गुस्से में ना किसी शिकायत के साथ। बस इतना समझ गया हूँ कि हर कहानी का अंजाम साथ नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की थी तुम तक पहुँचने की, पर शायद कुछ रास्ते सिर्फ चलने के लिए होते हैं, मंजिल बनने के लिए नहीं। इसलिए आज तुम्हें मैं आज़ाद करता हूँ अपनी उम्मीदों से, और ख़ुद को आज़ाद करता हूँ तुम्हारे इंतज़ार से। अगर कभी याद आऊँ तो बुरा मत सोचना, बस इतना याद रखना कि कोई था जो तुम्हें दिल से चाहता था।

सुखविंदर सिंह, और ये ख्याल क्यों आता है दिल में? मेरी ख्वाहिश, मेरे जज्बात है वो, अक्सर ये ख्याल क्यों आता है दिल में? मेरी पहली खोज और आखिरी तलाश।

ऊंच रह के भी तुझको पुकारा करेंगे हम। दोनों तरफ की खामोशी ने बात को मुकम्मल कर दिया। दिल से निकले हर जज्बात इस गीत और गजल के कार्यक्रम के माध्यम से आपके दिल को छुआ होगा, यही आशा रखते हैं। और आज की ये हसीन शाम को बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं इस आखिरी गजल के साथ, जगजीत सिंह की प्यारी सी आवाज और मिर्जा गालिब की ये लाजवाब गजल। और इसी के साथ बस आज की ये शाम यूं ही खूबसूरत बनी रहे, यही दिल से दुआ करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं विराम देते हैं। आपने दिल से साथ दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलाएंगे एक और ऐसी बेहतरीन कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार और आदाब, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता बंद रहा है। बागातर में मुख्य ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं। इस परियोजना की लागत 300 मिलियन डॉलर यानी 14 बिलियन रुपए की है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका की डेप्यूटी सब सेक्रेटरी सारा ट्राउटमैन ने आज सुबह स्थल का दौरा किया। मॉरिशस सातवां अफ्रीकी देश बन गया है जो ऑटोमी समझौते का हिस्सा है। आज दोपहर बाद एबेन में अफ्रीकन अफेयर्स की अमेरिकी डेप्यूटी सब सचिव सारा ट्राउटमैन की मौजूदगी में मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल में दस्तखत किए गए ऑटोमी समझौते में राष्ट्रों के दरमियान अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए नियम मौजूद। मॉरिशस के लिए इस हफ्ते प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट से देश के सामने खड़ी चुनौतियों पर बहस शुरू। इनमें सार्वजनिक कर्ज, पेंशन सुधार और वृद्धि की संभावनाएं शामिल। और विदेश में एंडी बर्नम ग्रेट ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। नमस्कार रादाब, समाचार विस्तार से सुनिए। मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। बागातर में मुख्य ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं। इस परियोजना की कीमत 300 मिलियन डॉलर यानी 14 बिलियन रुपए है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका की डेप्यूटी सब सेक्रेटरी सारा ट्राउटमैन ने आज सुबह स्थल का दौरा किया ताकि कार्यों के विकास का जायजा लिया जा सके। उन्होंने मॉरिशस और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की दोबारा पुष्टि की है। क्लोदा जेफवा गादीबादू, आस्था गोबिंचतामन।
2: एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ मॉरिशस एक नए सहयोग नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। देश का 2.3 वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। अब मॉरिशस अफ्रीका के उन 31 देशों में शामिल हैं जो पहले से ही अमेरिका के साथ इस व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। ये समझौता संयुक्त गतिविधियों के दौरान लॉजिस्टिक सहायता, सामान और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए कानूनी आधार देता है। इसका उपयोग सैन्य अभ्यासों, प्राकृतिक आपदा के बाद राहत कार्यों और मानवीय अभियानों में किया जा सकेगा। जब हम साझा अभ्यास चलाते हैं, विशेषकर आपदा प्रबंधन के लिए, तो इस दिशा में ये समझौता दोनों देशों के बीच सेवाओं का समन्वय करेगा, चाहे वो ईंधन आपूर्ति हो, पानी सप्लाई हो या स्पेयर पार्ट्स हो। अमेरिका के साथ ये समझौता सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा, खासकर पश्चिमी हिंद महासागर और आसपास के सेक्टरों में। इसका इस्तेमाल कटलास एक्सप्रेस जैसे सैन्य अभ्यासों में किया जा सकेगा। किसी वास्तविक आपात स्थिति में भी इसे लागू किया जा सकेगा जहां तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। ये समझौता सरकारी खरीद की सामान्य प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम करेगा। इससे दोनों देश जरूरत पड़ने पर अधिक तेजी और बेहतर तरीके से मिलकर काम कर सकेंगे।
1: मॉरिशस के लिए इस हफ्ते प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट से देश के सामने खड़ी कई चुनौतियों पर बहस शुरू हो गई है। इनमें सार्वजनिक कर्ज, पेंशन सुधार और वृद्धि की संभावनाएं शामिल हैं। आईएमएफ की सिफारिशों को बेहतर तरीके से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पुराने उच्चाधिकारी डॉक्टर विमल ठाकुर ने स्पष्टीकरण दिए। सार्वजनिक वित्त, पेंशन सुधार और मौसम परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर महारत हासिल इस विशेषज्ञ ने आज हमारे सहयोगी शहजाद जुमन से बात की।
3: आईएमएफ ने मॉरिशस की इकोनॉमी पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और इस पर काफी चर्चा हो रही है जब से ये रिपोर्ट आम की गई है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त इन टिप्पणियों पर गौर किया जाता है?
4: Mission voir le gouvernement, c'est secteur privé, c'est ben aussi NGOs log sangé, aussi l'université qui lecturer sangé. Sab ko ise milanja taki ulog ke jab rapport wa likian sata. Sab information rahi, sab ko ke point de vue sab comme ça dalé unme.
3: IMF ne Mauritius mein jab fiscal consolidation ka acha swagat kiya hai,

0: दूसरी तरफ कई सुधारों की सिफारिश भी की है, जिनमें पेंशन सुधार भी शामिल है, और इस पर अभी ज्यादा टिप्पणी हो रही है।
1: दुगो चीज यहाँ रहल कि फिस्कल कंसोलिडेशन डेट और ये हमनी के देश के डेट ढेर उगमते होगा रहल और ये अभी जो जेफो होल बा हाउ डेटवा के आपे से होता मोते होई के हमनी के ये भी देखे के चाहेला कि हमनी के देश में बुढ़ापा उगमते हुआ था हमनी के हाई के प्रिपारे करे के चाहेला और प्रिपारे कैसे करब सा हमनी के चाहेला कि ला सांते के सिस्टम हमनी के बुढ़ान लोग के सा उ लोग के स्वयं ले कैसे के चाहेला हमनी के ये भी चाहेला कि हमनी के बड़ा लोग जो हवन सा उ लोग के सकब सा सोसाइटी में इकोनॉमी में इंक्लूड करे जब में उ लोग भी पार्टिसिपे हो जन सा जब बूढ़ा हुआ था सा पेंशन हाई में एगो एक पार्टी हा हाई सॉल्यूशन वाके हाई जो रिफॉर्म करता अभी हाई रिफॉर्म वा असुरे करी कि सब सकब सा पेंशन वा दे के आने वाले सालों में मॉरिस लाफ्रिक से डिफरेंट हा हमनी के पॉपुलेशन वेई हुआ था लाफ्रिक के पॉपुलेशन अभी जनबा मैं जब देख बा जा एगो पेई जब जैसे बोला जापान जैसे बुल्गारी बा हाउ देश वन में भी वेईसमा बहुत जल्दी से एक्सेलेरे हुआ था पॉपुलेशन भी रिड्यूस हुआ था और उन देशों में भी रिफॉर्म करत वन सा पेंशन के जमे हाउ सिस्टम वा सकी पेये करे आने वाले सालों में
2: मुशरिस टेलीकॉम की रिब्रांडिंग की जा रही है। आज ऑल माइटी समिट का दूसरा दिन रहा। मुशरिस टेलीकॉम की सीईओ विमल गंगादी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन के आधार पर एक नई रणनीति की बुनियाद का ऐलान किया। हुआवे, पालो आल्टो नेटवर्क्स और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी नवीनताएं पेश की और भविष्य की एआई पर अपना विजन भी आम किया। दासा पाला सोमी आस्था गोबिंद तमन।
3: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन का विकास बिना कठिन आईटी मूल ढांचे के करना, यही आज आयोजित एआई शिखर सम्मेलन का प्रमुख आकर्षण रहा। अमेज़न वेब सर्विसेज और अमेज़न बेडरॉक ने इसका प्रदर्शन किया। इससे डेवलपर्स को आसानी से एआई तक प्रवेश मिलेगा। हुआवे ने सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजूदा और संभावित उपयोगों को प्रस्तुत किया।
4: All the use cases which we have presented.
3: सभी प्रस्तुतियां अमल में लाई जा सकती हैं। ये मात्र कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि समाधान है। मूल ढांचा से भाषा तक हर क्षेत्र में उचित समाधान प्रस्तावित किए जा सकते हैं। नेटवर्क सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि एआई के क्षेत्र में तेजी से हो रहे नवाचार के साथ साथ मजबूत सुरक्षा उपाय भी उतने ही आवश्यक हैं। हमें संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि 2-3 सालों में एआई हर जगह होगा, हमारे दैनिक जीवन में और कंपनियों में भी। इससे हम बच नहीं सकते, बेहतर है इसे अपना लें लेकिन सुरक्षित तरीके से। मॉरिशस की वे कंपनियां और ठेकेदार जो पहले से ही एआई का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए ये सम्मेलन अनुभव साझा करने, नई तकनीकों को समझने और डिजिटल परिवर्तन को गति देने का महत्वपूर्ण अवसर रहा। हम कई पहल के साथ आगे आ रहे हैं, होटल्स में रिजर्वेशन, ग्राहकों को पर्सनलाइज सेवाएं देने के लिए आदि। यदि हम एआई के इस सफर में साथ नहीं चले तो बहुत पीछे रह जाएंगे। 20 साल पहले जिस प्रकार मॉरिशस में साइबर सिटी विकसित किया गया, उसी प्रकार अब ये तीसरी लहर समझी जा सकती है। इस विषय पर गौर करना जरूरी है। अमेरिका और चीन अपने खुद के एआई विकसित कर रहे हैं और हमारे लिए जरूरी है कि हम स्थानीय एआई को बढ़ावा दें जिसमें सभी मॉरिशन प्रवेश कर पाएंगे। तकनीकी प्रदर्शनों से परे इस समिट का उद्देश्य मॉरिशस में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना, विशेषज्ञों के बीच सहयोग मजबूत करना और भविष्य के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल विकसित करने की दिशा में एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है।
2: मॉरिशस 7वां अफ्रीकी देश बन गया है जो ऑटोमी समझौते का हिस्सा है। आज दोपहर बाद बैन में अफ्रीकन अफेयर्स की अमेरिकी डेप्यूटी सब सचिव सारा ट्राउटमैन की मौजूदगी में मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल में दस्तखत किए गए ऑटोमी समझौते में राष्ट्रों के दरमियान अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए नियम है। इसका हिस्सा बनकर मॉरिशस

0: विकसित अंतरिक्ष और सैटेलाइट संबंधी टेक्नोलॉजियों में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से लंबी अवधि के लिए जुड़ गया है तथा इन संसाधनों से देश का आर्थिक विकास होगा। और आपको बता रहे थे कि मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता एक हकीकत बन रहा है और इस परियोजना के लिए 14 बिलियन रुपए निवेश किए गए हैं।
1: दौरे की शुरुआत परियोजना की जानकारी से हुई। निर्माण स्थल के जिम्मेदार और युवा मॉरिशन इंजीनियरों ने नए दूतावास की योजना के बारे में बताया। इस दौरान अब तक पूरे हुए काम, आगे के निर्माण चरण और इमारत की विशेषताओं की जानकारी दी गई। ये इमारत सुरक्षा, टिकाऊ निर्माण और पर्यावरण संबंधी कड़े मानकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है।
2: La nouvelle ambassade américaine nous peut construire lui pour qu'il y dure pendant les prochaines 100 ans qui peut venir. Donc en termes de matériaux qui peut mettre.
1: नई इमारत का निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है ताकि उसका ढांचा 100 सालों तक मजबूत रहे। निर्माण सामग्री, फिनिशिंग सभी कुछ उच्च किस्म की है और टिकाऊ भी।
3: Nous avons une exposition internationale avec plusieurs employés qui sont issus de plusieurs pays. Donc c'est vraiment un échange de connaissances.
1: अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के साथ हमने अनुभव साझा किया और नई विशेषज्ञता हासिल की। इमारत की छत पर सोलर पैनल्स बिठाए गए हैं, इससे बिजली की बचत होगी। आधुनिक जनरेटर भी है, लीकेज को रोकने के लिए मजबूत ढांचे भी हैं। ये इमारत अन्य इमारतों से अलग है। अब तक परियोजना का 62% काम पूरा हो चुका है। निर्माण स्थल पर 20 देशों के करीब 550 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मुख्य ढांचे का निर्माण पूरा हो गया है। अब काम अंदरूनी निर्माण और तकनीकी सुविधाएं लगाने के चरण में पहुंच गया है। ये नया दूतावास सिर्फ एक इमारत नहीं, ये मॉरिशस और अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों का भी प्रतीक है। दोनों देश पहले से कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। सारा ट्रॉटमन ने बताया, मेरे दौरे का मकसद है मॉरिशस और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ाना। ये यात्रा इस दिशा में सफल हुई है। मॉरिशस की कंपनियां अमेरिकी साझेदारी के लिए तैयार हैं।
4: Ce bâtiment-là, le projet qui peut réaliser par l'Amérique, cette ambassade, qui pour un an une vision de plus de 100 ans. Ça, il démontre que nos relations avec l'Amérique, les stables et les sustainable. Donc, un symbole de confiance.
1: गणराज्य के राष्ट्रपति धरम गोकुल ने बताया, अमेरिकी दूतावास के इस नए भवन को 100 वर्ष के विजन के साथ खड़ा किया जा रहा है। इस पहल से मॉरिशस और अमेरिका के बीच मौजूद मजबूत और स्थिर संबंध झलकते हैं। ये इमारत विश्वास का प्रतीक है। परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर एक अमेरिकी है, उन्होंने इस बात की प्रशंसा की है कि हमारे युवा इंजीनियर बहुत काबिल है। इस दूतावास के जनवरी 2028 में खुलने की उम्मीद है। इसके होने से मॉरिशस और वॉशिंगटन के बीच कूटनीतिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी, साथ ही दोनों देशों की साझेदारी भी और प्रगाढ़ होगी।
0: सन 2016 से हेमराज मनोहर ने कम से कम 120 मिलियन रुपए हड़प लिए। जून की शुरुआत में 64 वर्षीय इस पुरुष को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने करीब 40 लोगों को अपनी जाल में फंसाया। ज्यादातर बुजुर्ग विधवाएं रही हैं, जिन्होंने उन्हें पैसे की बड़ी बड़ी रकम दी। हेमराज मनोहर और उसके तीन साथियों की गिरफ्तारी के 1.5 महीने बाद फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने 18 शिकार लोगों के बयान दिए हैं। महाजीवा रिजॉर्ट्स के सीईओ संजीव रामदानी अपने होटल के कारोबार और गतिविधियों के लिए विदेश जाना चाहते हैं। वो दुबई, इटली, इंग्लैंड और मोरक्को जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एतराज जता रहा है। कल पोटलुई अदालत में संजीव रामदानी ने जमानत पर अपनी रिहाई की शर्तों में बदलाव की मांग की है, लेकिन इस मामले में अगले 25 अगस्त को मैजिस्ट्रेट दोगियाऊ अपना फैसला सुनाएंगे। एनवायरनमेंट एंड लैंड यूज अपील ट्राइब्यूनल के सामने गैर सरकारी संगठन एकोस्ट द्वारा लुबुशों डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्मार्ट सिटी परियोजना के परमिट के खिलाफ मुकदमा जारी है। 15 जुलाई को स्थलों का दौरा किया गया ताकि इस परियोजना की असल चुनौतियां जाना जा सके। इस 17 जुलाई को लुबुशों ग्राम परिषद के अध्यक्ष कैदरिस वालाइडू की सुनवाई रही।

0: आवासीय संकट न सिर्फ विकासशील देशों के लिए एक मसला है, बल्कि ये 21वीं सदी में सबसे बड़ी इंसानी हकीकतों में से एक है। भूमि और आवास मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एक उच्च सतह वाली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे विकासशील टापू देशों के लिए नया अर्बन एजेंडा न सिर्फ एक दस्तावेज है बल्कि जीवन है। मंत्री शकील मोहम्मद ने याद दिलाया कि मॉरिशस ने अपने साहिली इलाकों की हिफाजत करने के लिए एक राष्ट्रीय विकास नीति अपनाई ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो। उन्होंने दोबारा पुष्टि की कि इस सरकार की प्राथमिकता आवास है। और अब विदेश की खबरें। लगातार छठी रात के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए। अब नए हुर्मुज पर नियंत्रण पाने के लिए जंग की दोबारा शुरुआत हुई है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों ने ईरान के सैन्य ताकतों को कमजोर कर लिया है। ग्रेट ब्रिटेन में एंडी बर्नाम लेबर पार्टी के नए सरपरस्त बने हैं। सोमवार को वो प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने लगेंगे। एंडी बर्नाम ने कहा कि वो लोगों को नई उम्मीद देंगे और नई राजनीति की बुनियाद भी डालेंगे। पूरी भारत में जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। वहां जोरदार बारिश हो रही है जिससे दो लोग जान से गए हैं और 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। खराब मौसम के बावजूद श्री जगन्नाथ, श्री बालाभद्र और देवी सुभद्रा के रथ गुंडिचा मंदिर तक ले जाए जा रहे हैं। युगांडा के पूर्व में एक शैक्षिक यात्रा के दौरान एक बस दुर्घटना हुई। कम से कम 20 छात्रों की मौत हुई, दूसरे दर्जन बच्चे जख्मी हुए हैं। उधर वेनेजुएला में मरने वालों की संख्या 4,800 के पार है और 17,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी पुनर्निर्माण कार्य शुरू किए जा चुके हैं, राहत कार्य भी किए जा रहे हैं।
1: वेनेजुएला के तटीय राज्य में भीषण भूकंप के बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है, लेकिन हालात अब भी मुश्किल बने हुए हैं। इस भूकंप में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तारो लियाल पेशे से मैकेनिक है। उनका परिवार तो बच गया, लेकिन उन्होंने अपने कई दोस्तों को खो दिया। अब वे बचे हुए सामान की मदद से अपना घर फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जैसे परिवारों के सामने सिर्फ घर दोबारा बनाने का सवाल नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे घर वापस रहने के लिए सुरक्षित है। ये व्यक्ति सिविल इंजीनियर हैं जो आपात अभियान में शामिल हैं। इस अभियान में वेनेजुएला का आवास मंत्रालय, यूनिवर्सिटियों के विशेषज्ञ और तकनीकी टीमें मिलकर क्षतिग्रस्त इमारतों का निरीक्षण कर रही है। उनका उद्देश्य ये तय करना है कि लोग अपने घरों में सुरक्षित लौट सकते हैं या नहीं। भूकंप में 60,000 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि लगभग 20,000 लोग बेघर हो गए हैं। हम हर इमारत का निरीक्षण करते हैं और उसे रंगों के आधार पर श्रेणी में रखते हैं। ढांचे की जांच के बाद उसकी स्थिति तय की जाती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। इंजीनियरों का कहना है कि अब अगले चरण में भूवैज्ञानिक अध्ययन किए जाएंगे। इसके बाद तय किया जाएगा कि इन तटीय इलाकों में किस तरह की इमारतें बनाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि सिर्फ जल्दी निर्माण करना ही काफी नहीं है, बल्कि सुरक्षित निर्माण करना सबसे जरूरी है।
0: और बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत, पश्चिम से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात के दौरान बादल घेराएंगे पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो में खास तौर पर बारिश होगी और बाद में रात के दौरान ही मौसम में सुधार आएगा। कल सुबह मौसम सुहाना होगा, दोपहर बाद पश्चिम और दक्षिण में बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, खासतौर पर दक्षिण और ऊंचे इलाकों में, और दूसरे इलाकों में घने बादल होंगे। हवा पश्चिम की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा, 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान, सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 24 से 26, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम को 5:47 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें. अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें समाचार और फ्रेंच में भाग और हमारे तकनीकी साथियों शिव नागिया और लुडोविक जोंगिया की मदद मिली है.

0: के ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब, एमबीसी के साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में शोक समाचार सुनिए।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल शनिवार 18 जुलाई 2026 सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हाईलैंड्स में और आसपास के इलाकों में, बासा रोड, उडाली रोड और आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कल शनिवार 18 जुलाई सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक हाईलैंड्स में और रॉयल रोड हाईलैंड्स में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कल शनिवार 18 जुलाई सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक कैथबोन में और आसपास के इलाकों में एवेन्यू बैटो, एवेन्यू एंटेल्म और एवेन्यू ओलिये, एवेन्यू रोटिन, एवेन्यू रोटिन और आसपास के इलाकों में भी शनिवार 18 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे दिन के 3 बजे तक मुका और आसपास के इलाकों में शॉल टेलफेयर, जॉन्टी एस्टेट, सीडब्ल्यू मिनीसी, सीडब्ल्यूए कॉन ऑगस्ट और अविप्रो मिनीसी में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और

रविवार 19 जुलाई 2024 सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मौसलमा दुमा एमिताज में मौसलमा फारिडन बेलरीव रोड अनवर ए कुबा रोड तेरूज रोड और एमिताज रोड और सैंक अंपा रोड में भी

आई जाएगी और रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक प्लेन व्यर्थ में और आसपास के इलाकों में कनाल बटर्स्ट कारिकाल टर्टल और आई डोरे में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और रविवार 19 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 2:30 बजे तक कनाल डायोट और आसपास के इलाकों में रुई अल्फोंस रोलांडो डॉक्टर हेनरी पेरो और बैटरी में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक हाईलैंड्स में और आसपास के इलाकों में मौसलमा उम्निकेन में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: मॉरिशस में आर्य समाज के 123वां वर्षगांठ के संदर्भ में आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में पॉम्पलमुस आर्य जिला परिषद, पॉम्पलमुस आर्य समाज तथा महिला आर्य समाज के सहयोग से शनिवार 18 जुलाई को शाम 2 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है मॉसो रोड पॉम्पलमुस के आर्य समाज मंदिर में। लाफ्लोगा के श्री सूर्य मंदिर पुरुषोत्थमा क्षेत्र द्वारा रात यात्रा निकाली जाएगी। स्थान है शनिवार 18 जुलाई सुबह 9 बजे शाम के 7:30 बजे श्री महेश्वरनाथ मंदिर थियोले, श्री वेद माता गायत्री मंदिर देपिने, श्री काशी क्षेत्र मंदिर मौदुस्थालिया, श्री गायनाथ मंदिर बोनाकई

அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே.

அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சினே வந்ததே நண்பனே நண்பனே நண்பனே.

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamu alaikum.
3: Kimchi Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर
9: बजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप? दिन भर का कार्य करके थक गए होंगे। चलिए खूब अच्छा सा भोजन बनाइए और खा लीजिए, लेकिन भोजन बनाते बनाते प्रभु का नाम ध्यान रखिएगा। कभी कभी भोजन बनाते हुए हम एक दूसरे को कोसते हैं। दिन भर में किसी ने बुरा कहा, अच्छा कहा, बस उसी को सोचते रहते हैं। थोड़ा बदलिए अपने आप को, सोचिए नहीं, खाना भी पवित्र होना चाहिए। तो प्रभु का नाम यदि मन में चलता रहे तो देखिए खाने वाले भी कितने खुश होंगे। तो आइए सुनते हैं इस

श्रोताओं, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, यदि प्रभु का नाम मन में चलता रहे, नाम स्मरण भक्ति की पहली सीढ़ी है। जब नाम स्मरण करते हैं तब जीवन में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। देखिए, पूरी प्रकृति में हर पल परिवर्तन आता है। सुबह धूप है तो थोड़ी देर बाद बादल होते हैं, बादल है तो बारिश होती है, मौसम बदलता है, मन कभी खुश है तो कभी दुखी है। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, देखिए कितनी तेजी से बढ़ता है, अर्थात प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो हम क्यों नहीं बदलना चाहते, उस प्रभु के साथ जुड़े, अपने जीवन को अच्छा जी सकें। तो आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

श्रोताओं, नाम जप करते करते ईश्वर की कितनी लीलाएं हमको याद आती हैं, और वे लीलाएं हमें कभी हंसी दिलाती हैं, तो कभी भक्ति भाव बढ़ाती हैं, तो कभी श्रद्धा पैदा करती हैं। बस मन भक्ति में डूबने लगता है। यही तो है भजले प्रभु का नाम। आइए सुनते हैं ये भजन।

0: और अंत में श्रोताओं, प्रभु के साथ जुड़ गए तो और क्या चाहिए। यह मत सोचिए कि प्रभु का नाम भजन किया तो अब तो दुखी नहीं होगा। अरे जीवन है, सुख दुख तो आते ही हैं। क्या आप समुद्र की लहरों को गिन सकते हैं? नहीं ना, हर पल एक नई लहर बनती है। ठीक ऐसे जीवन में हर पल कुछ ना कुछ होता रहता है। अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। और शक्ति कौन देता है? प्रभु का नाम। तो आइए उस प्रभु का ये भजन सुनते हैं और उसी के साथ अलका धनपत और शिव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: इस भजन में राम भक्त गिद्धराज जटायु का वर्णन किया गया है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मीडियम वेव 819 किलो हर्ट्ज पर ये रेडियो मॉरिशस है। परवीज आपसे मुखातिब है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी रहमत शफाए मशर मालिक दो जहां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप तमाम सामीन खैर आफियत से हैं। जहां से भी आप हमारे साथ निभा रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। तो आइए मज़ीद सामीन, उर्दू नशरियात बनाम महफिल शब का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत हमद कलाम के साथ, जो हमारे दिलों को रूहानियत और सुकून से भर दे।
3: उस रब

फलक की वसअतें उसके हुक्म से कायम, ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा उसका इशारा, ना लफ्ज़ काफ़ी ना मानी में वो समाया, बस सचदा ही है जिसने राज सवारा। शामिल मोहतरम इस्तेकामत व चिराग हैं जो अंधेरों में भी बुझता नहीं, ईमान की मजबूती और बंदाए मोमिन का अजीम वस्फ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर साबित कदम रहे, उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। सामईन, ईमान का दावा करना आसान है लेकिन ईमान साबित कदम रहना, हर हाल में अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखना, ख्वा हालात मुवाफिक हों या मुखालिफ, यही इस्तिकामत है।

शामिल मोहतरम, ज़रा सोचिए फ़रिश्तों की बशारत किन लोगों के लिए है, ना दौलतमंदों के लिए मखसूस, ना ताकतवरों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए जो ईमान पर इस्तकामत इख्तियार करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही है। हज़रत सूफियान बिन अब्दुल्ला सकाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इस्लाम की ऐसी बात बताइए कि फिर मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत न रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कह दो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर साबित कदम रहो। वज़ीज़ामीन, कितना मुख्तसर मगर कितना जामा फरमान, पूरे दीन का खुलासा दो जुमलों में बयान फरमा दिया।

शामिल मोहतरम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सदियों तक दावत दी पर हिम्मत न हारी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए मगर तौहीद ना छोड़ी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने हक कहा, खौफ ना किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सख्त तरीन मुखालिफत बर्दाश्त की, लेकिन दावत हक से एक कदम पीछे ना हटे। और करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दिखा दिया कि अगर हक की खातिर कुर्बानी देनी पड़े तो इस्तेकामत का दामन नहीं छोड़ा जाता है। वज़ीज़ामीन, ज़िंदगी में हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुज़र रहा है और ऐसे वक्त में शैतान मायूस करता है, लेकिन ईमान कहता है अल्लाह पर भरोसा रखो, इस्तेकामत इख्तियार करो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन। अंजू की तकनीकी मदद रही है, शुक्रगुजार हैं हम। परवीज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: भोजपुरी तड़का।
1: नमस्ते के सब श्रोता लोग के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तोहार स्वागत करत हैं। जहाँ हम है सुरेखा तोहार साथ देवत हैं और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तोहर खातिर लेकर आल हैं। और जहाँ हो जहाँ हमके कार्यक्रम में तोह लोगों भाग लिया जा तो लोगों बोला जा कौन कौन गीत अभी सुनवाए जाए कार्यक्रम में। तोहर फरमाइश के गीत है पाँच दो पाँच एक सात शून्य शून्य पाँच। ये नंबर है मिसाज भेजे के और 402-808-5 ये नंबर है कॉल करे के। तो जरूर हमें के कार्यक्रम में कोनो प्रकार से भाग लेवे खोज बजा लिया जा मिसाज भेजा जा फिर या फिर कॉल करिया जा। हमने के कार्यक्रम में तो हर स्वागत करते हैं जा। अभी हमने गाना सुना था सुनब जा बिल बिल दे मौसी भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज के कलाकार लोग के गावल गाना है। और ये गीत हमने से मंगले हवन विश्वानी दुमन जी वाकवा से ये गीत मंगले हवन अपन बहिन इंदिरा शारदा खातिर अपन सहेली नीला और प्रतिभा खातिर शोभा जी खातिर और गीता गजाधर जी खातिर।

मौसी और मामी बेला थवन दान नानी तो दल पिठा पकावा थवन चला हमने सबके मिलजुल के खाई चली जा। चला आगे बढ़ते बढ़ते मतलब दल पिठा खाईते खाईते आगे बढ़ ही जा और ये रोशन सदा सिंह जी के गावल वंदना हमार सुना सुनी जा। ये गाना हमने से मंगले हवन बहुत आल बेस से अनीता जी करुणा के संगे अमृता के संगे और पूरा परिवार के संगे। तो चला सुनी जा हमने वंदना हमार सोना।

वंदना के बाद चला सुनी जामनी सुग्रीम किस्तु जी के गावल गाना और रोशन सरा सिंह जी के गावल गाना के बाद जब सुग्रीम किस्तु जी के गावल गाना सुनब जा तो हमने के ध्यान में आए कि हमने के चिंता ना जाए करे के चिंता से तो गड़बड़वे हो जाला, बस चिंता करला के बदले हमने के समस्या के समाधान ढूंढे में अपन ऊर्जा लगाए के चाहेला। चला ये गाना हम सुनब जा आत्माराम जी के पसंद पर बिलिया से आत्माराम जी अपन बहन लोग खातिर ये गाना मंगले हुवन, बहन सुदेवी, बहन ललिता, बहन छोटी और बहन प्रभावती जी खातिर और बेलिया के पूरा इस परिवार खातिर।

पैंक पैंक उछलवा लेते हो ये गाना हमने भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज के कलाकार लोग के गावल सुना थे जा और ये गाना हमने से सूरज शर्मा सजादा जी मंगले हो वन पूरा विशेष सर परिवार खातिर प्रिय लेके

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का तड़का। माँ बाप के मूल, माँ बाप के मूल पहचानी लजा हमने, और माँ बाप के मूल पहचान के ही हमने गीत के पसंद करी लजा। गीता गजाद हर जी के लिए हवन गाना, और ये गाना हमने सेफली कॉन्फ्लाक के अनिता जी मंगले हवन अपन संगतियालो खातिर इंदिरा, श्यामा, मीरा, सिनंद, कविराज, साधना, मालिनी, कविताप और कविता और हमने के सब सुने होला लोग के नाम। तो चला सुने जा हमने गीता का जाधर जी के गावली गीत अनिता जी के पसंद पर फ्लिक ऑफ फ्लैग से।

चला अब हमने शांति जी के पसंद के गाना सुनी जाए। शांति जी तेहूर से मंगले हवन ज्वाला बिजाधन जी के गावाली गाना सोना के गहना। चला सुनी जाए गाना हमने ज्वाला बिजाधन जी के आवाज में। और ये गाना शांति जी दागोचे के अपन पूरा मराठी परिवार खातिर मंगले हवन। और ये अप्पा दागोचे के अपन भगीना ओम खातिर।

आज तो सुख के रात बा, कई जगह पर गीत गवाए होत हुई, तो चला संगे संगे मिलके गीत गवाए में चली सा। चला जा बिजमावती संपत जी के गावली गाना सुनी जा। अभी गाना हमसे मंगले हवन मीरा बाई दरमिया जी, गाना मंगले हवन मौदाल बया से, और पाद्या परिवार दरमिया परिवार खातिर, अपन बेटा अपन बेटी अपन दमाद खातिर, और अपन पतिदेव खातिर मंगले हवन गीत।

ये गाना है कुणाल बाबूलाल जी के गावल और ये गाना है कुंगुमा के विपाला जी खातिर गौ गोप के उनकर बहिन सुनीता मंगले हवन ये गाना अपन बहिन के नाम

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: चला अभी अपनी सुनी जा संभावती दुमन जी के गावल गीत। ई गाना हमने बजवाओ लाजा ललिता जी खातिर। ललिता जी मंगले हवानी गाना अपन बहन सुदेवी ज्ञानी देवीना खातिर, छोटी जी प्रभावती जी और आत्माराम जी और हरीश जी खातिर, फिर सुखलाल मौसी खातिर, माला राम जवन, उषा लोकाना खातिर।

हमने के भोजपुरी तड़का में चला तड़का लगाएला जहाँ हमने लंगड़ो गाना संगे भोजपुरी बजा बजे बॉयज के गाना है और ये गाना हमने से मंगले हाँ वन श्रवण जी रहे लन लॉन्ग माउंटेन ये गाना अपन पूरा परिवार खातिर मंगले हवन विशेष तौर पर अपन दादी माँ खातिर मंगले हवन श्रवण जी

ये गाना हमने सुना था जा युधिष्ठिर दुलवा जी के गावल, और ये गाना हमने से मनीलाल जी मंगले हवन, त्यागुर से मनीलाल जी, ये अपन सब लड़का लोग के नाम करा था वन।

अभी गांव से रतन जी हमी के तेरे फोने करलन और मंगलन गाना अनिल सिंह रमेश सर जी के गावल और मंडिल अमृता जी के गावल। यह दाल पकैली भात पकैली शायद आज रतन जी दाल भात पकैले हो। चलो रतन जी के नाम करी चाह हमी गाना उनका बगल से उनका पत्नी करुणा के नाम।

मीरा दीनू जी के गावल गाना चला सुनी जा हमने सुदेवी जी के पसेन पर बाकवासी सुदेवी जी मंगले हवन गाना तो योले के दीदी ललिता खातिर कुशल फैमिली खातिर आत्मा राम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना मानिका के जयश्री रामरतन परिवार भिखारी परिवार खातिर

भोजपुरी के बोलबाला रहेला और जमनलाल चौधरी जी गईले हमन भोजपुरी कितना अच्छा लगेला। ये गाना हमने बजवावत है जा सुनीता जी के पसंद पर। इस गाना सुनीता जी लॉन्ग माउंटेन से मंगले हमन अपन पति राज के नाम।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: चलते चली जा, चलते चली जा। हमने के भोजपुरी तड़का हा, हमने के बाप दादा की बोली होला तड़का हा, बाप दादा की बोली हमने के भोजपुरी बोली। विष्णु माफ करिया, विनोद सीता जी, विनोद सीता जी बात बोल बोल के बड़ा हम सबको के खुश कर देवेला कि बाप दादा के हमने के ई बोली, भोजपुरी बोली बड़ा सुहावन है। ई गाना हमने बचवावत है जा श्रीमती जी खातिर, सुयाग से श्रीमती जी ई सुहावन बोली के गाना सुने खोजत हवन, अपन पूरा परिवार के नाम करत हवन ई गाना।

चला हमने के एक कार्यक्रम में हमने ज्ञान महिपत लाल जी के गावल गीत सुनावा थे जता लोग के और ये गाना हमने से बौशरी से धानी जी मंगले हवान चला धानी जी को बहुत बड़ा फैन है वन ज्ञान महिपत लाल जी के चला सुनी जाए गाना बड़ा उमदा गाना बा

सुरेश जी की फरमाइश है, किशोर की म्याज के पुपुरी गाना चला सुनी जा। हमें सुरेश जी की फरमाइश पर ही गाना उनकर पत्नी राधिका के नाम।

रानी जी सुने खोजत हवन गीता गजाधर जी के गावल सिंधी के हिचके वाला गाना। रानी जी गाना मंगले हवन अपन राजा यानी कि अपन पति विवेक जी के नाम बाकवा के ई हमनी के श्रोता लोग ई गाना अपन दादी माँ के नाम भी करत हवन।

अब जमाल कुदुले क्याल है जहाँ हमने किशोर खिमिया की आवाज में और इस किशोर खिमिया जी की आवाज में ये गाना हमने बचवाओ थे जहाँ राकेश जी खातिर राकेश जी रहे लन्ना मोताए ब्लॉश और मंगले हवन ये गाना अपन पूरा परिवार के नाम खासकर अपन दोस्त विराज के नाम।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: चला भी गुल ललना सुन लेला, जहाँ हमने सोना नोयन जी के गावल, और ललना हमने सुनब जा विमाला जी के, उनकर घर में जिन परियाल बा उकर नाम, उनकर परी के नाम और उनकर पति के नाम, मतलब विमाला जी और प्रीतम जी, माता पिता बनल हवन जा सोना नोयन जी के गावली गाना, उनकरा पड़ाव पर अभिनंदन कहे खातिर।

जैसा के संगे संगे चला हमने कुणाल हीरेलाल जी के गावाली गहरासन गाना भी सुने जा। ये रही अंतिम गाना हमने के कार्यक्रम के भोजपुरी तड़का के, और ये कार्यक्रम के बाद सुनिया जा आज के हमने के सुनहरे पल कार्यक्रम। गिनीशा प्रस्तुत करियन पुराना गीत के कार्यक्रम जरूर साथ देते रहिए जा। हमने के मुलाकात हजे पर समाप्त हो, यावत हला फिर मिलब जा। शुभ रात्रि, नमस्कार।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और अग्निशा का प्रणाम। मैं हूँ आपका दोस्त जो साथ निभाने आई हूँ आपकी सुनहरे पल में सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। वैसे देखा जाए तो कभी कभी हम जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते, लेकिन एक पुराना गीत बस 2 मिनट के लिए ही सही हमें रोक देता है, मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है और याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं है, महसूस करने का भी नाम है। तो आज थोड़ी देर के लिए हर टेंशन को साइड में रखिए और इन हसीन नगमों के साथ दिल को सुकून दीजिए। ये है सुनहरे पल, जहाँ हर गीत एक नई याद बनकर आपके दिल में उतर जाते हैं।

0: वैसे मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पुराने गीत सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं वो महसूस किए जाते हैं। वैसे हर लफ्ज में सच्चाई है, हर सुर में कहानी है और हर धुन में एक एहसास। और इसीलिए तो सालों बाद भी जब ये गीत बजते हैं ना, हमारे दिल खुद ब खुद उनके साथ गुनगुनाने लग जाते हैं। गिनिशा आपका साथ दे रहे हैं इस खूबसूरत से सफ़र में जिसका नाम है आपका सुनहरे पल। और अगले कुछ लम्हों तक हम साथ मिलकर यादों का एक और खूबसूरत सफ़र तय करेंगे। क्या ख्याल है आपका?
1: तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम,

वैसे दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। अगर आपको अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही गीत हमेशा के लिए चुनना हो तो वो कौन सा होगा? शायद उस गीत के साथ कोई याद जुड़ी होगी, बहुत ही खास याद। मेरा मतलब है कोई अपना जुड़ा होगा या कोई खूबसूरत लम्हा। आज के इस सफर में शायद वही गीत आपको फिर से मिल जाए। गिनेश आपका साथ दे रहे हैं सुनहरे पल में, और हम चाहते हैं कि आप भी शिद्दत से हमारा साथ दें। आराम से बैठ जाइए, गुनगुनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये अगला नगमा सीधे हमारे दिल से आपके दिल तक, आपके लिए स्पेशली ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: अरे मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
1: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
0: नहीं आएगा? नहीं आएगा?
1: नहीं
0: आएगा?

वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि रेडियो की सबसे खूबसूरत बात क्या है? रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ सिर्फ आवाज़ नहीं होती है, लेकिन हर आवाज़ के साथ एक तस्वीर भी बन जाती है। आज जब ये गीत बजेंगे, कोई अपनी माँ को याद करेगा, कोई अपने पापा को, कोई बचपन को, या शायद कोई अपनी पहली मोहब्बत को। इसीलिए तो हम कहते हैं कि गीत कभी पुराने नहीं होते, यादें कभी पुरानी नहीं होती हैं, और उनको ताज़ा करने के लिए हम हैं ना सुनहरे पल में रेडियो मॉरीशस पर।

देखा जाए तो हर जेनरेशन का अपना म्यूजिक होता है ना। लेकिन पुराने बॉलीवुड के गीत एक ऐसा दौलत हैं जो हर जेनरेशन को पसंद आती हैं। दादा दादी भी इन्हें पसंद करते हैं, मम्मी पापा भी, और आज की जेनरेशन भी इन गीतों की सिंप्लिसिटी और मेलोडी की दीवानी है। तो आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं इस सुनहरे दौर को सिर्फ सुनहरे पल में।

एक घंटे का ये सफर कैसे बीता वैसे दोस्त मुझे वाकई में पता नहीं चला, क्योंकि गीत इतने खूबसूरत हमने पेश किए हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो चलिए जी, बाकी जो हमारे दोस्त अभी भी काम पे हैं, बोको आश टू यू, जो अभी सोने की तैयारी में है, गुड नाइट टू यू। और फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, हमें तो जाना पड़ेगा ना, ताकि हम वापस आ सके फिर से एक बार आपका साथ देने के लिए सुनहरे पल में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
3: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
2: सुना।
3: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
3: हाय, सो वी मीट अगेन। अजीब इत्तेफाक है, आई मीन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। But I haven't seen you around, Yora. Anyways, it was nice to meet you.
4: कौन है आप?
3: इस कनीस को, मेरा मतलब है इस नाचीस को, राज चोपड़ा कहते हैं।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।
1: ओए बैंड आयो चक लो अपने ढोल बाजे नाले कस लो पीपनिया है कि ना। One, two, three.

message, eh?

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान